चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री

दान भवेक दान विश्वास दान प्रुसा दान दाना से दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुगिया टल धर्म का जय

आज्ञा बख्शो सुख होवे नाम चिते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे वंद होवना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत।

ਗਈ ਮੇਰੇ ਚੜਕੇ ਦੀ ਅਮੂਲ ਨਾ।

I'm gonna go to the hospital.

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधरे 9870 किलोवाट से तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन योर मोबाइल एप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुध सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु नज़र आहिनि। थोरी देर में तव्हां हमीशा बख़्तराम साहिब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम

में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे महीनेवार प्रोग्राम मन की बात जे एपिसोड 167 जो तवां सिंधी तर्ज में बुधंदा खास खास खबर प्रोग्राम जी आखिर में नशर की वेंदियूं इन असोग्राम की विछोड़ तवां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा हिंसर अचो भगत कौराम साहब के बुधूं।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे महीनेवार प्रोग्राम मन की बात जे एपिसोड 137 जो सिंधी दर्शनो।
0: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात जे हन नए एपिसोड में तवा जी आज आए तो सबने के जान है प्लेटफॉर्म ते असी कोशिशन के रोशनी में आनीदा आयो। इन में घणा ही विचार अड़ा हुंदा हन जिन में मन जे पेंजे जिंदगी जी बेइंतहा ताकत लगल हुंदी आए। साथियों कुछ वक्त अवल मुख्य सोशल मीडिया ते कें लिखियो ता आखाड़ जे पवित्र ग्यारस जे मौके ते मुख्य बुधाईंदे खुशी थी रही है। इतिहास के वधीक दिलचस्प बनाने जी कोशिश शुरू करे रहो है। विचार तमाम सवलो आए। वेबसाइट ते वनी करे को भी साल खणो तो तवा के मालूम थी वेंदो उन दौर में भारत जे कड़े हिस्से ते कड़े राजा जी हुकूमत हुई। मु इन बाबत वधीक जान हासिल कई। खबर पई तो कम मुंबई में रहंदड़ कृष्णा शेषाद्री शुरू कयो है। वेबसाइट जो नालो पण सवलो रखे वियो आहे भारतराज्य.com। संदस कम जी ॼाण तव्हां ताईं पहुचाइण लाइ असीं कृष्णा जी सां गुफ़्तगू करे रहियूं। कृष्णा जी असां सां फोन ते गॾु आहिनि। कृष्णा जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। मूंखे ख़बर पई आहे त तव्हां न त तकनीक जी दुनिया जा आहियो ऐं न ई वरी इतिहास जा उस्ताद आहियो, पोइ बि तव्हां तकनीक ज़रिए तारीख़ जी वेबसाइट तयारु कई आहे। तव्हां इहो सभु कीअं कयो? महिरबानी साईं, तव्हां सां ॻाल्हाइण मूं लाइ वॾी ख़ुशकिस्मती जी ॻाल्हि आहे। मां इंजीनियर हुउसि, पोइ मूं MBA कई ऐं पोइ मार्केटिंग खेत्र में वियुसि, पर नंढपण खां वठी करे मुंहिंजो चाह इतिहास में हो ऐं मूं हमेशह ई तारीख़ ते कुझु करणु पई चाहियो, छो जो मूंखे लॻंदो हो त जंहिं नमूने सां इतिहास पढ़ियो वञे थो तंहिं में घणी तब्दीली आणे सघिजे थी ऐं इतिहास खे हिकु कहाणी जे रूप में अवाम ताईं पहुचाए सघिजे थो। भारतीय इतिहास जो अहिड़ो कहिड़ो पहलू आहे जेको तव्हां खे लॻो त इन जी ॼाण वधि में वधि माण्हुनि ताईं पहुचणु घुर्जे? सर, असांखे स्कूल ऐं कॉलेज में इतिहास फ़क़ति हिकु एम्पायर या हिकु किंगडम जे रूप में पढ़ायो वेंदो हो। तंहिं में फ़क़ति हिकु खे घणी अहमियत मिलंदी, बाक़ी ॿिया एम्पायर्स नज़रअंदाज़ कया वेंदा हुआ। जहिड़ो की असांजा महान किंगडम्स चोलास, पल्लवास, करकोता डायनेस्टी या वरी कश्मीर में अहोम्स, जिन असम में पंहिंजी सकाफ़त ऐं क़दरनि खे 700 साल बरक़रार रखियो। पर हिननि बाबति असांखे ॼाण कोन आहे त मूं सोचियो छो की न अहिड़ी वेबसाइट तयारु कई वञे जिते अहिड़नि महान एम्पायर्स जी ॼाण माण्हुनि ताईं पहुचाई वञे। कृष्णा जी, तव्हां तमामु घणी महिनत कई आहे। मां तव्हांखे हिकु हाइपोथेटिकल सुवाल थो पुछां त जेकॾहिं तव्हांखे मौक़ो मिले त भारतीय इतिहास जे कहिड़नि टिनि माण्हुनि सां तव्हां ॻाल्हाइण चाहींदा ऐं कहिड़े कारण? सर, सभ खां अवल मां राजा राजा चोला या राजेंद्र चोला सां ॻाल्हाइण चाहींदुसि, छो जो चोला सल्तनत वधि में वधि ताक़तवर हुई। मां ॼाणण चाहींदुसि त खेनि बृहदेश्वर मंदर या गंगईकोंडा चोलापुरम मंदर ठाहिण जो थॉट कीअं आयो। इहे शिव जा वॾा वॾा मंदर आहिनि, इन्हनि खे अॾण जी रिथा प्लानिंग ऐं इन्हनि खे कहिड़े नमूने अॾियो वियो? असां बि कुझु अहिड़ो करियूं जेको ईंदड़ हिकु या 2000 सालनि ताईं ॿियनि खे उत्साह ॾियारींदो रहे। ॿी शख़्सियत आहे जंहिंखे इतिहास में नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे, तंहिंजो नालो आहे हेमू। इन बाबति असांखे फ़क़ति ॿिनि या टिनि सिटनि में पढ़ायो वेंदो आहे। असांखे ॼाण कोन आहे त हू हिकु आम रवाज़ी इंसान हो, हिकु वापारी हो। हुन हिन हिकु एम्पायर बर्पा कयो। हुन न फ़क़ति एम्पायर अॾियो पर हू फ़ौजी थिंकर पिणु हो। संदसि ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त हुन 23 जंगूं जोटियूं जिन मां 22 खटियूं आहिनि। संदसि सोच वीचार कहिड़ी हुई, हिकु आम माण्हू मां राजा कीअं बणियो, मूंखे इहा ॼाणण जी दिलचस्पी आहे। टी शख़्सियत इंट्रेस्टिंग आहे। सा औरत आहे त्रिभुवन महादेवी। ओडिशा में भूमाकारा डायनेस्टी जी कहाणी घणी दिलचस्प आहे। ईस्वी सन 850 जे आसपास पारसरी पाला एम्पायर मथे हमिलो कयो, जंहिं लड़ाई में संदसि मुड़ुसु जेको राजा हो सो शहीद थी वियो। 7 साल एम्पायर छॾे भॼी वञण लॻा, तॾहिं त्रिभुवन महादेवी हुकूमत जी वागडोर पंहिंजे हथनि में खईं ऐं उहो भारतीय इतिहास में पहिरीं ख़ुदि मुख़्तियार हुकमरान बणी। न फ़क़ति हुन हुकूमत खे मज़बूत बणायो पर इंदड़ 100 सालन ताई कलिंगा में हुकूमत बरकरार रही। इतिहास जो टे ये शख्सियतूं तमाम घणियूं इंटरेस्टिंग आहिनि। कृष्णा जी, इं लगे तो तवां इतिहास में पूरी तरह से समायल आयो। मु शौक से तवां जी वेबसाइट डिठी, जैमें करेक्शन ए सजेशन जी टैब आए। अड़े अडावती फीडबैक लाए ओपन रहन एक सुठी गाल आहे। छा तवां के अवाम वटां सलाहूं मिली रही है? छा तवां उनन ते कड़े नमूने अमल करे रहा? हाँ सर, घणी सलाहूं ईंदियूं आहिनि, से बिन तरह जूं ईंदियूं आहिनि। पहिरीं करेक्शन जी, त कंहिं वक़्त ऐं कंहिं इलाइक़े में कहिड़ो राजाओ ऐं कहिड़ी जंग लॻी हुई। ॿी सलाह ईंदी आहे वेबसाइट में फीचर्स जोड़ण जी, त असीं हिननि खे शामिल कंदा आहियूं। जे असांखे सलाह मिली त भारत सां गॾोगॾु परगणनि खे पण ॾेखारियो वञे, त असीं इन सलाह खे अमल में आंदोसीं। ॿी सलाह आई डाटा स्टैटिक्स ॾियण जी, त जीअं ॿारनि ताईं ॼाण पहुची सघे। कंहिं सलाह ॾिनी त ॼाण हिकु हंधि कठी रखी वञे, त जीअं डाउनलोड करे सघिजे, त असीं हिननि खे अमल में आणे रहिया आहियूं। असांखे

है तसी महान कोन आयो ए गलती थी सकंदी है तह करे करेक्शन टैब में गई है तो जे ए वेबसाइट असा सभी ही रहे इनन ते अमल कंदे अड़ी साइट तैयार कई वनी जे इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट थी पवे। कृष्णा जी वाकई यो एक वडो कम है। इतिहास का अलावा तहा जो बियो कहियो हॉबीज है? आना सर मा थोड़ो बोरिंग टाइप शख्स है। सर तकनीक ए इतिहास में रुचि आए ए बिन्हीं के मिलाने का पोए इन में पूरो डी निकली वेंदो आए। ठीक है कृष्णा जी तवा के मुझू शुभकामनाओं तवा तो सुठी शुरुआत कई है तह में वधिक मानू तवा सा शरीक थींदा। दोस्तों कृष्णा जे इन कोशिश सा न फकत इतिहास के शागिर्दन के बल्कि असा के माजी के जान में मदद मिली जैसे तवा के अड़ी कोशिशन की जान है तो जरूर शेयर कंदा। मेरा प्यारा हम वतनी साथियों इन वक्त पूरे मुल्क भर में नशे का आजाद नौजवान विकसित भारत लाय प्रचार जोर शोर से हली रो है। मकसद है नौजवानन के नशे ए ड्रग्स का आजाद कराएं। घने मानू खासकर नौजवान इन अभियान में शुमार थी वन। आखिरकार यह कार्रवाई असाजे नौजवानन के सेहत सदन खुशी ए सदन बेहतर मुस्कबिल लाय असाजे को यो महकम इरादो आए। साथियों नशे जो नुकसान फकत एक शख्स के कोन तो पवे बल्कि पूरे कुटुंब ए समाज के पवन आए। मैं उन्होंने मानन की सारा तो करा जेके ड्रग्स खिलाफ बेन में सुजागी आने रहे हैं ए नशे में मुबतला मानन की मदद करे रहे हैं। नशे का आजा भारत लाय छा तमा को पावरफुल स्लोगन तैयार करे सकंदा छा साजा नौजवान म्यूजिशियंस अड़ा गीत तैयार करे सकंदा जिनमें ड्रग फ्री लाइफ जो न्यापो हुए छा शागिर्द ए थिएटर ग्रुप्स दिल के छुई वेंदड़ नंढा नंढा नाटक लिखी सकंदा जिनमें ड्रग्स के जोखम से गडोगड नशे का बाहर अचण जो रस्तो डेखारल हुए। असाजे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की अनाठ कोन आए। मुझे तवा के अपील है ता अलग अलग बोलियन में अड़ो कंटेंट तैयार कर जैसा समाज के मदद मिले। तवा पैंजी कोशिशन के हैशटैग से गड सोशल मीडिया से जरूर शेयर कंदा छो जो अक्सर क्रिएटिव कंटेंट फॉर्मल प्रचार का वधिक असरायत हों आए। अच्छा तो भारत के नौजवानन के नशे का दूर ए आजाद रखू ए महान कम में असा सभी पैंजो रोल अदा करूं। तवा पैंजे कोशिशन के नशे का आजाद नौजवान हैशटैग सा सोशल मीडिया ते जरूर शेयर कंदा। मेरे प्यारा देशवासियों अगस्त महीने में हर तरफ देशभक्ति जो रंग डिसण में इंदो है एने अरसे दौरान हर शख्स के मन में देश लाय प्यार ए इज्जत वधी वेंदी आए। अगस्त महीने के खास बढ़ाईंदड़ हैं नेशनल हैंडलूम डे ए भारत छड़ो आंदोलन गडोगड विरहांगे जा खौफनाक मंजर यादगार नहीं तंखा अलावा आजादी जो डी ए नेशनल स्पेस डे हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति के जज्बे के वधिक मजबूत बनाई है। इन साल वंदे मातरम जा 150 साल पूरा थे इन भेरे 8 करोड़ का भी मान तिरंगा सेल्फीज अपलोड क्यों है ए तिरंगे जो त्यौहार को भारत ताई महदूद कोन रहो। इन साल सूर्यपत तिरंगा जरिए दुनिया भर में तिरंगे की यात्रा थी। फिजी के स्वा में सज के उभर का वी तिरंगो फहरायो ए एशिया अफ्रीका यूरोप ए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को ताई भारतीय मिशन्स ए पोस्ट में तिरंगे के लहरायो। तब अंदाजो लगाए सकंदा आयो त कड़ो न अद्भुत मंजर रहे हुंदो जी जी दुनिया में सज उभरंदो वो तीय तीय भारतीय तिरंगो पण लहराइंदो वो। अड़ी कोशिशू समाज के एक धागे में बदन थी ए देश से असाजो लागापो वधिक ऊनो थन्दो आए। इन कोशिशन में शामिल सभी माण्डन के मुझे घणी घणी वाधायूं। मुझे प्यारा हमवतनी साथियों शहरन ए गोठन के रस्तन ते रोज सुबह शाम ताई लखें औरतूं पैंजे पैंजे कम में रुधल रहंदी आन का भाजी विकणंदी आ त का फ्रूट त का चांहि जो गाडो लगाईंदी आ त का वरी गुल फुल ॾींदा ए पाठ पूजा जो सामान विकणंदी आहे। घणाई भेरा फकत थोड़े नाणे जे अणाठ सनन वापार के अॻिते वधण खां रोकींदी आहे पर हाणे अड़े लखें मातान भेण जे लाइ पीएम स्वनिधि योजना सां खे नई ताक़त मिली रही आहे। औरतुनि खे ताक़तवर बणाइण जे इन कार्रवाई खे घणी मशवरी कोन मिली आहे जेतिरी मिलणु खपंदी हुई। पीएम स्वनिधि योजना जे फ़ाइदे वठंदड़नि में लॻभॻि 46% औरतूं आहिनि यानी देशभर में लॻभॻि 35 लख औरतूं इन्हीअ योजना सां जुड़ी करे पंहिंजे वापार खे अॻिते वधाए रहियूं आहिनि।
साथियों।

गाजियाबाद जी बबीता शर्मा इन जो एक बेहतरीन मिसाल है। बबीता जी पूजा पाठ जो सामान एक नंढे स्टॉल ते विकणंदी हुई, गुलफ लडिया अगरबत्ती नारियल वगैरह शयूं विकणी करे पंहिंजे परिवार जे आजीविका में हथ वधाईंदी हुई। घणी महिनत कई पर कारोबार खे अॻिते वधाइण लाइ नाणे जी ज़रूरत हुई। पीएम स्वनिधि में खेसि माली मदद मिली, हुन पंहिंजे स्टॉल ते सामान वधायो, कारोबार अञा अॻिते वधियो, ग्राहक वधिया, उपत वधी ऐं आसे पासे सड़क जे पासे खां संदसि नंढो स्टॉल हिकु दुकान में तब्दील थी वियो। दोस्तो बेंगलुरु जे टीएम निगम्मा जो मिसाल पिण हिमथाईंदड़ आहे। निगम्मा ऐं संदसि मुड़ुसु मिली करे इडली डोसा ऐं सांभर विकण जो हिकु नंढो कारोबार शुरू कयो। कारोबार हली पियो पर इन खे अॻिते वधाइण लाइ पैसे जी घुर्ज हुई। निगम्मा पिण पीएम स्वनिधि खां मदद वरिती, हुन पंहिंजे कार्ड खे बहितर कयो, सामान होलसेल में ख़रीद करणु शुरू कयो ऐं मेनू में पिण घणियूं नयूं शयूं जोड़े वरितियूं। ग्राहक वधिया, उपत वधी वई ऐं कुटुंब जी माली हालत पिण तमामु घणी बहितर थी वई। अॼु हू पंहिंजे टिनि ॿारनि खे बहितरीन तइलीम मैसर कराए रही आहे। साथियो, जॾहिं कंहिं औरत जो कारोबार वधंदो आहे त साणसि गॾु पूरे कुटुंब जो मुस्तक़बिल पिण अॻिते तरक़ी कंदो आहे। ॿारनि जी तइलीम बहितर थींदी आहे, घर जूं ज़रूरतूं पूरी थींदियूं आहिनि ऐं औरतुनि जे अंदरि आत्मविश्वास वधीक पुख़्तो थींदो आहे। औरतुनि खे ताक़तवर बणाइण जो इहो ई त आहे ज़िंदा रूप। मां रस्ते ते गाॾो हलाईंदड़ ऐं फुटपाथ ते वापार कंदड़ सभिनी भेनरुनि खे सदन बहितरीन मुस्तक़बिल लाइ घणी घणियूं शुभकामनाऊं थो ॾियां। मुंहिंजे पर हम वतनी साथियो, साफ़ सफ़ाई जी हिकु ख़ासियत आहे त जॾहिं कंहिं जॻहि खे साफ़ रखण जो मुहकम इरादो उतां जा माण्हू कंदा आहिनि त तब्दीली फ़क़ति साफ़ सफ़ाई ताईं महदूद कोन हूंदी आहे पर इन पूरे इलाइक़े जी सुञाणप ई मटिजी वेंदी आहे। देश जे घणनि हिसनि में साफ़ सफ़ाई जूं अहिड़ियूं कोशिशूं असांखे हमेशह हिमथाईंदियूं रहियूं आहिनि। उत्तर प्रदेश जे रामपुर में हिकु ॻोठु आहे पटवाई। उते आकाश ऐं रोहन नाले ॿिनि दोस्तनि ॾिठो त सदन आसे पासे जो इलाइक़ो गंदगी सां भरियल आहे। पोइ छा कयो, आकाश ऐं रोहन इन कचरे खे हटाइण लाइ थेला खयां ऐं सफ़ाई लाइ निकिरी पिया। आसे पासे ॿिया नौजवान पिण साण जुड़ी विया। हिकु टीम थी वई जंहिंजो नालो रखियो वियो क्लीन अप पटवाई। इन नौजवाननि गंगा जे चइनि घाटनि खे साफ़ रखियो आहे, हिकु टन खां बि वधीक प्लास्टिक जे कचरे खे हटायो आहे, इन्हनि घणनि ई तालाउनि ऐं अवामी हंधनि जी सफ़ाई कई आहे। दोस्तो, हिन भेरे पिण अमरनाथ यात्रा में सफ़ाई ऐं अवामी भागीदारी जी अहिड़ी बहितरीन तस्वीर ॾिसण लाइ मिली। तमाम ई मुश्किल रस्तनि ते हज़ारे सफ़ाई रखंदड़ वर्कर्स ॾींहं राति सेवा में रुधल आहिनि। हिन साल यात्रा दौरान 400 मैट्रिक टन खां बि वधीक कचरे खे कलेक्ट ऐं प्रोसेस कयो वियो आहे। सफ़ाई जे इन कम में तीर्थ यात्रियुनि पिण पंहिंजो योगदान ॾिनो आहे। 16,000 खां बि वधीक तीर्थ यात्रियुनि सफ़ाई जो मुहकम इरादो कयो। 2,000 खां बि वधीक तीर्थ यात्रियुनि खे रेस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट ॾिनो वियो। हिते हिकु अलॻि एक्सपेरिमेंट थियो, यात्रा में घोड़नि ऐं खचरनि जे गोबर खे बायोगैस में मटियो वियो ऐं इन साफ़ एनर्जी सां स्वच्छ जोत मारी वई। यानी बाबा बर्फानी जे हिन पवित्र यात्रा में साफ़ सफ़ाई जी सेवा ऐं आस्था हिकु मिसाल बणिजी वई। दोस्तो, असांजो ॻोठु हुजे या वरी शहर, असांजूं नदी हुजनि या तीर्थ आस्थान, इन्हनि जी सुञाणप असांजे हलत ते आहे। तंहिं करे जॾहिं असांजे ज़िंदगीअ जे रोज़मरह में साफ़ सफ़ाई खे शुमार कयो वेंदो आहे त इन्हनि इलाइक़नि जी सूंहं अञा घणी वधी वेंदी आहे। मुंहिंजे प्यारा हमवतनी साथियो, असांजी ज़िंदगीअ में कॾहिं कॾहिं का नंढी हॉबी असांजी ज़िंदगीअ में वॾी तब्दीली आणींदी आहे। नागालैंड जे फेक ज़िले जे वैसालुपुरो जी कहाणी पिण अहिड़ी आहे। वैसालु हिकु किसान परिवार में वॾी थी आहे। हुन नंढपण खां ई माउ पीउ खे खेती कंदे ॾिठो आहे ऐं खेसि पिण गुलनि सां घणो प्यार आहे। साल 2021 में इन शौक़ सां गॾोगॾु हुन नंढी समत ते गुलनि जी खेती शुरू कई ऐं आसे पासे खेसि घणा वज ॾिसण में अचण लॻा। हुन ॾिठो त शादी मुरादी में या वरी ॿियनि त्योहारनि ते गुलनि जी डिमांड तमामु घणी वधी वेंदी आहे। वैसालु इन शौक़ खे अॻिते वधाइण जो मुहकम इरादो कयो। इन लाइ खेसि मकानी ज़रई मर्कज़ मां गुलनि जी साइंटिफिक खेती जी ट्रेनिंग मिली। पोइ हुन पंहिंजे 4 एकड़ ज़मीन ते ग्रेडलिस जा पौधा लॻाया। पहिरीं कोशिश में खेसि 5,000 खां बि वधीक गुल मिलिया। हुन पंहिंजे गुलनि जी खेतीअ खे अॻिते वधायो। जेके गुल मकानी बाज़ार ताईं महदूद हूंदा हुआ से अॼु नागालैंड मां निकिरी दिल्ली ऐं मुंबई जहिड़नि शहरनि ताईं पहुची रहिया आहिनि। वैसालुपुरो जी कहाणी ॿुधाए थी त जॾहिं शौक़ महिनत ऐं सही गाइडेंस सां मिली वेंदो आहे
तो जिंदगी में तरक्की जान

0: रस्ता खुली वेंदा आहिनि। मुंहिंजे प्यारा देशवासियो, असांजे पासे अहिड़ा घणाई माण्हू आहिनि जेके हिकु नंढी कोशिश कंदा आहिनि, सां ॾिसंदे उहा लखे माण्हुनि जी ज़िंदगीअ में तब्दीली आणींदी आहे। ओडिशा जे देवरीगढ़ में हिकु ॻोठु आहे भोड़को कुसुम। कुझु सालनि ताईं इन ॻोठ में मैथिली भूरे हर रोज़ जंगल वेंदी, कॾहिं लकड़ियूं खाइण त कॾहिं महुआ ऐं केंदूअ जा पता ॻोल्हण, त कॾहिं बांस जी लकड़ियूं ऐं ॿियो कुझु खाइण जे लाइ। संदसि ऐं ॿियनि माण्हुनि जूं घुर्जूं इन जंगल मां पूरी थींदियूं, पर पोए मैथिली देवरीगढ़ इको टूरिज़म सां मिली वई ऐं जंगल सां संदसि रिश्ते खे हिकु नओं रूप मिली वियो। हाणे जंगल खे बचाव मैसर कराइण संदसि उपज जो हिकु ज़रियो बणिजी पियो। अॼु 60 खां बि वधीक औरतूं जंगल खे बचाइण में रुधल आहिनि। कोई जंगली जीवत खे बचाए रहियो आहे त कोई गाह जे मैदाननि खे, त कुझु औरतूं इको टूरिज़म एक्टिविटीज़ में पंहिंजो योगदान ॾेई रहियूं आहिनि। मैथिली ऐं देवरीगढ़ जे इन्हनि भेनरुनि ॾेखारियो आहे त कुदरत जी सलामती कंदे सनन ज़िंदगी खुशहाल थी सघे थी। इन्हनि भेनरुनि जी कोशिश असांखे हिमथाए रही आहे। दोस्तो, अॼु असांजे धीअरुनि जे सपननि जी उॾाम धरती खां निकिरी स्पेस ताईं पहुची वई आहे ऐं तव्हांखे इहो ॼाणी करे फ़ख्रु महसूसु थींदो त भारत अहिड़ा सपना ॾिसंदड़ दुनिया जे हज़ारे धीअरुनि खे हिकु साथ ॻंढे रहियो आहे। इन कोशिश जो नालो आहे मिशन शक्ति सेट। इन कोशिश ज़रिए 108 देशनि मां 12,000 खां बि वधीक स्टूडेंट्स खे सेटेलाइट टेक्नोलॉजी सिखण ऐं इनोवेशन जे खेत्र में अॻिते वधण जो मौक़ो मिली रहियो आहे। 23 अगस्त नेशनल स्पेस ॾींहं ते इन मिशन जी हिकु सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश जे ग्रेटर नोएडा में ॾिसण लाइ मिली। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में मिशन शक्ति सेट जे ॿिए फेज़ जी शुरूआत थी। इन मौके ते दुनिया जे अलॻि अलॻि देशनि ऐं भारत मां 100 शागिर्द हिकु हंधु यकमुश थिया। भारत जे ॾोरण हंधनि मां पिण शागिर्दनि हिसो वरितो। कार्रवाई जो मक़सदु आहे शागिर्दनि जे भाईवारी सां तयार थियल हिकु सेटेलाइट खे चंड जे ऑर्बिट में मोकिलण। दोस्तो, मूंखे विश्वास आहे त इन्हनि मां घणाई शागिर्द ईंदड़ वक़्त में साइंस, तकनीक ऐं इनोवेशन में पंहिंजी नई सुञाणप तयार कंदा। मुंहिंजे प्यारा हमवतनी साथियो, अॼुकल्ह अवोकाडो फ्रूट जी तमामु घणी डिमांड आहे। इन फ्रूट खे पहिरीं कोई शायदि ई सुञाणंदो हो। उन वक़्तु संदसि वैल्यू, क़दुर ऐं डिमांड तमामु घणी घटि हुई, पर अॼु इहो तव्हांखे डाइनिंग टेबल ते घणो ॾिसण में मिलंदो। इनखे हेल्थ ऐं प्रीमियम मार्केट जी पसंदि करे लिखियो थो वञे। असांजे किसान भाउरनि भेनरुनि लाइ पिण मददगार साबित थी रहियो आहे। आंध्र प्रदेश जे कड़प्पा जे वरत राज जो मिसाल खणूं त घणनि सालनि खां पंहिंजे खेतनि में टमाटा ऐं केलनि जी खेती कंदो। हिकु ॾींहुं हुन पंहिंजे दोस्त जे खेत में अवोकेडो जी खेती ॾिठी, पोए हुन यूट्यूब तां इन जी ॼाण हासिल कई। हेल ताईं हुन तक़रीबन 4 टन अवोकेडो जी खेती कई आहे ऐं पंहिंजी फसल खे सिधो सिधो मकानी दुकानदारनि ताईं सप्लाई कंदो आहे। नई फसल साइंटिफिक सलाह मसलत ऐं सिधी मार्केटिंग सां खेसि तमामु घणो फ़ाइदो मिलियो आहे। तमिलनाडु जे कोड़ाईकनाल जे किसान चंद्रशेखर पिण पंहिंजे अधु हेक्टर ज़मीन ते अवोकेडो जी खेती शुरू कई आहे। इन लाइ खेसि घणो मुनाफ़ो मिली रहियो आहे ऐं संदसि उपति पिण तमामु घणी वधी वई आहे। कर्नाटका जे चिकमगलूरु जे कुझु किसाननि भाउरनि भेनरुनि त पंहिंजे कॉफ़ी जे खेतनि जे विच में अवोकेडो जी खेती कई, जंहिंसां खेन कॉफ़ी ऐं कारनि मिर्चनि जे उपत खां अलावा वधीक कमाई थी रही आहे। साथियो, असां शहरनि में रेस्टोरेंट्स में अक्सर अवोकेडो टोस्ट ॿुधो आहे, पर इन अवोकेडो ज़रिए असांजा इनोवेटिव किसान कमाई जी हिकु नई रेसिपी ॻोल्हे वरिती आहे। यानी पंहिंजे देश जे अवोकेडो सां तव्हांजे टोस्ट जो स्वादु वधियो आहे ऐं असांजे किसाननि जी उपत पिण वधी वई आहे। मुंहिंजे प्यारा देशवासियो, 3 सेप्टेम्बर ते असीं महान अदाकार उत्तम कुमार जी जनम शताब्दी मल्हाईंदासीं। उत्तम कुमार हिकु वर्सेटाइल एक्टर हो, जंहिं पंहिंजे अदाकारी सां माण्हुनि जे दिलि में पंहिंजी जाइ वसाई। फिल्म लवर्स जो चवणु आहे त श्रीमान सत्यजीत रे फिल्म नायक दे हीरो जी पूरी कहाणी महान अदाकार उत्तम कुमार खे ध्यान में रखंदे लिखी हुई। श्री सत्यजीत रे चयो त खेसि डिग्निटी सां गॾोगॾु अलहदा इमोशनल डेप्थ पिण आहे। किरदारनि खे हू ज़िंदा बणाइण लाइ तमामु घणी महिनत कंदो हो। उत्तम कुमार पंहिंजे फिलैंथ्रोपी लाइ पिण मशहूरु आहे। संदसि ज़िंदगीअ मां कॾहिं बि हार न मञण जी सिख्या मिले थी। शुरूअ में संदसि फिल्मूं कोन हलियूं, पर हू पंहिंजे कम ते बरकर रहियो ऐं आख़िर खेसि कामयाबी हासिल थी वई। मूंखे यादि आहे त जॾहिं मां हिकु भेरो कोलकाता में रोड शो करे रहियुसि त मां उत्तम कुमार जे घर जे साम्हूं लंघियो हुउसि। उन वक़्तु मूंखे हिकु शख़्स संदसि हिकु तस्वीर गिफ्ट कई। मां हिकु भेरो ॿीहर महान अदाकार उत्तम कुमार खे श्रद्धांजलि थो ॾियां। हू असांजे दिलनि में हमेशह ई ज़िंदा रहंदा। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषर हृदय राज कोरबेन। मुझे प्यारे देशवासियों असाजा त्योहार असा के रवायतन से गड पान में यकमिश्ता कन इंदड़ वक्त में अस घणा ही त्योहार मल्हण वारा आयो। 14 सितंबर ते जन्माष्टमी जो पाक त्योहार इंदो। सितंबर में अस विश्वकर्मा पूजा पण कंदासी। इन मौके ते तवा पेंजे आसे पासे कारीगरन आर्टिस्ट ए विश्वकर्मा साथिन जी इज्जत करण घुर्जे। कुछ ही महीन में डियारी अचण वारी है इन जी तैयारियों आस्ते आस्ते शुरू थी रही है। त्योहार के इन मौसम में मां एक दफो बीहर तवा के वोकल फॉर वोकल जो न्यापो डींदुस। वोकल फॉर लोकल जो मतलब फकत मिट्टी के डीह तीन महदूद को है पर इन दूरांदेशी वडी है। असा के सामान खरीद करण वक्त ध्यान रखण घुर्जे त यो भारत में तैयार थियल हुए। भारत के आत्मनिर्भर बनाने जो न्यापो असा के वध में वध मानन ताई पहुंचाण असाजी जिम्मेवारी है। असाजे क्रिएटिव वर्ल्ड जा साथी इन्फ्लुएंसर ए सेलिब्रिटीज पैंजो योगदान दे सकंदा आहिनि। मुंहिंजी तव्हां सभिनी खे अपील आहे त तव्हीं वोकल फॉर लोकल खे अपनायो ऐं ॿियनि खे इन लाइ उत्सायो। साथियो तव्हांजे आसे पासे अहिड़ा घणाई माण्हू हूंदा जेके नंढियुनि नंढियुनि कोशिशुनि सां समाज में वॾी तब्दीली आणे रहिया आहिनि। तव्हां इन्हनि बाबति मन की बात में ज़रूर लिखंदा। तव्हांजा मोकिलियल आज़मूदा देश जे कंहिं कुंड में कंहिंजे लाइ हिमथाईंदड़ स्टोरी साबित थी सघंदा आहिनि। मूंखे तव्हांजे सलाहुनि ऐं आज़मूदनि जो इंतज़ार रहंदो। तव्हांजी घणी घणी महिरबानी। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे महीनेवार प्रोग्राम मन की बात जे किस्त 137 जो सिंधी तर्शुमुद्र या आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। या पेश आहिनि खास खास खबरूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान बिश्नेक में पहुतो आहे। उते 6वीं एससीओ समिट में हिसो वठंदो। अॼु एससीओ अॻवाननि सां ॿितरफ़ियूं गॾजाणियूं कंदो। भारत ऐं उज़्बेकिस्तान पंहिंजे भाईमी लाॻापनि खे वसीअ हिकमत अमली भाईवारी में तब्दील कयो आहे। इन खां अलावा लंबे अरसे लाइ यूरेनियम सप्लाई करार ते सही कई आहे। साल 2030 ताईं वापार खे $5 बिलियन ते आणण जो निशान पिण मुक़ररु कयो आहे। नेपाल भोते कोशी नदी लाइ ॿीहर खां मोट जो ख़तरो जारी कयो आहे। हींअर ताईं 149 भारतीयुनि खे बचायो वियो आहे। मरंदनि जो तादाद 788 पहुची आहे। WHO एमरजेंसी इमदाद लाइ 150,000 अमेरिकन डॉलर जी इमदाद रिलीज कई आहे। नासा सुभाणे नमूने स्पेस टेलीस्कोप छोड़ियो आहे जेको नवनि गैलेक्सीज ऐं एक्सप्लोनेट्स खे ॻोल्हींदो। मर्दनि जे हॉकी में जर्मनी वर्ल्ड कप ख़िताब पाण रखियो आहे जो हुन स्पेन खे 1-0 मात ॾिनी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों

0: एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिम अलीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा है कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमरीका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकानों का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगलों में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। यह संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। भारत के अवेश सिंह ने तुआंकु मुहरीज स्क्वैश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लिंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ ही शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 की शानदार पारी खेली। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने श्रीलंका से 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है। श्रीलंका क्रिकेट प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के कारण यह फैसला किया गया है। प्रतियोगिता में मेजबान श्रीलंका सहित 6 टीमें हिस्सा लेने वाली थीं। ICC बोर्ड की अगली बैठक में टूर्नामेंट के नए आयोजन स्थल के बारे में फैसला होने की संभावना है। आयोजन स्थल बदलने से श्रीलंका की टीम के इस टूर्नामेंट में खेलने पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasum Aliyev Adulbek Alishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him. Mr. Modi is visiting Kyrgyzstan at the invitation of President Sadur Japarov for 26th SCO summit. On the first day of his visit to Kyrgyzstan, PM Modi will hold bilateral meetings with the SCO leaders on the sidelines of the summit.

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भूषण त्रिपाठी के गाए भजन।

संगीती का कार्यक्रम में आज आपने भूषण त्रिपाठी के गाए भजन सुने। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह की ढेर सारी प्यारी प्यारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके साथ इस सुहानी सुबह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हूं मैं आपके साथ। जी हाँ दोस्त, और अभी आपने सुना फिल्म काई पोचे का ये प्यारा सा गीत शुभारंभ, और क्या कमाल का संदेश है इस गाने में। हर शुरुआत अपने आप में खास होती है, चाहे वो किसी नए काम की शुरुआत हो, या किसी नए रिश्ते की कोई नया सपना हो, या फिर बस एक नई सुबह की शुरुआत। तो आज की सुबह का एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर जरूर करेंगे। क्योंकि दोस्तों सुबह सिर्फ सूरज के निकलने का नाम नहीं है, सुबह तो एक नया मौका है फिर से मुस्कुराने का, फिर से कोशिश करने का, और बिल्कुल आगे बढ़ने का। और अब इसी खूबसूरत सोच के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

बहुत ही प्यारा गीत, और वाकई में जब भी इसको सुनते हैं तो बस यूं कहते हैं पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और हम झूमने लगते हैं। और सच में कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, सीधे दिल तक पहुंचते हैं। और अगर आप इस वक्त घर से निकल रहे हैं, ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में, या फिर चाय की प्याली लेकर आराम से सुबह का आनंद ले रहे हैं, तो जहां भी है बस एक बार मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी मुस्कान आपकी पूरी सुबह का मूड बदल देती है। और वैसे भी सुबह की चाय और प्यारे प्यारे गीत हो तो इन दोनों की जोड़ी से बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। तो चलिए अब इस सुरीली सुबह को और थोड़ा सा संगीत से भरते हैं।

Thank you.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और ये सुबह सिर्फ संगीत की नहीं बल्कि अच्छी यादों और खूबसूरत एहसासों की भी है। कभी आपने गौर किया कि हमारी जिंदगी में कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही कोई पुरानी याद सामने आ जाती है? कभी स्कूल के दिन, कभी कॉलेज की दोस्ती, कभी किसी खास इंसान की याद, और कभी बस वो दौर जब जिंदगी थोड़ी सी आसान हुआ करती थी। लगता है आसान हुआ करती थी, पर जब भी हम प्रेजेंट में जीते हैं तो लगता है जिंदगी मुश्किल ही होती है। पर दोस्त, अगर हम आसान बनाना चाहें तो बस सोचना पड़ता है कि जिंदगी को आसान बनाएं और खूबसूरत बनाएं। तो आज अगर कोई ऐसा गाना आपके पास भी है जो आपको किसी खास याद से जोड़ता है तो उसे जरूर सुनिए और बिल्कुल आनंद लीजिए इस गाने का, क्योंकि कुछ यादें दोबारा जीने के लिए नहीं होती, बस मुस्कुरा कर याद करने के लिए होती है। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं, शायद आपको भी कोई प्यारी याद जगा दे।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है आपकी सुबह अब थोड़ी सी और रंगीन हो गई होगी। और चलिए अब बात करते हैं आज की एक छोटी सी मॉर्निंग मोटिवेशन की। जी हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन हम सभी को चाहिए होता है जिंदगी में। तो दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं जब सही समय आएगा तब ये काम शुरू करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि सही समय कभी आता ही नहीं, उसे बनाना पड़ता है। अगर कोई सपना है तो पहला कदम आज उठाइए, और अगर किसी से बात करनी है तो आज कीजिए, और अगर किसी को धन्यवाद कहना है तो आज कहिए, और अगर खुद को एक और मौका देना है तो भी आज ही दीजिएगा। क्योंकि अगर आप काम को टालेंगे तो बस वो टलता ही रहेगा। तो बिल्कुल जिंदगी में कभी भी ये उन्हें कहेंगे कि अच्छा वक्त आएगा और तब सही समय आएगा तब करेंगे, नहीं, उसे बनाना पड़ता है, ठानना पड़ता है अपने मन में कि आज ही करना है। क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर सुबह हमें एक ब्लैंक पेज देती है। जी हाँ, खाली पन्ना देती है, और अब उस पन्ने में क्या लिखना है ये हमारे हाथ में है। और बिल्कुल हमें अच्छा ही लिखना चाहिए, क्योंकि तभी तो अच्छा होगा। और इसी खूबसूरत ख्याल के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा शानदार गीत।

के साथ आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तो मुझे यानी शोभा शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे और फिर होंगे उर्दू में समाचार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं। 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल ज्यादा

0: ज्यादा काम। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडुंगू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
4: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या

0: बना है, जबकि 540 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
2: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
3: आज में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केवंझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलंगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लद्दाख द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत डीएसवी निपुण को शामिल करने जा रही है।
4: विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले दो लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 0111-3104-8101-2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
6: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फोरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Larak Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliyev Adilbek Alishovich, the chairman of

0: attack U.S. bases in Jordan using ballistic missiles. The latest development marks a sharp escalation in the confrontation, which had remained relatively calm since June. On to sports. In women's cricket, India began their T20 Asia Cup 2026 campaign in a dominant fashion, beating Thailand by 94 runs in Dubai last night after posting 159 for the loss of 9 wickets in the stipulated 20 overs. India bowled Thailand out for just 65 in 15.3 overs. Nanapat Konchakorai Konkai with 41 runs was Thailand's top scorer but lacked support from the other end as wickets fell at regular intervals. In squash, India's Abhay Singh won the men's singles title at the Tuanku Muriz Trophy 2026 in Seremban, Malaysia yesterday. The top-seeded Abhay defeated third-seeded Henry Leung of Hong Kong, China 3-2 in the final of the PSA Challenger Tour 15 event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed Prime Minister's visit to the Central Asian country of Uzbekistan. The Hindu headline writes, India-Uzbekistan upgrade ties, agree on uranium deal. The dailies also have an inbox picture of PM Modi being conferred with Uzbekistan's highest honor for foreign leaders in recognition of his leadership and contribution to bilateral ties. PM Modi hails grassroots innovation, anti-drug drive and women's empowerment in Mann Ki Baat program, cites the statesman. As Nepal flood toll mounts, India deploys forensic tunnel rescue teams, notes the Tribune. In a first, railways to build 6 freight lines with private firms using highways hybrid funding model, writes the Indian Express. And finally, Hindustan Times refers to an Army Cheetal helicopter carrying out a daring mission at 18,600 feet in Ladakh to evacuate an injured mountaineer. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद, पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किर्गिज़िस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इक्तसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई है, जबकि 2,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमेरिकी फोर्सेज ने अबनाए हुर्मुज में लारक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। और खवातीन क्रिकेट में भारत ने दुबई में T20 एशिया कप के अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किर्गिज़िस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं। वज़ीरों की काबीना के चेयरमैन कासिम अलीफ आदिल बेक अरे शोइच ने हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के खैर मकदम के लिए रिवायती किर्गिज़ रक्स का भी एहतमाम किया गया।

0: के लिए किर्गिजिस्तान के सदर सदिर जपारूव की दावत पर वहां गए हैं। अपने दौरे के पहले दिन वजीर आजम सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर एससीओ रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी कई दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे और कल एससीओ सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: जनाब मोदी आज बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद वो महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाएंगे और महात्मा गांधी के मुजस्मे पर अकीदत के फूल नजर करेंगे। साल 2015 में किर्गिजिस्तान के अपने दौरे के मौके पर वजीर आजम ने इस मुजस्मे की नकाब कुशाई की थी। जनाब मोदी आज शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के कई रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत भी करेंगे। इनमें रूस के सदर के साथ बाहमी बातचीत के साथ साथ आर्मेनिया, किर्गिजिस्तान और ईरान के सदूर के साथ मीटिंगें भी शामिल हैं। जनाब मोदी आज छठे वर्ल्ड नामोट गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। जनाब मोदी कल शंघाई ताउन तंजीम एससीओ की 26वीं सरबराह मीटिंग से खिताब करेंगे। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ताशकंद का अपना दो रोजा सरकारी दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कल दो तरफा ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए सदर शौकत मिर्जियोयेव से बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत उज्बेकिस्तान ताल्लुकात को एक जामे दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तफाक किया। पेश है हमारे नामनिगार की एक रिपोर्ट।
2: इस दौरे में 11 माहदों पर दस्तखत किए गए जिनका ताल्लुक अहम मादनियात और यूरेनियम से लेकर तिजारत, दिफा, डिजिटल वसीले से रुपए पैसे के लेन देन और तालीम, नीज हिंदी और संस्कृत से लेकर खेलकूद और वैसे के तहफ्फुज से है। इस दो रोजा दौरे से भारत उज्बेकिस्तान ताल्लुकात को एक वसी और जामे फ्रेमवर्क मिला है। उम्मीद है कि जामे दिफाई शराकतदारी और $5 अरब के तिजारती निशाने तवील मुद्दती तवानाई तआवुन और रियासत और शहर की सतह पर मजीद सरगर्मियों की वजह से उज्बेकिस्तान और वस्त एशियाई खित्ते के साथ भारत की सरगर्मियों को एक नई रफ्तार हासिल होगी। इस दौरे की एक अहम बात यह भी रही कि सदर शौकत मिर्जियोयेव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज ऑर्डर ऑफ ओही दाराजाली दोस्त लीग से नवाजा। इस अवार्ड के तहत भारत उज्बेकिस्तान ताल्लुकात और ताउन को मुस्तहकम बनाने में जनाब मोदी के ताउन का एतराफ किया गया है। ताशकंद से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इक्तसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। अमरीका के अपने दौरे में शिकागो में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान की लड़ाई नीज आबनाए हुरमुज को बंद किए जाने के तनाजुर में जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की कैफियत और सप्लाई निजाम में रुकावटों के बावजूद उम्मीद है कि भारत अपनी तरक्की की रफ्तार बरकरार रखेगा। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मगरबी एशिया महाजाराई की वजह से आबनाए हुरमुज में खलल पड़ने से शुरू में भारत के लिए खाम तेल, पेट्रोलियम अशिया और कीमियावी खाद जैसी अहम अशिया की सप्लाई पर असर पड़ा था, लेकिन मुल्क इन अशिया को दूसरे रास्तों से लाने का बंदोबस्त करने में कामयाब रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की सालाना तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करेंगी। वो इस मौके पर मुल्क भर के 18 NIFT कैंपस के ग्रेजुएशन के तलबा को डिग्रीज अता करेंगी। कपड़े की सनतों के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और कपड़े की सनतों की वजारत की सेक्रेटरी नीलम शामी राव भी इस मौके पर मौजूद होंगी। इस तकरीब में दीगर मुमताज शख्सियतें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान, सीनियर अफसरान, असातिज़ा, दानिश्वर हजरात और तलबा शिरकत करेंगे। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 794 तक जा पहुंची है और 2500 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। तिब्बत में 16 अफराद हलाक और 546 लापता हैं। भारत और चीन समेत बचाव टीमें पनबिजली प्रोजेक्टों की सुरंगों में फंसे हुए सैकड़ों लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। इन प्रोजेक्टों में त्रिशूली 3A भी शामिल है। लापता लोगों के बारे में ख्याल है कि ये लोग पनबिजली प्रोजेक्ट का रुकन हैं। सभी 8 मुतासरा जिलों से लाशें बरामद कर ली गई हैं। जैसा कि बचाव कारकुन अब भी बाकी मादा लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसी दौरान त्रिशूली दरिया में ताजा सैलाब से गोरखा जिले में झूलने वाला

0: पुल बह गया है, जिसकी वजह से पृथ्वी शारा के मोती अलग थलग होकर रह गए हैं। नेपाल में शदीद सैलाब आने और नशीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के तनाजुर में बिहार में गंडक और कोसी दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 फाटक और कोसी बैराज के 20 फाटक खोल दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में इन दोनों दरियाओं में पानी की सतह और उनसे छोड़े जाने वाले पानी की मकदार भी कम हो गई है। इधर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाली गुमराहकुन इतलाक के तनाजुर में सुपौल जिला इंतजामिया ने यह वजाहत की है कि कोसी दरिया में पानी मामूल की रफ्तार से चल रहा है और कोसी बैराज पूरी तरह महफूज है। सूरत हाल पर लगातार नजर रखी जा रही है। पानी की सतह में और इजाफा होने के इम्कान के मद्देनजर मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों की इंतजामिया सख्त चौकसी बरत रही है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर मौसम की तब्दीली के जेर असर ओडिशा में आज भी शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने बरगढ़ में रेड अलर्ट जबकि मगरबी ओडिशा के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये बारिश ऐसे वक्त हो रही है कि जब केन्द्रपाड़ा, भद्रक और जाजपुर के बाज हिस्से हालिया सैलाब के असर से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। इस तरह निचले इलाकों में फिर से पानी भर जाने के ताल्लुक से तशवीश पैदा हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा को आज फिर मूसलाधार बारिश का सामना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बहुत सी जगहों पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और अलग अलग जगहों पर इंतहाई शदीद बारिश की भी पेशगोई है। आज बारगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, क्योंझार, सुवर्णपुर, नुआपाड़ा, बालनगीर और कालाहांडी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने खबरदार किया है कि शदीद बारिश की वजह से मकामी सतह पर नशेबी इलाकों में सैलाब आ सकता है और पानी भर सकता है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारतीय बहरिया आज मुंबई में बहरी गोदी में निपुण जहाज को अपने कामकाज में शामिल करेगी। यह विस्तार दर्जे का दूसरा गोताखोर इमदादी जहाज डीएसवी है। निपुण को कामकाज में शामिल किए जाने से भारत के बहरी मफादात वाले खसूसी गोताखोर और जेहराब मिशनों को जारी रखने की भारत की बहरी सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हमारे नामानिगार से।
3: निपुण को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने मुल्क ही में डिजाइन और तामीर किया है। ये बहरी जहाज दिफाई जहाजों की तामीर में भारत की खुद किफालत के मैदान में एक अहम संगी मील की हैसियत रखता है। निपुण खसूसी तौर पर गोताखोरी और जेरियाब कार्रवाईयों के लिए तैयार किया गया है। ये जहाज गोताखोरी के जदीद तरीन निजाम से लैस है, जिसमें समुन्द्र में जेरियाब हथियारों को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। इस जहाज में समुन्द्र में खसूसी हालात में गोताखोरी को मदद देने की भी सलाहियत मौजूद है। निपुण से जेरियाब बचाव कार्रवाईयों में मदद देने की भारतीय बहरिया की सलाहियत में भी इजाफा होगा। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: अमरीका ने कल रात अबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के फौजी ठिकानों पर हमला किया। अमरीकी फोर्सेस के मुताबिक ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी के फौजियों को अबनाए हुरमुज में समुद्री बारूदी सुरंगों के साथ रॉकेट दागने की तैयारी करते हुए देखा गया था। इसी के बाद ईरान के दो रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने बताया है कि इस हमले में कई ईरानी अहलकार और सिविलियन हलाक और जख्मी हुए हैं। उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दू में अमरीका के फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। दोनों तरफ के इन हमलों से महाजाराई में फिर से शिद्दत आ गई है। इससे कबल अमरीकी फौज ने अबनाए हुरमुज से बारूदी सुरंगों को हटाने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई के बाद ईरान को यह सख्त वार्निंग जारी की है कि इस आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछाने में मुलविस किसी भी बहरी जहाज या कश्ती को बिला ताखीर और मुनज्जम अंदाज से तबाह कर दिया जाएगा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोनल प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे बैंकिंग और कर्ज की फराहमी के जरिए माली शमूलियत में इजाफे और शहरियों को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा।

0: भारत ने T20 एशिया कप 2026 में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड को 94 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा 64 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रही और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। सिक्किम निशानेबाजों ने 13वें शुमाल मशरकी जोन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम दी है। ये चैंपियनशिप कल आसाम के शहर गुवाहाटी में इख्तिताम पजीर हुई। सिक्किम के लक्ष्मण अधिकारी ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मास्टर मुकाबले में इनफरादी जुमरे के तहत कांसे का तमगा हासिल करके तारीख रकम की है। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया में सेरेम्बन के मुकाम पर तमाकू मुरहिस ट्रॉफी 2026 में मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया करीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान के दौरे की तकमील की खबरें सरबख्श शाये की है। अखबार इंकलाब के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान यूरेनियम की सप्लाई का माहदा। वजीर आजम मोदी को उज्बेकिस्तान के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर भी आज के अखबार में नुमाया है। जनरल मोदी आज शिमाही तआवुन तंजीम में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि वो किर्गिजस्तान की राजधानी बिश्केक में आज चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। अखबार इंकलाब के मुताबिक सियासी जमातों के नकद अतियात के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। दरखास्त में इनकम टैक्स कानून की उस शक को चैलेंज किया गया है जिसमें सियासी जमातों को 2000 रूपये से कम के नकद अतियात गुमनाम तौर पर वसूल करने की इजाजत है। इसी अखबार ने एक खबर यह भी खासतौर पर शाये की है कि दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट आज जारी होगी। अगर किसी वोटर या उसके किसी जानने वाले का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो उसे दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल कराने का मौका दिया जाएगा।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इकतसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमरीकी फोर्सेज ने अबनाए हुर्मुज में लारक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:45 और ठीक 15 सेकेंड। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे उदय कुमार मलिक से धमार गायन, राग है ललित। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

आइए नजर डालते हैं इस मजलिस में नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर में सुबगाही प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे हम दुबारी ताला और नाते रसूल करीम। 9:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम आज सवेरे। 9:50 पर खबरें नष्ट की जाएंगी और 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम शम फरोजा। 10:05 पर हुस्न गजल प्रोग्राम में सुनिएगा गैर फिल्मी गजलें। 10:30 पर गीतों भरी कहानी नश्र की जाएगी प्यार की जीत। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम होगा। 11:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। दिन में 12 बजे खबरें नश्र की जाएंगी और 12:10 से आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरान प्रोग्राम 12:30 पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। आज का मौजू है बाका नंगल डैम। 12:45 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम सुर्खियों में। आलमी खबरों का वक्त होगा दिन में 1 बजे।

रेडियो वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री देश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेशा खिदमत है प्रोग्राम सुबगाही। समाप्त कीजिए हम दोबारी ताला और नाते रसूल करीम। पेश कर रहे हैं जनाब अबरार किरतपुरी।

0: सुन रहे थे हमद बारी ताला और नाते रसूल करीम, पेश कर रहे थे जनाब अबरार किरतपुरी। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि ये है। आज की तारीख यानी 31 अगस्त को कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं दर्ज हैं इतिहास में। और 1889 में आज ही के दिन दूसरी इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कांग्रेस में ऊर्जा एनर्जी को मापने के लिए जूल और शक्ति के लिए वाट को आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में अपनाया गया था। और 1920 में आज ही के दिन अमरीकी शहर डेट्रॉयट में पहली बार रेडियो पर समाचार प्रसारित किए गए थे। और 31 अगस्त 1962 में कैरेबियाई देश टोबैगो और त्रिनिदाद ब्रिटेन से आजाद हुए थे। 1983 में आज ही के दिन भारत के उपग्रह इंसेट 1B को अमेरिका के स्पेस शटल चैलेंजर से प्रक्षेपित किया गया था। और 1990 में आज ही के दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना भी घटी थी। दशकों से विभाजित पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इस एकीकरण संधि यूनिफिकेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद दोनों पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के एक होने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। और 1991 में आज ही के दिन उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और क्या संयोग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन्हीं दो देशों की यात्रा पर हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: कुछ उन व्यक्तित्वों को याद करते हैं जिनकी आज जन्मतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनकी पुण्यतिथि है। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम हमारे सामने जो है प्रसिद्ध कवियत्री और उपन्यासकार अमृता प्रीतम का है, जिन्हें 20वीं सदी की पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री भी माना जाता है।
2: जी, ये जिंदगी एक रात थी, हम तो जागते रहे, किस्मत को नींद आ गई।

अमृता प्रीतम का जो मुकाम है न केवल साहित्य की दुनिया में, वो देश में तो है ही है, इसके अलावा इनकी लोकप्रियता सीमा पार पाकिस्तान में भी उतनी ही है। और अमृता प्रीतम ने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में रही है जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, और जो उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट है वो बहुत ही बेहद बहुचर्चित आत्मकथा है जिसमें अमृता प्रीतम ने अपने जीवन संघर्षों और विचारों को साझा किया है। आज के दिन जन्म हुआ था 1940 में मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवाजी सावंत का। इन्होंने लेखन की शुरुआत कविता से की थी और 27 वर्ष की अवस्था में इनका पहला मराठी उपन्यास मृत्युंजय प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास इनकी लोकप्रियता का

0: बन गया। इसका अनुवाद अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला और अनेक भाषाओं में हुआ। इनके उपन्यास मृत्युंजय, छावा, युगंधर और नाटक संघर्ष के हिंदी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ से भी प्रकाशित हुए हैं। इनके सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो गुजरात राज्य सरकार का साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में दिया गया था और भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य का भी, साहित्य जगत का बहुत जाना माना पुरस्कार होता है ये, और ये 1995 में इनको दिया गया था और आचार्य अत्रे प्रतिष्ठान पुरस्कार 1999 में इनको प्रदान किया गया। आज पुण्यतिथि है प्रख्यात उर्दू कवि, उपन्यासकार और लघु कथा लेखक कश्मीरी लाल जाकिर की। इन्होंने 8 दशक तक उर्दू और हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में 100 से अधिक किताबें लिखी। ये लगभग 3 दशक तक हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक पद पर भी रहे। इनके उपन्यास कर्मावाली पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने 100 से अधिक नाटक का मंचन किया। बाद में इसी पर दूरदर्शन ने एक धारावाहिक भी बनाया था। आज ही जन्मदिन है बंगाली फिल्मों के जाने माने निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपर्ण घोष का। चोखेर बाली, रेनकोट और अबू हुमन जैसी फिल्मों के जरिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ऋतुपर्ण घोष की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में रही है। ऋतुपर्ण घोष उन निर्देशकों में से एक थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस को ध्यान में रखकर कभी फिल्में नहीं बनाई। इनकी एक अपनी अलग सोच थी, शैली थी और अपने मिजाज के अनुरूप ही इन्होंने फिल्में बनाई। रिश्तों की जटिलता और लेख से हटकर विषय जो थे इनकी फिल्मों के, वही इनकी खासियत थी। और 19 साल के फिल्मी करियर में ऋतुपर्ण घोष ने 19 फिल्मों का निर्देशन और 3 फिल्मों में अभिनय किया।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे और अब खबरें नष्ट की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किर्गिज़िस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इकतसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमेरिकी फोर्सेज ने अबनाए हुर्मुज में लारक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। और खवातीन क्रिकेट में भारत ने दुबई में T20 एशिया कप के अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किर्गिज़िस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं। वज़ीरों की काबीना के चेयरमैन कासिम अलीफ आदिल बेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के खैर मकदम के लिए रिवायती किर्गिज रक्स का भी एहतमाम किया गया। जनाब मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए किर्गिज़िस्तान के सदर सदिर जपारोव के दावत पर वहां गए हैं। अपने दौरे के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर SCO रहनुमाओं के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी कई दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे और कल SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जनाब मोदी आज बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद वो महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाएंगे और महात्मा गांधी के मुजस्मे पर अकीदत के फूल नजर करेंगे। साल 2015 में किर्गिज़िस्तान के अपने दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुजस्मे की नकाबकुशाई की थी। जनाब मोदी आज शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के कई रहनुमाओं के साथ 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। उन्होंने रूस के सदर के साथ बाहमी बातचीत के साथ साथ आर्मेनिया, किर्गिज़िस्तान और ईरान के सुदूर के साथ मीटिंगें भी शामिल हैं। जनाब मोदी आज 6वें वर्ल्ड नवोद गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। जनाब मोदी कल शंघाई ताउन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह मीटिंग से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ताशकंद का अपना 2 रोजा सरकारी दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कल 2 तरफा

मुलाकात में मजीद गहराई लाने के लिए सदर शौकत मिर्जियोयेव से बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात को एक जामे दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया। इस दौरे में 11 माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनका ताल्लुक अहम मादनियात और यूरेनियम से लेकर तजारत, दिफा, डिजिटल वसीले से रूपे पैसे के लेनदेन और तालीम, नीज हिंदी और संस्कृत से लेकर खेलकूद और विरसे के तहफ्फुज़ से है। इस दो रोजा दौरे से भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात को एक वसी और जामे फ्रेमवर्क मिला है। उम्मीद है कि जामे दिफाई शराकतदारी और $5 अरब के तजारती निशाने तवील मुद्दती तवानाई ताउन और रियासत और शहर की सतह पर मजीद सरगर्मियों की वजह से उज़्बेकिस्तान और वस्त एशिया खत्ते के साथ भारत की सरगर्मियों को एक नई रफ्तार हासिल होगी। इस दौरे की एक अहम बात यह भी रही कि सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज ऑर्डर ऑफ ओली दो इस तरीके से नवाजा। इस अवार्ड के तहत भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात और ताउन को मुस्तहकम बनाने में जनाब मोदी के ताउन का एतराफ किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इक्तिसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। अमरीका के अपने दौरे में शिकागो में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान की लड़ाई निजाबनाए हुरमुज को बंद किए जाने के तनाजुर में जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की कैफियत और सप्लाई निजाम में रुकावटों के बावजूद उम्मीद है कि भारत अपनी तरक्की की रफ्तार बरकरार रखेगा। मुहतरमा सीतारमन ने कहा कि मगरबी एशिया महाजाराई की वजह से अबनाए हुरमुज में खलल पड़ने से शुरू में भारत के लिए खाम तेल, पेट्रोलियम अशिया और कीमियावी खाद जैसे अहम अशिया की सप्लाई पर असर पड़ा था, लेकिन मुल्क इन अशिया को दूसरे रास्तों से लाने का बंदोबस्त करने में कामयाब रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की सालाना तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करेंगी। वह इस मौके पर मुल्क भर के 18 NIFT कैंपस के ग्रेजुएशन तलबा को डिग्रीज अता करेंगी। कपड़े की सनतों के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और कपड़े की सनतों की वजारत की सेक्रेटरी नीलम शामी राव भी इस मौके पर मौजूद होंगी। इस तकरीब में दीगर मुमताज शख्सियतें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान, सीनियर अफसरान, असातिज़ा, दानिश्वर हजरात और तलबा शिरकत करेंगे। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 794 तक जा पहुंची है और 2500 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। तिब्बत में 16 अफराद हलाक और 546 लापता हैं। भारत और चीन समेत बचाव टीमें पनबिजली प्रोजेक्टों की सुरंगों में फंसे हुए सैकड़ों लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। इन प्रोजेक्टों में त्रिशूली 3A भी शामिल है। लापता लोगों के बारे में ख्याल है कि ये लोग पनबिजली प्रोजेक्ट कारकुन हैं। सभी 8 मुतासर जिलों से लाशें बरामद कर ली गई हैं, जैसा कि बचाव कारकुन अब भी बाकी मादा लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसी दौरान त्रिशूली दरिया में ताजा सैलाब से गोरखा जिले में झूलने वाला पुल बह गया है, जिसकी वजह से पृथ्वी शाहरा के मकें अलग थलग होकर रह गए हैं। नेपाल में शदीद सैलाब आने और नशीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के तनाजुर में बिहार में गंडक और कोसी दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। दरिया के बहाव को कंट्रोल करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 फाटक और कोसी बैराज के 20 फाटक खोल दिए गए हैं। अलबत्ता पिछले 24 घंटों में इन दोनों दरियाओं में पानी की सतह और इनसे छोड़े जाने वाले पानी की मकदार कम हो गई है। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर मौसम की तब्दीली के जेर असर ओडिशा में आज भी शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने बरगह में रेड अलर्ट जबकि मगरबी ओडिशा के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये बारिश ऐसे वक्त हो रही है कि जब केंद्रपाड़ा, भद्रक और जाजपुर के बाज हिस्से हालिया सैलाब के असर से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बाज हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी

0: मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। मौसम महकमे के मुताबिक बिहार, कर्नाटक, केरला, माहे, लक्षद्वीप, मगरबी बंगाल के हिमालयी जैली खित्ते, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। अमरीका ने कल रात अबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के फौजी ठिकानों पर हमला किया। अमरीकी फोर्सेज के मुताबिक ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाबी इस्लामी के फौजियों को अबनाए हुरमुज में समुद्री बारूदी सुरंगों के साथ रॉकेट दागने की तैयारी करते हुए देखा गया था। इसी के बाद ईरान के दो रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। खातून क्रिकेट में भारत ने टी20 एशिया कप 2026 में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड को 94 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर 3 गेंद में महज 65 रन पर आउट हो गई। दुबई में आज ग्रुप बी के एक मैच में बांग्लादेश का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा और यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे खेला जाएगा। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किर्गिज़िस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इकतसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमरीकी फोर्सेज ने अबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। और खातून क्रिकेट में भारत ने दुबई में टी20 एशिया कप के अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: इंसान इस दुनिया में मादी जरूरतों के साथ भेजा गया है। खाना और पीना इंसान की सबसे पहली जरूरत है। बगैर खाए पिए कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, न ही उसका जिस्म नश्वनुमा पा सकता है। लेकिन ये खाना और पीना हमारी ऐसी जरूरत है जो अगर एतदाल के साथ पाई जाए तो हमारे लिए मुफीद है, और अगर हद से तजावुज कर जाए तो ये न सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुंचाती है बल्कि हमें बहुत से गुनाहों की तरफ ले जाती है। फारसी की एक कहावत है कि खुर्दन बराए जीस्तन, नजीस्तन बराए खुर्दन, यानी खाना जिंदगी के लिए है न कि जिंदगी खाने के लिए। बिस्यार खोरी यानी महज जबान के चटखारे के लिए सारा दिन खाते पीते रहना बहुत से जिस्मानी अमराज को जन्म देता है, जैसे तुखमा, बदहजमी, मोटापा और आजा का शल और मफलूज हो जाना वगैरह। क्योंकि कुदरत ने यह कारखाना जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है हमारे काम के लिए बनाया है, और उसको भी आराम की जरूरत है। अगर हम मुसलसल खाते पीते रहें तो हमारे जिस्म की मशीनरी थक जाती और कमजोर पड़ जाती है, और वो तरह तरह के अमराज का बाइस होती है। दूसरी तरफ शिकमसेरी इंसान को गुनाहों की तरफ जल्द मुतासिर करती है। ऐसा इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी में लगकर अपने और समाज के लिए नुकसानदेह साबित होता है, बनिस्बत उस इंसान के जो दो लुकमे की भूख छोड़ देता है और शिकमसेरी से अपने को बचाता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, और खाओ पियो और हद से तजावुज मत करो, बिलाशुबा वो हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे किसी बर्तन का भरना इतना नापसंद नहीं जितना पेट का भरना। मदीना शरीफ का वो वाकया सीरत की किताबों में बकसरत मनकूल और मशहूर है, जब दो यहूदी अतिब्बा को मदीना शरीफ से इसलिए वापस अपने मुल्क जाना पड़ा कि मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल किया करते थे कि मैदे के तीन हिस्से कर लिया करो, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए और एक अल्लाह ताला के जिक्र के लिए, और जब दो लुकमों की भूख रह जाए तो खाने पर से हाथ रोक लो। ये सुनकर उन यहूदी अतिब्बा ने कहा कि फिर तो मदीने वाले कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। दीन इस्लाम में रोजे का हुक्म صحت کو قائم کرنے کے لیے بہترین بنیادوں میں سے ایک ہے. اس عمل سے مہلک ترین امراض جیسے کینسر تک سے روک تھام ہونا اب باقاعدہ سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے. محسن انسانیت سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی ضیافت قبول کرتے تو اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آپ کے دسترخوان پر ایک سے زائد قسم کا سالن رکھا جائے. آپ کا معمول تھا کہ کھانا رک رک کر اور اطمینان سے چبا چبا کر تناول کیا کرتے تھے. تجربہ بتلاتا ہے کہ اس طرح کھانے سے انسان تھوڑے سے کھانے میں شکم سیر ہو جاتا ہے اور یہ عمل انسان کو بسیار خوری سے بچاتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو کسی گناہ کا مرتکب ہو کر رہا، نہ بھی کر سکا تو اس کا ارادہ ضرور کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوک سے بہشت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے اور سونے کی زیادتی باعث ہلاکت ہوتی ہے. کسی دانشور کا قول ہے کہ کھانے کی خواہش ہے تو غم کو کھاؤ، پینے کی خواہش ہے تو غصے کو پیو. ایک دانشور کا قول ہے، اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو اور اتنا پڑھو جتنا جذب کر سکو. ایک اور دانشور کا قول ہے، میانہ روی اختیار کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ایک اور دانشور کا قول ہے کہ کم بولنا حکمت، کم سونا عبادت اور کم کھانا صحت ہے. آرنلڈ کا کہنا ہے کہ بھوک اور افلاس کی وجہ پیداوار کی کمی نہیں ہے بلکہ اس کی غلط تقسیم ہے. ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کم کھانے میں ہی صحت ہے اور بسیار خوری بہت سے جسمانی اور روحانی امراض کا سبب ہے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شمع فروزہ. آج کا موضوع تھا کم کھانے میں صحت ہے. تحریر جناب مولانا عادل جمال کی تھی. یہ آکاش وانی ہے 1071 کلو ہرٹز. موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہمیں سن رہے ہیں. پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. سرلا کپور کی آواز میں آج آپ پہلے سنیں گے ولید اکنی اور شکیل بدایونی کا کلام، اور چندن داس کی آواز میں آپ سنیں گے مرزا غالب اور ظاہر بھوپالی کا کلام.

रिहान घर तो वापस आ जाता है, लेकिन हिना का मासूम और हसीन चेहरा वो भुला नहीं पाता। उससे दोबारा मिलने और देखने की ख्वाहिश उसे परेशान कर देती है। लेकिन रिहान ये सोचकर बेचैन हो जाता है कि हिना को कैसे दोबारा ढूंढा जाए। अब तो वो उसे कहां मिलेगी, उसने उसका नाम पता भी नहीं पूछा। जब रिहान के दोस्त उससे उसकी परेशानी की वजह पूछते हैं, तब रिहान उन्हें बताता है कि उसे गांव की एक खूबसूरत लड़की से इश्क हो गया है। वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उससे उसका नाम पता मालूम ही नहीं है। तब रिहान के दोस्त उसे तसल्ली देते हैं कि वो सब कुछ करेंगे उसके लिए और तलाश लेंगे उस लड़की को। अगर रिहान की मोहब्बत सच्ची है तो वो उसे जरूर मिलेगी। कुछ ही दिनों में रिहान के दोस्त दरियाफ्त करते हैं कि रिहान को जिस लड़की से इश्क हो गया है उसका नाम हिना है। वो एक गांव में रहने वाले कुम्हार फैजान मिर्जा की लड़की है। ये सुनकर रिहान को तसल्ली हो जाती है। दूसरी तरफ जिस दिन से हिना रिहान को देखती है उसकी दीवानी हो जाती है। हर वक्त उसी की याद में खोई रहती है। उसकी सहेलियां उसकी ये हालत देखकर समझ जाती हैं कि उसे किसी से इश्क हो गया है। सब सहेलियां उसे समझाती हैं कि वो परेशान ना हो, उसे एक ना एक दिन उसके ख्वाबों का शहजादा जरूर मिलेगा।

तरह किस्मत इन्हें दोबारा से फिर मिला देती है। वो इस तरह के जब हिना की सहेलियां उसे परेशान देखती हैं, तो उसे उसकी सहेली नाजिया के घर शहर भेज देती है। नाजिया हिना की बड़ी अच्छी और हमदर्द दोस्त है, क्योंकि नाजिया हिना के कहने पर गांव से शहर तालीम हासिल करने आती है। जब वो हिना को देखती है तो खुशी से उसे अपने गले लगा लेती है और उसे बड़ी मोहब्बत से अपने पास रखती है। जब एक दिन नाजिया हिना को अपने साथ कॉलेज ले जाती है, जहां रिहान अपने दोस्त के साथ आता है, जहां हिना और रिहान का आमना सामना हो जाता है, दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। हिना की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो किस तरह रिहान से बात करे और अपनी मोहब्बत का कैसे इजहार करे। तब रिहान ही बात की शुरुआत करता है। वो कहता है कि जब से उसने हिना को देखा है, उसकी रातों की नींद और दिन का चैन चला गया है। वो पहली ही नजर में दिलो जान से उस पर फिदा हो जाता है। वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। वो हिना से पूछता है कि क्या वो भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है, तो हिना शर्माकर गर्दन झुका लेती है। रिहान को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है।

हिना अपनी सहेली नाजिया को बताती है कि उसे रिहान से इश्क हो गया है जो इसी शहर में रहता है और आज उसका सामना कॉलेज में हुआ था। ये सुनकर नाजिया को बड़ी हैरानी होती है। वो हिना को बताती है कि वो रिहान को अच्छी तरह से जानती है। नाजिया इन दोनों को मिलाने में उनकी मदद करती है। अब रिहान और हिना दोनों रोजाना एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों को एक दिन भी एक दूसरे से मिले बगैर चैन नहीं आता। कब सुबह हुई कब शाम, इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं। रिहान और हिना दोनों कभी ना जुदा होने का वादा करते हैं और हमेशा साथ।

लेकिन मिलन और खुशी की घड़ियां इन दोनों को ज्यादा दिन रास नहीं आई, क्योंकि जब रिहान के वालिद को पता चलता है कि उनका लड़का गांव में रहने वाले एक गरीब कुम्हार फैजान मिर्जा की लड़की से इश्क कर बैठा है और रोजाना दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। वो रिहान को बुलाकर उसे डांटते हैं कि उसने इश्क भी किया तो गांव के गरीब लड़की से, जो इनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। कहां उनका ऊंचा और इज्जतदार घराना और कहां वो कुम्हार और उनकी बेटी। वो कहते हैं कि उनका और हमारा मेल कभी नहीं हो सकता, उसे इन दोनों में से एक को चुनना होगा, या तो वो अपनी मोहब्बत को अपना ले या अपने वालिद को छोड़ दे। रिहान अजीब कश्मकश में पड़ जाता है। एक तरफ तो उसके वालिद हैं, जिन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है, उसे हर तरह का ऐशो आराम दिया, कभी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। उन्होंने उसे ऊंची से ऊंची तालीम दिलाई, उसके हर दुख सुख में उसका साथ दिया, उसे कभी वालिदा की कमी का एहसास नहीं होने दिया। एक तरफ ये सब बातें हैं और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत, जिसे वो दिलो जान से चाहता है, उसके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन जब रिहान सोचता है कि उसके वालिद ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, उसकी हर बात मानी है, तो रिहान अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है और हिना की जुदाई बर्दाश्त कर लेता है। हिना से बिछड़कर उसे एक पल भी चैन नहीं मिलता, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, हर वक्त वो उसी की यादों में खोया रहता है। वो उसे भूलना भी चाहता है लेकिन भूल नहीं पाता, बार बार उसकी सूरत उसकी आंखों के सामने आ जाती है।

हिना को गांव वापस आए हुए कई महीने गुजर जाते हैं। उसे ना तो रिहान की कोई खबर मिलती है ना कोई खत आता है। वो दिन रात उसी की यादों में खोई रहती है। यहां तक कि वो अपनी सहेलियों से भी मिलती जुलती नहीं है। बस अकेली तन्हा बैठी घंटों खुद से बातें करती रहती हैं। इधर रिहान को जब हिना की कोई खैर खबर नहीं मिलती वो बेबस हो जाता है। वो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपने दोस्तों से मिलना जुलना कहीं आना जाना सब छोड़ देता है। उसे सब कुछ सुना सुना लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार पड़ जाता है। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। खाना पीना भी छोड़ देता है। जब ताहिर हुसैन को इस बात का पता चलता है तो उनको बड़ा सदमा पहुंचता है। वो सोचने लगते हैं कि जब इनके बेटे ने उनकी मोहब्बत की खातिर ये सब किया तो क्या वो अपने बेटे के लिए उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। वो खुद को कसूरवार समझने लगे। उन्होंने ही जिद में आकर अपने बेटे को इस बात के लिए मजबूर किया ये वो सोचते हैं। और ये सोचकर वो अपने बेटे के पास आते हैं और उसे मोहब्बत से गले लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें हिना से शादी करने पर कोई एतराज नहीं और अपने घर की बहू बनाने के लिए वो उसे तैयार है। रिहान जल्द ही ये खुशखबरी हिना तक पहुंचा देता है। जब हिना ये सुनती है कि रिहान के वालिद उसका रिश्ता मांगने उसके घर आने वाले हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो अपने वालिदैन को सब कुछ बता देती है। उसके वालिदैन ये सुनकर कि उनकी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घराने से आने वाला है खुशी से फूले नहीं समाते। उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर नाज होता है और वो खुशी से उसे गले लगाते हैं। इस तरह रिहान अपने वालिद को लेकर हिना के घर आता है। खुशी खुशी दोनों के रिश्तों की बात पक्की हो जाती है। इस तरह रिहान और हिना की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है।

अभी आप सुन रहे थे प्यार की जीत, उन्मान से ये गीतों भरी कहानी, तहरीर मोहतरमा कौसर नसीम की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशरियात सुन रहे हैं। वक्त हो गया है फिल्मी नगमों के प्रोग्राम का, जिसका नाम है मेरी पसंद। तो अपनी पसंद के चंद फिल्मी नगमे लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। यह लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है पाकीज़ा।

लता मंगेशकर और साथियों को आपने सुना पारसमणि फिल्म में, और अब सुनिए आशा भोसले की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म का नाम है द ट्रेन।

0: फिर क्या हुआ
1: भैया, फिर चमका गया।
2: प्रोग्राम की आखिरी पेशकश थी ये आशा भोसले की आवाज में मेरा साया फ्रेंसी। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है रेडियो डॉक्टर। फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे इस बेहद खास फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में समाज में अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती, यानी व्यक्तित्व विकार या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। इस समस्या का समाधान मुमकिन है और इसमें होम्योपैथी एक बहुत ही अनूठी भूमिका निभा सकती है। मन, भावनाओं और व्यक्तित्व पर भी काम करती है। इनके क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथी इसमें कैसे मदद कर सकती है, आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। और आज का विषय पुनः आपको एक बार बता दें, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी, व्यक्तित्व विकार और होम्योपैथी। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक हर बार की तरह एक विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर चित्रा वासु। आप एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं, एमडी इन होम्योपैथिक फिलोसफी हैं, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में आप कार्यरत हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर चित्रा आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
3: गुड आफ्टरनून मैम एंड थैंक यू सो मच।
2: एक बहुत ही संवेदनशील विषय आज हम चुनकर लाए हैं डॉक्टर चित्रा, और चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं जो इस तरह की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं पर कई बार खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, झिझकते हैं या किसी और कारण से समय पर डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं किसी कन्फ्यूजन के चलते, तो वो जरूर आज के कार्यक्रम से कुछ लाभ ले पाए, आपसे अपनी समस्याएं बांट पाए और कुछ ऐसी जानकारियां आप उन तक पहुंचा पाए जिससे उनका जीवन थोड़ा सरल हो पाए। ये ऐसी मंशा के साथ आज का ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम विषय को समझ लें, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की आज हम बात करने वाले हैं। क्या होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और कितने तरीके के, कौन कौन से?
3: एब्सोल्युटली मैम, सो डिसऑर्डर के बारे में पता करने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा पर्सनैलिटी क्या है
2: जी,
3: फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, फिर डिसऑर्डर।
2: बिल्कुल।
3: सो पर्सनैलिटी क्या है? हर इंसान को एक पर्सनैलिटी है, वो बहुत रिलेटिव है, वो एक पैटर्न है, वो एक इंसान कैसी फील करता है, कैसी थिंक करता है, अपने रिलेशनशिप कैसी बिल्डअप करता है विद अदर्स एंड विद द सोसाइटी, और एक स्टिमुलस आने वक्त कैसे वो मीनिंगफुली अंडरस्टैंड करता है। द करेक्ट वर्ड इज परसेप्शन, हाउ ही इज परसीविंग दैट स्टिमुलस, राइट, मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट स्टिमुलस। सो अपनी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के अनुसार देन आफ्टर दैट वो रिस्पॉन्स देता है दुनिया को या लाइफ को या लाइफ सिचुएशन को। सो दैट इज पर्सनैलिटी। एंड इफ समबडी इज शाई या कोई इंट्रोवर्ट है या स्टबर्न है या कैरिस्मैटिक है या कॉन्फिडेंट है, एंड यू कांट लेबल हिम एज हैविंग सम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दीज आर ट्रेट्स। सो ट्रेट्स, वी ऑल आर हैविंग ट्रेट्स। आई टोल्ड यू ना, पर्सनैलिटी इज समथिंग विच इज शेप्ड बाय सो मेनी फैक्टर्स। क्या क्या हो सकता है? इनहेरिटेंस, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस हो सकता है, अपने टेम्परमेंट, अपने न्यूरो डेवलपमेंट, फैमिली रिलेशनशिप, अटैचमेंट, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, फिर अपने एजुकेशन, कल्चर, अपने सामाजिक लाइक सोशल एनवायरमेंट, लाइफ एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। अब एक कब डिसऑर्डर बन जाते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज की प्रोग्राम में वी आर डीलिंग विद दैट। सो डिसऑर्डर कब होता है? वेन ये जो पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस अंदर चल रहा है ना अपनी दुनिया में, जो मैंने बोल दिया थिंकिंग प्रोसेस या फीलिंग, इमोशनल रेगुलेशन, इसमें एक पैटर्न चेंज हो जाता है, लाइक
2: डिसबैलेंस समझ सकते हैं क्या, कुछ बैलेंस बिगड़ जाता है।
3: और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक ही दिन के लिए या एक ही सिचुएशन पर नहीं, इट शुड बी परसिस्टेंट, परवेसिव होना चाहिए, मतलब अक्रॉस ऑल द सिचुएशन, हर सिचुएशन में वो दिखाएंगे, एंड मैल अडेप्टिव होना चाहिए। नॉर्मली वी डू अडेप्ट द टफ सिचुएशन नॉर्मली, बट वो मैल अडेप्टिव होकर आपने अपने काम पर या अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में प्रॉब्लम क्रिएट करने वक्त ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है. सो द क्रूशियल प्रिंसिपल है ये मैम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब ये नहीं है बैड पर्सनालिटी और डिफिकल्ट कैरेक्टर और मॉरल वीकनेस, इट्स अ पैटर्न ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग.
2: वही. और कितनी तरह के होते हैं, क्या हम इसको टाइप्स में भी कैटेगराइज कर सकते हैं?
3: एक्सैक्टली, एज पर द लिटरेचर वी आर यूजिंग DSM-5-TR डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल 5th एडिशन टेक्स्ट रिविजन दैट इज पब्लिश बाय अमेरिकन साइकेट्रिक फाउंडेशन. सो सारा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर यूजिंग दैट गाइडलाइंस एंड उसके अनुसार देर आर तीन क्लस्टर्स है. सो मैं इन ए सिंपल वे फॉर आवर ऑडियंस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. सो पहले आता है एक पैरानॉइड पैटर्न, सुना होगा आपने पैरानॉइड. पता है वो कोर थिंग क्या है? वो पेशेंट आकर बोलेंगे मैं किसी को विश्वास नहीं करता हूं.
2: अच्छा,
3: आई कैनॉट ट्रस्ट यू. उनको क्या लगता है जो सामने कोई भी आ रहा है दे विल डिसीव मी, धोखा देंगे. सो दैट इज मैनिपुलेटिव है, ऐसे सोचकर पैरानॉइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाएंगे. और द सेकेंड वन इज दैट सुसाइड पैटर्न. वो पता है क्या बोलेंगे? आई डोंट नीड क्लोजनेस, मुझे किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप की आवश्यकता नहीं है. बट हमें ये पता करना है उसके पीछे कहानी भी होगा व्हाई ही हैज और शी हैज बिकम लाइक दैट. सो वो क्या अपने आप को डिटैच करेंगे, एक सोशली विड्रॉ कर अपनी दुनिया चलाता है, दैट इज स्किट्सोइड. एंड देन स्किट्सोइड टाइपल है मैम. स्किट्सोइड टाइपल में क्या होता है, वो बोलते हैं मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है, माई रियालिटी इज क्वाइट डिफरेंट. और मेरे को पता है कुछ चीज होने में तो उसका करेक्ट मीनिंग क्या है, कुछ मैजिकल थिंकिंग होता है. वो पर्सी वाला रेडी में करता है अपनी दुनिया को ऐसे बनाकर रखे हुए एंड वो सबको जाकर बोलता भी माई एक्सपीरियंस अबाउट दैट थिंग इज क्वाइट डिफरेंट, दैट इज स्किट्सो टाइपल. अनदर टाइप इज एंटी सोशल.
2: ओके,
3: दैट इज ये जो पहले मैंने तीन बोल दिया ना, पैरानॉइड स्किट्सोइड एंड स्किट्सो टाइपल, वो क्लस्टर ए में आएंगे लाइक ऑड और एक्सेंट्रिक पैटर्न में. और द नेक्स्ट फोर टाइप्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विच विल बी कमिंग अंडर क्लस्टर बी, वो थोड़ी ड्रामेटिक इमोशनल एंड इराटिक पैटर्न में आएंगे. उसमें फर्स्ट वन इज एंटी सोशल. वो पता है क्या बोलते हैं, आई एम गेटिंग बेनिफिट्स, मुझे फायदा मिलता है रूल्स तोड़ने वक्त. मेरे को कोई टेंशन नहीं दूसरों की रूल्स में वायलेट राइट्स में वायलेट कर रहा है या नहीं, आई डोंट बोदर. सो दे आर गेटिंग बेनिफिट्स. सो
2: दे डोंट फॉलो द सोशल नॉर्म्स.
3: हाँ, दैट इज द थिंग, यू शुड डिफ्रेंशिएट वेदर दैट पर्सन इज हैविंग डिसलाइक टुवर्ड्स सोसाइटी. कुछ लोग सामाजिक सिस्टम से डिसलाइक है, इट्स नॉट अबाउट एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. वो उनको अच्छा लगता है इफ आई एम ब्रेकिंग द रूल मुझे बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज एंटी सोशल. सो मैम द नेक्स्ट टाइप इज बॉर्डर लाइन. उनका कोर थीम यही है मुझे छोड़ना मत क्योंकि मुझे अबैंडनमेंट की इश्यूज है, दैट इज देयर कोर थिंग. सो वो क्या करेंगे, उनको बिल्कुल इंटेंस, दिस इज लिटिल बिट डेंजरस ऑल्सो बिकॉज इसमें स्पेक्ट्रम होता है. लाइक एक साइड में क्रॉनिक एम्प्टीनेस है, एक शून्यता है, अदर साइड में एक्सेसिव इम्पल्सिवनेस है, एग्रेशन है. सो दिस इज लिटिल बिट डेंजरस, प्रोवाइडेड यू हैव टू इतने अच्छे से साइकेट्रिक असेसमेंट करने की आवश्यकता भी है दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में. देन Another thing is very important, it's narcissistic. आजकल जो social media में इतने वो word is very common, है ना? Everybody is using that word very frequently. So narcissistic personality pathology में क्या है, वो ऐसे बोलेंगे core theme है ये, that person will say या behave in that way, मेरी importance को recognize कीजिए, मुझे admiration चाहिए. If somebody is criticizing me, he can't tolerate.
2: Okay.
3: That is narcissistic personality pathology. But at the same time, main apathetic rahunga. I won't show empathy to others. That is narcissistic personality disorders. Then another cluster B mein aayenge, histrionic. Core theme.

0: आई है, प्लीज नोटिस मी, मुझे नोटिस कीजिए, आई नीड इमोशनल रिकॉग्निशन, दैट इज हिस्टर अटेंशन सीकर्स, ठीक है। नाउ द लास्ट वेराइटी क्लस्टर सी, उसमें अवॉइडेंट, वो कॉर थीम है, मुझे क्लोजनेस चाहिए बट आई एम अफ्रेड दैट यू विल रिजेक्ट मी, दैट इज अवॉइडेंट, वो अवॉइड करेंगे हर सिचुएशन को, मगर मैं हमेशा आई मीन आई वॉन्ट टू टेल यू, ये सब प्रोजेक्शन के पीछे कुछ कहानी भी है, that will come, we will come to that thing beautifully. Then the another personality disorder is dependent. Dependent personality disorder mein wo aakar bolenge I need you because I don't feel capable of being alone, mujhe akela acha nahi lagta hai, mujhe kuch decision akele nahi kar payenge, I need someone, that is dependent. And the last one is OCPD, obsessive compulsive personality disorder, not OCD, obsessive compulsive disorder nahi, that is something else. This is OCPD. वो ऐसे सोचते हैं आई फॉलो, सिर्फ मैं फॉलो करती हूँ रूल, और मैं कुछ इवेंट कुछ होने वक्त आई माई सेल्फ हैव टू डू इट, अगर दूसरों ने कर दिया तो वो खराब हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे,
1: ओके,
0: सो दैट इज द थिंग।
1: तो काफी विस्तार से आपने सारी क्लस्टर्स में जितने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं उनको उनके बारे में बताया डॉक्टर साहब ने, बहुत सारे जो अलग अलग इसके क्लस्टर्स हैं या उसमें जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं ये किस कारण से हो जाते हैं, क्या इसके पीछे कोई अनुवांशिक या जेनेटिक कॉज होता है, या किसी को कोई एक्सपीरियंस बचपन में ऐसा रहा हो जो उसमें एवरलास्टिंग उसने दिमाग में इफेक्ट डाला हो जो इस डिसऑर्डर को जन्म दे जिसने दिया हो, क्या रीजन होता है?
0: यस शालिनी मैम, अगर मैं डेफिनेट आंसर बोलना चाहती तो देयर इज नो सिंगल कॉज, बट आपको पता है पर्सनालिटी हमेशा कैसी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट, पर्सनालिटी की नॉट अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डेवलपमेंट कैसे होता है, लाइक इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है, क्या क्या चीज की, जेनेटिक बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, अपनी टेम्परमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल रेगुलेशन, attachment and relationship, childhood experience and adolescent experience, trauma, कुछ अब्यूज है ना, फैमिली एंड सोशल एनवायरमेंट,
1: हाँ तो बैकग्राउंड बन सकता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल। एंड हम ये नहीं बोल सकते हर ट्रॉमा सर्वाइवर को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या ऐसे नहीं बोल सकते दैट एवरी टाइम ट्रॉमा होने के के बाद ऐसे कॉन्सिक्वेंस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, नहीं, वी कांट से लाइक दैट। एंड हॉर्मोन्स एंड सेक्स स्ट्रेस सिस्टम्स कैन इन्फ्लुएंस योर इमोशनल रेगुलेशन एंड बिहेवियर ऑल्सो, बट ऐसे नहीं बोल सकते एक पर्टिकुलर हॉर्मोन एक्ट कर या उसके इम्बैलेंस से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ गया, नो, ऐसी कोई स्टडीज और ऐसी कोई रिजल्ट कुछ नहीं आया है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इज अ बायो साइको सोशल डेवलपमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है, राइट,
1: बहुत सारी चीजें हैं,
0: डेफिनेटली
1: जी। तो किस तरह से इसको समझा जाता है और किस तरह से डील किया जाता है और होम्योपैथी किस तरह से उसमें कारगर होती है, ये सारी बातें हम आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन एक मैसेज आया है, बहुत सारे मैसेज हैं, उसमें से एक मैसेज हमें देवदत्त पारसोलिया जी ने लिखा है प्रताप विहार गाजियाबाद से, नमस्कार टू आरजे डॉक्टर्स एंड योर होल टीम, वेरी स्वीट वॉइस एंड नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। और एक ये मैसेज है वसुधा जी का, कहां से लिखा है ये तो नहीं पता, कि क्या ADHD स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होम्योपैथी से मैनेज हो सकता है, तो ये बताएं।
0: यस, इसके लिए पहले वो पेशेंट से बात करना, आई मीन ऑल द कंडीशन शुड बी एग्जामिन, अच्छे से केस अटेंड करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि होम्योपैथी ट्राइज टू हील द पर्सन, वो अपनी नजरिया बदलने के लिए, लाइक यू कांट चेंज, वैसे तो दिस इज नॉट कमिंग अंडर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बट स्टिल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, यू कैन गो टू होम्योपैथिक डॉक्टर,
1: ओके, ठीक है। एक हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, हेलो,
2: नमस्कार
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए,
2: बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से बोल रहा हूँ,
1: जी जी बताइए क्या पूछना है।
2: मैं ये कह रहा हूँ जो डिसऑर्डर है ना
1: जी,
2: इसका कम दिमाग से संबंध है तो उसके लिए दवाई बताइए होम्योपैथी में, अगर जैसे किसी का दिमाग जैसे कोई कुछ उच्च लेवल का होता है, किसी का जैसे कोई कंपनी में काम करता है तो जो कुछ उच्च लेवल का आदमी होता है तो उसको ऊंचा पद दिया जाता है, और जो छोटा लेवल का आदमी होता है या उसका दिमाग से कुछ कम है तो उसको कम वाला काम दिया जाता है, जिम्मेदारी से काम दिया जाता है, तो इसके बारे में बताइए कि जो डिसऑर्डर है उसका कम दिमाग से संबंध है तो उसका दवाई कुछ होता है वो तो बताइए।
1: दवाई तो रघुवीर जी हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको देखना होता है, और मोर ओवर जैसा डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया था कि ये कस्टमाइज्ड होती है मेडिसिन होम्योपैथी, तो मैम बताएं किस तरह से मेडिसिन दी जाती है, थोड़ा सा रघुवीर जी को भी पता चले कि होम्योपैथी में एक्चुअली मेडिसिन किस तरह से दी जाती है।
0: रघुवीर जी नमस्ते, मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे पता है ये बहुत पेनफुल वाला सिचुएशन है

0: डॉक्टर ज्यादा है, बट मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आप एक डॉक्टर के पास, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना है, अपने सिम्टम्स, अपने सब एक्सपीरियंसेस आपको बोलना है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद आपकी दुनिया से मैं या किसी और डॉक्टर को ट्रैवल करना पड़ेगा आपकी मेडिसिन एक्सप्लोर करने के लिए
1: जी।
0: सो दैट मिस इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट।
1: बहुत सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं और तब दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है। और रोहिणी से राज रानी जी हमें लिख रही हैं, इनकी उम्र 68 इयर्स है। इन्होंने लिखा है, वैसे अपनी वाइफ के लिए लिखा है, पता नहीं, लिखा है कि मेरी मिसेस को कई बार हाथ धोने की और उनको ये फील होता है कि उनका हाथ साफ नहीं हुआ है, इस तरह की कोई इनको डिसऑर्डर है, और होम्योपैथी में क्या इसका इलाज है और कैसे कराया जा सकता है। तो ये ओसीडी या कुछ रहता है?
0: यस मैम, दिस कंडीशन इज आज की टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड उसमें ओसीपीडी, मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया था, इट्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और अभी ये जो सिम्टम बोल रहे हैं इट्स ओसीडी, ओबसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दैट इज रियली डिफरेंट। वो ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, एंड दे विल डू सर्टेन प्रैक्टिसेस आल्सो इन ऑर्डर टू अपनी ऑब्सेशन को वो कंपल्शन रूप में आकर वो करेंगे। डेफिनेटली मेडिसिन है, यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर।
1: चलिए ये अच्छी बात है कि मेडिसिन है होम्योपैथी में और आप दिखा सकते हैं किसी स्पेशलिस्ट को जाकर। और आपने एक जिक्र किया था जब आप बता रही थी कितनी तरह के डिसऑर्डर्स हैं, उसमें एक बॉर्डर लाइन और एक नार्सिसिस्ट की भी आपने बात की थी। तो ये एक प्रश्न है हमारे पास, लिखने वाले का नाम अभी मुझे दिख नहीं रहा है, तो उन्होंने लिखा है कि इज देयर अ क्योर फॉर नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हाउ टू हेल्प द पर्सन। तो एक तो हम इसको समझ लें, वो समझा दिया आपने नार्सिसिस्ट क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, पर इसको किस तरह से होम्योपैथी में डील किया जाता है, किस तरह से आप इसमें मेडिसिन तक पहुंचते हैं?
0: यस, अभी ड्यूरिंग आवर प्रीवियस डिस्कशन मैंने बोल दिया ना, दिस इज वेरी नाउअडेज वेरी कॉमन है ना, एंड मैं पहले मेरी एक डिस्क्लेमर है मैम, मैं किसी को लेबल करना नहीं चाहती किसी को पर्टिकुलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बिकॉज है ना, मैं किसी की हार्मफुल बिहेवियर को मैं एक्सक्यूज भी नहीं दे रही हूँ, ठीक है, दैट इज माई डिस्क्लेमर। बट स्टिल कोर थीम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की यही है, द पेशेंट विल कम एंड से आई डिजर्व स्पेशल ट्रीटमेंट, दैट पर्सन को हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। सो बट इसमें एक यू हैव टू डिस्टिंक्ट वन, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट वन थिंग, कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बट दैट इज नॉट नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो बट द प्रॉब्लम इज दैट द विक्टिम्स है ना, क्योंकि इफ दे आर गेटिंग इन टू सम रिलेशनशिप में विक्टिम्स विल बी सफरिंग। सो पता कैसे आइडेंटिफाई करना है, दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? आई डिजर्व स्पेशल, वेन यू टॉक टू द पर्सन हमें समझ में आता है ही इज मूविंग टूवर्ड्स दैट पर्सनैलिटी पैथोलॉजी, एंड वो पता है आकर हमें बोलेंगे जो लोग है ना हम मेरे बारे में समझते नहीं है, दे डोंट अप्रिशिएट मी, मेरी टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करता है, आई एम नॉट गेटिंग वैलिडेशन, एंड मुझे ये क्रिटिसिज्म भी पसंद है, यू नो द बेसिक थिंग वही है, दे कांट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, सो ही फील्स दैट दैट पर्टिकुलर पर्सनैलिटी इज फीलिंग दैट माई एंटायर सेल्फ वर्थ के ऊपर अटैक हो रहा है। सो नेचुरली जिसमें ट्रिगर क्या क्या हो सकता है, एंगर हो सकता है, शेम हो सकता है, विड्रॉवल होता है, रिटेलिएशन हो सकता है, बट इसमें पता है मैम, यू कांट लेबल अ पर्सन दैट यू आर नार्सिसिस्टिक, इंस्टेड केस अटेंड करने वक्त यू कैन कलेक्ट द सिम्टम्स लाइक व्हाट हैपेंस इफ समबडी आपको क्रिटिसाइज करना है, तो आपके अंदर क्या चलता है, व्हाट यू थिंक इन दैट वे, और आपको कोई जिंदगी में फेलियर की सिचुएशन आने वक्त व्हाट यू आर थिंकिंग और हाउ यू आर कॉपिंग योरसेल्फ टू दैट सिचुएशन, और आपको रिकग्निशन नहीं मिलने वक्त क्या हो सकता है, एंड I told you now the other person I am saying about the victims of you know
1: jinke sampark mein aate hain unke bare mein
0: psycho communication is very much needed, setting boundaries set up karna hai, and agar even if you are loving someone in that way and you don't need to tolerate harmful behavior you have to set the boundary, and that doesn't mean that you are denying compassion, of deny nahi kar rahe, so
1: क्योंकि इसको ये जो आप बता रहे हैं आज वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा टिकलिश, थोड़ा सा सेंसिटिव आज का टॉपिक है और इतना आसान नहीं है समझना, कई बार इसके लक्षण भी ऐसे होते हैं जो जैसा आपने बताया है कि जरूरी नहीं है कि ये अगर वो कॉन्फिडेंट है तो नार्सिसिस्ट है, मतलब डिफरेंस और बॉर्डर लाइन
0: एक और चीज ऐड करना चाहती हूं, ऐसी वाला पर्सनैलिटी पैथोलॉजी डील करने वक्त ना व्हाट शुड बी आवर गॉल्स, उनको ना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करवाना है, इम्प्रूव करना है अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ऑल, एंड अपनी इमोशनल रेगुलेशन को यू हैव टू यू नो समझाना पड़ेगा, हेल्दियर रिलेशनशिप की उससे क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे ये सब समझाना पड़ेगा।

0: पड़ेगा, अपनी सेल्फ एस्टीम को, एस्टीम के बारे में समझाना पड़ेगा, एम्पथी, एम्पथी शो करना है।
1: बहुत सारी चीजों को अभी हमें समझना बाकी है, लेकिन हमारे एक श्रोता है काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उत्तराखंड से रघुवीर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: नमस्ते
1: जी। जी नमस्कार जी।
2: डॉक्टर मैम को भी नमस्ते।
0: नमस्ते जी।
2: मैम मेरे दो सवाल हैं, एक तो मैं ज्यादा सोचता हूँ, मतलब जैसा कोई चीज किसी को कुछ समझाओ या कुछ हमारे मतलब वो नहीं सुने ना सुने या कुछ उसमें ज्यादा सोचता हूँ उसके बारे में, कोई किसी को कुछ डांट दिया है जैसे अपने बच्चों को या कुछ ना बोले तो फिर उनका नुकसान होता है, मतलब कुछ भी चीज या कोई चीज के बारे में कोई जिसको कुछ समझाओ या कोई हमारा कोई गलत करे तो मैं अगर उसको ना हमारा ना माने या कुछ भी करे तो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है उसमें, तो मैं सोचता है मैंने उसको तो बेकार ही बोला,
1: बाद में इनको लगता है कि बेकार बोला है ना।
2: हाँ हाँ
1: जी, लेकिन जल्दी से गुस्सा आ जाता है।
2: हाँ, ना बोले तो चुपचाप रहे तो उनका भी नुकसान होगा फिर हमारा भी नुकसान होगा, या दैनिक जीवन में ना जैसे बच्चों को हुआ या कोई परिवार में या किसी भावने को हमारे साथ धोखा कर रहा है या हमको उसने नुकसान कर दिया और उसको कुछ समझाओ बोलो और ना माने तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है
1: जी,
2: तो फिर मैं सोचता हूँ मैंने तो बेकार ही बोला उसको नहीं बोलना
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कई बार हम लोगों के सबके साथ होता है, पर क्या ये एक बीमारी की श्रेणी में आता है क्या डॉक्टर चित्रा, या इनको मेडिकेशन की जरूरत है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसमें ये होता है एक स्टिमुलस या एक सिचुएशन आने वक्त द पर्सन एक रिएक्शन देता है, तुरंत ऑटोमेटिक रिएक्शन देता है, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस और क्या मैं सही बोल रहा है, इसलिए आई एम सेइंग ना दिस इज द स्कोप ऑफ होम्योपैथी। एक स्टिमुलस आने वक्त आपको सोचना है, आपकी अवेयरनेस को एक्टिवेट करना है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, अपनी चॉइसेस बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचकर वेदर में बात करना है इस चीज पर, ये सब पहले विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या फाइव मिनट आपको सोचना है, देन यू हैव टू गिव द रिस्पॉन्स।
1: डॉक्टर साहब यहाँ पे मुझे भी एक बात पूछनी है कि ये दो अलग अलग शब्द होते हैं, एक होता है रिएक्ट करना और एक होता है रिस्पॉन्ड करना, और इन चीजों को बहुत, इन दोनों शब्दों को बहुत बार बोला जाता है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस।
0: एग्जैक्टली, प्रायर टू दैट आई हैव टू से यू, आई हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर साइकोलॉजिकली, एंड बिहेवियर इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। I am repeating, behavior of the person to respond to a stimulus. Stimulus मतलब external stimulus हो सकता है या internal stimulus हो सकता है, कोई भी life situation, आपको पता है जिंदगी में बहुत ऐसी situations आते हैं, like that can, life can throw different situations to you, that anything can become stimulus. So stimulus आने वक्त you have to give response, that ability को हम बोलते हैं behavior of a human being. Okay, so डेफिनेशन में यू हैव टू रेस्पॉन्ड, यू डोंट नीड टू गिव रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन इज अ नेगेटिव टर्म, रिएक्शन में यू आर नॉट डूइंग रिफ्लेक्शन अपॉन दैट थिंग, आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता है,
1: जो इमीजिएट अगर आप कुछ चीज पे रिएक्ट करते हो दैट इज रिएक्शन, कि आप सोच नहीं रहे हो। तो शायद मुझे लगता है रघुवीर जी अगर सुन रहे हो हमारे प्रोग्राम में तो शायद ये इसी चीज को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ज्यादा सोचते नहीं है, हम इमीजिएट बोल देते हैं या रिएक्ट करते हैं,
0: ऑटोमेटिक रिएक्शन,
1: और बाद में फील होता है कि ये रिएक्शन थोड़ा ओवर था।
0: सो ही शुड अंडरस्टैंड दैट ऐसे हो सकता है, दैट आई विल फील बैड लेटर, मुझे ही दुख होगा, इसलिए मैं थोड़ी सी पहले इसके रिफ्लेक्शन कर रही हूँ।
1: जी हाँ, आप हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, विशेष सब्जेक्ट के साथ आज हम आए हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी पर बात हो रही है, काफी सारी बातें डॉक्टर मैम हमको बता चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अभी जानना बाकी हैं, और एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो।
3: हेलो
1: जी, नमस्कार।
3: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी राजेंद्र जी, प्रश्न पूछें।
3: जी, पहले तो शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार।
1: जी नमस्कार, स्वागत।
3: और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार।
0: थैंक यू, नमस्कार
3: जी। मेरे चार सवाल है मैम, प्लीज वन बाय वन। अब पहला सवाल मेरा ये है कि जब मैं किसी से वफादारी, नमक हलाली, नेकी बेहतरी भलाई से पेश आता हूँ और बदले में मुझे कोई मतलब हर्ट करे या पिंच करे, टॉर्चर करे, तो मैं फौरन हाइपर हो जाता, मुझे गुस्सा आता है, अपना वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये कि जब भी मेरे सामने कोई मेरे से ज्यादा योग्य मतलब हैंडसम या टैलेंटेड इंसान आता है तो उस वक्त मैं थोड़ा हाइटेड हो जाता हूँ, मतलब अपनी बात जो है ना उसके सामने मैं आराम से रख नहीं पाता। जैसे शालिनी मैम ने जैसे डॉक्टर शुरू किया हमने तो शालिनी मैम की वजह से मेरी हाइड्रेशन दूर हुई, वरना जब मैं फोन कर रहा था मेरे हाथ पैर सब पर कांपते थे, हाथ पैर

0: पसीने आ जाते थे। तो ये जो मेरी हेडिंग शाली मैम ने ही दौर की। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये वॉइस जो होती है हमारी, इसको मेलोडियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और चौथा आखिरी सवाल जो है वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे गुस्सा आया या मेरे पेंशन परेशानी में हो, मुझे किसी ने हर्ट किया, पिंच किया और मेरे सामने बेचारा कोई भोला भाला सीधा साधा फरियादी भी आ गया या चक भी, तो उस वक्त पता नहीं क्या होता कि मैं कंट्रोल कर नहीं पाता, तो मैं वो गुस्सा मेरा उसको निकल जाता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड करें।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विशेष हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर अच्छी बात है कि आप खुल के बोल रहे हैं और बता रहे हैं राजेंद्र जी। यहाँ पर डॉक्टर साहब क्या एडवाइस रहेगी, इनके सब प्रश्न अलग अलग तरीके के हैं।
2: जो राजेंद्र जी ने जो प्रोजेक्ट कर दिया सिम्टम्स है ना, आई एम श्योर उसके पीछे कुछ और है। सो अगर सपोज केस टेकिंग में सब खुलकर आएंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहती हूँ बिकॉज ही सेड सो, ये जो बात कर रहे गुजार रहे लाइक ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, उसके पीछे कभी ऐसी सिचुएशन हो सकता है। लाइक सी आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैवंट मेट हिम पर्सनली, आई हैवंट टेकन द केस, सो दैट इज माई डिस्क्लेमर। बट स्टिल ऐसी पेशेंट्स के साथ, ऐसी पेशेंट्स नहीं, ऐसी सिचुएशन पर या ऐसी उसमें ये हो सकता है इसके पीछे लाइक कुछ पहले कुछ पास्ट एक्सपीरियंस या क्रॉनिक एम्प्टीनेस हो सकता है, मगर उसके भी पीछे कहानी अलग है, वो पर्टिकुलर पर्सन की दुनिया अलग है मैम। सो उससे तो ट्रैवल करना पड़ेगा ना टू एक्सप्लोर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन एंड इंडिविजुएशन।
3: और बहुत सारी बातें हमें अभी करनी है क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारी चीजों को अभी समेटना है। तो ये मुझे बताइए कि एक बात की जाती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात होती है, जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं और मानसिक रोगों की बात करते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ये क्या है और इसका क्या महत्व है, ये बताइए।
2: यस मैम, व्हेन वी स्पीक अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वी शुड रिमेम्बर दैट डायग्नोसिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पैटर्न। जो भी कैटेगरीज मैंने बोल दिया वो एक पैटर्न है, इट्स नॉट अबाउट द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ए ह्यूमन बींग। एक इंसान की पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। सो हियर इन दिस एस्पेक्ट होम्योपैथी हैज रोल। मतलब हमें ये पूछ सकते हैं व्हाट इज रिजेक्शन, आपकी लाइफ में इफ समबडी इज रिजेक्टिंग यू हाउ डू यू टेक इट अप, है ना। और कोई अबैंडन करने वक्त आपको क्या लगता है, और कोई आपको इग्नोर करने वक्त आपको क्या लगता है। सो मेनी थिंग्स लाइक you can ask. Then I want to tell you something about every time I used to stress this thing, individuation. Individuation matlab a hai how a human being is becoming different from another human being. So wo individuation is the trait of a human being, wo alag kaise ban jata hai, wo pata karne ki process hai individualization after taking the case, kyunki wo case attend karne ke baad, case analysis karne ke baad hame pata chal jata hai what is the characteristic symptom of that patient. Based on that thing we can prescribe the constitutional रेमेडी विच इज डिपेंडिंग अपॉन द टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम्स। उसमें ऐसी नहीं सिर्फ ओनली मेंटल सिम्टम, बिकॉज समटाइम्स इट इज हैविंग एसोसिएशन विद योर फिजिकल सिम्टम्स ऑल्सो।
3: ओके,
2: नो यू हैव टू कलेक्ट ऑल द सिम्टम्स एंड वही टोटैलिटी के ऊपर आपको प्रिस्क्राइब करना है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एंड आई ऑलवेज यूज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर दैट थिंग, फिनोमिनोलॉजिकली इंट्रिकेट स्पेसिफिक रेमेडी फॉर दैट पर्टिकुलर केस।
3: ओके, तो ये हर केस में अलग होगी,
2: अलग हो सकता है, हो सकता नहीं, अलग होगा,
3: अलग ही होगा। अच्छा ये बताइए जो एलोपैथी की जो हम बात करते हैं, जहां पर हम ट्रीटमेंट करते हैं एलोपैथी विधा से, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो करते हैं वो किस तरह से अलग अलग है, इसमें अलग दृष्टिकोण क्या है जो होम्योपैथी का है।
2: डेफिनेटली क्राइसिस मैनेजमेंट लाइक आफ्टर डूइंग द साइकेट्रिक असेसमेंट it needs to be referred, we have to refer the cases to the psychiatrist, because they are having so much scientifically proven evidences methods hai na to manage the crisis, because ma'am at times certain situations are when it is going beyond our control like violence, substance abuse ya suicidal risk, so at that time it's about the life of a human being. You have to refer to, because homeopathic is scope alag hai isme. I don't want to, yeah, any other homeopathic doctors, I don't think they are trying to change the personality. Nahi, we are trying to instill a qualitative growth inside, wo insaan ke andar ek qualitative growth instill karne ke liye koshish kar rahe. That is healing actually.
3: उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको एक नई चीज जानने को मिली होगी, मानसिक स्वास्थ्य की तरफ एक नई नजरिए से आज आप देखना शुरू करेंगे। हम आज के अपने रेडियो डॉक्टर का धन्यवाद देना चाहेंगे जो समय

0: डालकर यहाँ आई हैं और इतनी जो जटिल सा हमारा ये एक एपिसोड था उसको आपने काफी सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि काफी बेनिफिशियल रहा होगा हमारे श्रोताओं के लिए। डॉक्टर चित्रा वासु हमारे साथ रही, होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं, एमडी इन होम्योपैथिक फिलोसफी हैं, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एन सिटी दिल्ली में आप कार्य करती हैं। धन्यवाद आपको कि आप समय निकालकर यहां आई हैं। तो याद रखिये, सेहतमंद ही एक खुशहाल जीवन की कुंजी है, इसलिए अपना और का ख्याल रखिए। इसी तरह से रेडियो डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: थैंक यू मैम।
0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र होंगी।
2: आकाशवाणी है, अब आप कड़ी मेहनत से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी किर्गिजिस्तान के दो दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमरीकी फोर्सेज ने आबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया में सेरेम्बन के मुकाम पर तुआनको मुहरीज ट्रॉफी 2026 में मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। और खातिन क्रिकेट में भारत ने दुबई में T20 एशिया कप के अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी किर्गिजिस्तान के दो दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं। वजीरों की काबीना के चेयरमैन कासिम अलीफ आदिल बेग अलेशुविच ने हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम के खैर मकदम के लिए रिवायती किर्गिज रक्स का भी एहतमाम किया गया। जनाब मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए किर्गिजिस्तान के सदर सेवर जापारोव के दावत पर वहां गए हैं। अपने दौरे के पहले दिन वजीर आजम सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर SCO रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी कई दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे और कल SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जनाब मोदी आज बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद वो महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाएंगे और महात्मा गांधी के मुजस्मे पर अकीदत के फूल नजर करेंगे। साल 2015 में किर्गिस्तान के अपने दौरे के मौके पर वजीर आजम ने इस मुजस्मे की नकाबकुशाई की थी। जनाब मोदी आज शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के कई रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत भी करेंगे। इनमें रूस के सदर के साथ बाहरी बातचीत के साथ साथ आर्मेनिया, किर्गिजिस्तान और ईरान के सुदूर के साथ मीटिंगें भी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ताशकंद का अपना दो रोजा सरकारी दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कल दो तरफा ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए सदर शौकत मिर्जियोयेव से बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात को एक जामे दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया। सभी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की सालाना तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करेंगी। वो इस मौके पर मुल्क भर के 18 NIFT कैंपस के ग्रेजुएशन के तलबा को डिग्रीज अता करेंगी। कपड़े की सनतों के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और कपड़े की सनतों की वजारत की सेक्रेटरी नीलम शामी राव भी इस मौके पर मौजूद होंगे। इस तकरीब में दीगर मुमताज शख्सियतें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान, सीनियर अफसरान, असातिज़ा, दानिश्वर हजरात और तलबा शिरकत करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इक्तसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। अमरीका के अपने दौरे में शिकागो में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान की लड़ाई नीज़ अबनाए हुरमुज को बंद किए जाने के तनाजुर में जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की कैफियत और सप्लाई निजाम में रूकावटों के बावजूद उम्मीद है कि भारत अपनी तरक्की की रफ्तार बरकरार रखेगा। भारतीय बहरिया ने आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में निस्तार जुमरे के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण को बहरी बेड़े में शामिल किया। इससे मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए बहरिया के सरबराह एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि

किशोर कुमार के साथ ये थी आशा भोसले, फिल्म का नाम था राखी और हथकड़ी। और मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में एक नगमा जो आपने पहले सुना वो आराधना फिल्म से था। हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म है सुहाग।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये नगमा हमने आपको सुनवाया आंसू बन गए फूल फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुनिए, फिल्म है अभिलाषा।

0: प्रबुद्ध वालों का ये प्रोग्राम आप आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम अभी जारी है। फिलहाल वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है भाखड़ा नंगल डैम।
1: हिंदुस्तान में आजादी के बाद जिन नदी घाटी मंसूबों पर काम शुरू हुआ था उनमें से भाखड़ा नांगल मंसूबा सबसे अहम था। वैसे इस मंसूबे का तसव्वुर 20वीं सदी के शुरू में ही हो चुका था, लेकिन काम का आगाज 1948 में हो सका आजादी मिलने के बाद। 1963 में इस मंसूबे को तकमील तक पहुंचाया गया था। 2 अक्टूबर 1963 के दिन हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जनाब जवाहरलाल नेहरू ने इसका इफ्तिताह किया था। उन्होंने इस मौके पर इस मंसूबे की बहुत ज्यादा तारीफ की। उनका मानना था कि इस किस्म के मंसूबे हिंदुस्तान को तेजी से तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। वैसे उनकी बात काफी हद तक दुरुस्त भी थी, क्योंकि उस मंसूबे की वजह कर तकरीबन 40,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन की आबपाशी मुमकिन हो सकी थी। इस मंसूबे के सबब 1325 मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन हो सकी। इस मंसूबे के तहत जो बिजली तैयार हो सकी थी उसे दूर दराज के उन इलाकों तक पहुंचाने के लिए जहां इसका इस्तेमाल हो सकता था तकरीबन 3,680 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइंस की तैयारी की गई। यहां पैदा होने वाली बिजली की अहमियत का पता इस हकीकत से चल सकता है कि दिल्ली तक वहां की बिजली को पहुंचाया गया और वहां इसका इस्तेमाल होने लगा। अगर हम भाखड़ा नांगल मंसूबे के महल्ले वकूह की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका नाम भाखड़ा नांगल इस वजह कर दिया गया कि इस मंसूबे के अंदर दो अदद बांध हैं। एक बांध भाखड़ा में है और दूसरा नांगल में। ये दोनों बांध सतलुज नदी पर हैं। इसके अलावा नांगल में पानी के बहाव के लिए रास्ता है जिसमें रवा पानी की तवानाई से बिजली पैदा की जाती है। इन सबके अलावा बड़े पैमाने पर नहरों का जाल है जो दूर दूर तक वहां से पानी को ले जाता है। इस पानी का इस्तेमाल आबपाशी के लिए और दूसरे मकासिद के लिए होता है। इस मंसूबे के पूरा होने के सबब पंजाब और हरियाणा को काफी फायदा हुआ। दोनों सूबों में जरात की सूरत हाल में काफी बेहतरी आई और राजस्थान को भी थोड़ा फायदा हुआ, मगर मुकाबलतन कम। भाखड़ा बांध दुनिया की उन बहुत ही ऊंची बांधों में से एक है जहां पानी सीधे नीचे की तरफ गिरता है। इसे सतलुज नदी पर बनाया गया है जहां भाखड़ा घाटी है। वो मकाम रूपनगर के करीब है। बांध की बुलंदी 226 मीटर है और इसकी लंबाई 518 मीटर है। नीचे के हिस्से में इसकी चौड़ाई 362 मीटर तक है। अगर बांध की ऊंचाई की बात की जाए तो मुल्क में सिर्फ टिहरी बांध ऐसा है जो इससे ज्यादा बुलंद है। इसकी बुलंदी 260 मीटर है। बांध की बुलंदी की वजह कर इस मकाम पर पानी का एक बड़ा झीलनुमा जखीरा बन गया है। इस झील में तकरीबन 9,870 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा हो सकता है। इस झील को गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर गोबिंद सागर झील का नाम दिया गया है। नांगल बांध नांगल के मकाम पर वाके है। यह मकाम भाखड़ा बांध से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बांध सिर्फ 29 मीटर बुलंद है। इसकी लंबाई 300 मीटर से ज्यादा है और इसकी चौड़ाई 121 मीटर है। यह बांध एक मुआविन बांध की तरह काम करता है। इसका काम है भाखड़ा बांध से निकलने वाले ज्यादा पानी को जमा करना और इसका इस्तेमाल करना। सबब यह है कि भाखड़ा बांध में पानी की मकदार और इसकी गहराई घटती बढ़ती रहती है। नांगल में एक नहर भी है जिसे नांगल हाइडल चैनल के नाम से जाना जाता है। यह नहर नदी के बाएं किनारे से निकलती है। इसकी लंबाई 64 किलोमीटर से ज्यादा है और चौड़ाई तकरीबन 43 मीटर है। यह नहर 6 मीटर से ज्यादा गहरी है और पूरी तरह से पक्की है। इसके लिए सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। मकसद ये है कि लंबे सफर के दौरान नहर से पानी जेरे जमीन या इधर उधर बहकर बर्बाद न हो जाए। जब नहर का पानी तकरीबन 64 किलोमीटर का सफर तय करता है तो यह पानी तकरीबन 70 मीटर नीचे आ जाता है। इस वजह से पानी का बहाव काफी तेज होता है और पानी के बहाव की वजह से पैदाशुदा तवानाई का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए होता है। अगर हम असल भाखड़ा नहर की बात करें तो यह तकरीबन 174 किलोमीटर लंबी है। इस तरह पानी बहुत दूर तक जाता है और बहुत बड़े इलाके को सैराब करता है। यही सबब है कि इस मंसूबे

0: की वजह कर शिमाली हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा ज़राअत के मैदान में आगे बढ़ा और इसका फायदा वहां के लोगों को लगातार अब तक मिल रहा है। कुल मिलाकर तकरीबन 15 लाख हेक्टेयर अराजी की आबपाशी होती है। इस तरह इस मंसूबे ने मुल्क को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है। मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक ये बांध कायम है और इसका इस्तेमाल होता रहेगा।
1: आपने सुना प्रोग्राम तारीख साज, मौजूद था भाकड़ा नंगल डैम। तहरीर डॉक्टर एम ए हक की थी और रवि थे एस एम नुमान। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के तहत अब सुनिए लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम को फिल्म है हम आपके हैं कौन।

0: पर इसकी चर्चा करते हुए पीएम ने स्वनिधि से जुड़ी महिलाओं के उदाहरण जो दिए हैं, पीएम स्वनिधि से वो सामने आए। क्या छोटे उद्यमों तक आसान वित्तीय पहुंच सचमुच महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को भी सशक्त कर रही है?
1: अब ऐसी लाखों माताएं और बहनें हैं जिनको पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण का ये जो पहलू है, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि पीएम स्वनिधि योजना की जो लाभार्थी, इनमें 46% महिलाएं हैं। और यानी देश में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं, और ये सब बड़े छोटे कारीगर हैं, कारोबार हैं। तो ये जब जब महिलाओं का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य भी आगे बढ़ता है। जैसे आपने कहा, उनके बच्चों की शिक्षा बढ़ती है और देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान बढ़ता है, और इस तरह से महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास भी जागता है। तो यही से महिला सशक्तिकरण का एक नया रूप है। यानी रेड़ी पटरी के काम में जुड़ी सभी जो बहनें हैं, प्रधानमंत्री ने उनको शुभकामनाएं भी दी और पीएम स्वनिधि योजना से जो उनको लाभ हो रहा है उसकी भी चर्चा की।
0: और अगर महिलाओं की बात आ रही है तो हम ओडिशा के देवरीगढ़ में जो महिलाओं द्वारा जंगल के संरक्षण को आजीविका से और इको टूरिज्म से जोड़ने का उदाहरण है, उसकी भी चर्चा हुई है। क्या ये मॉडल हमें बताता है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को परस्पर विरोधी मानने के बजाय एक दूसरे का पूरक बनाया जा सकता है?
1: बिल्कुल। देखिए, जब जंगल का संरक्षण अगर आजीविका का साधन बनता है तो लोग बहुत उससे जुड़ते हैं। जैसे आपने भी नाम लिया, तो ये जो ओडिशा के देवरीगढ़ के गांव की जो चर्चा प्रधानमंत्री ने की थी, और उसमें एक महिला की चर्चा की, मैथिली भोए की बात की, और कहा कि मैथिली जी का जो जीवन है, इसमें जो बदलाव आया है वो दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रहा है। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण से जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही हैं, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी हैं, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। तो इस प्रकार के जो प्रयास हैं, तो प्रकृति की रक्षा भी हो रही है और जीवन में समृद्धि भी आ रही है। तो ये जो प्रयास महिलाएं कर रही हैं, ये छोटे छोटे प्रयास होते हैं, देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ये जीवन में बदलाव लाने का एक रास्ता शुरू करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसकी ओर आज प्रधानमंत्री ने विशेष तौर से चर्चा की, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अनेक परिवार जो हैं वो इससे जब जुड़ते हैं, हम प्रकृति की भी रक्षा करते हैं और इको टूरिज्म का भी हम एक तरह से विकास करते हैं।
0: स्वच्छता के क्षेत्र में युवाओं और अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं तथा स्वच्छता कर्मियों की भागीदारी के उदाहरण भी दिए गए हैं। क्या स्वच्छता को सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर नागरिक उत्तरदायित्व और जन आंदोलन बनाने की प्रक्रिया अब अधिक सशक्त हो रही है?
1: देखिए, जब प्रधानमंत्री ने सबसे पहले स्वच्छता अभियान की बात की थी, उस समय कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था कि प्रधानमंत्री देखिए स्वच्छता की बात कर रहे हैं, लेकिन उस अभियान को प्रधानमंत्री ने गांधी जी के जो जन आंदोलन थे उनके साथ जोड़ा, और इसमें इनको एक तरह से जनता की भागीदारी के साथ जोड़ने की एक संकल्पना जो बनाई थी वो आज साकार होती दिख रही है। और लोग जिस तरह से इस अभियान में जुड़ते हैं और संकल्प लेकर जुड़ते हैं, वो आज हम देखते हैं कि गांव गांव और शहर शहर में इसके बारे में चर्चा हो रही है। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया और एक विशेष तौर से रामपुर के गांव की बात की, और वहाँ दो जो नौजवान हैं, आकाश और रोहन, इनकी विशेष तौर से चर्चा की कि उन्होंने जो इलाका गंदगी से भर गया था और इन दोनों ने कचरे के बैग उठाए, सफाई के लिए निकल पड़े, धीरे धीरे दूसरे युवा उनके साथ जुड़ गया, टीम बन गई जिसका नाम रखा गया क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं और उन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। इसी संदर्भ में जैसे आप भी कह रहे थे, अमरनाथ यात्रा में भी स्वच्छता और जन भागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीरें देखने को मिली हैं। इन कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे, लेकिन इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को इकट्ठा किया गया और उसको प्रोसेस भी किया गया। और ये जो प्रयास विशेष रूप से हैं, ये स्वच्छता अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि श्रद्धालु लोग ही कचरा फेंकते हैं और और इस बार तो 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प किया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया है और ये अपने आप में एक बहुत अनोखा प्रयोग है। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योति भी प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हमारे गांव हो या शहर हो, हमारी नदियां हो या तीर्थ स्थल हो, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से ही बनती है और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है तो उन स्थानों की शोभा और बढ़ जाती है।
0: नागालैंड में नई फसलों और किसानों के बाजार से सीधे जुड़ने के उदाहरणों का भी प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। क्या कृषि में विविधीकरण, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नई फसलों का चुनाव और बाजार से बेहतर जुड़ाव, ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर खोल सकते हैं?
1: मैं समझता हूँ लगभग हर मन की बात के एपिसोड में नॉर्थ ईस्ट की जरूर चर्चा करते हैं। तो उत्तर क्षेत्र जो भारत का है वो अलग थलग ना पड़ जाए, इसलिए वहाँ पर होने वाली जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, वहाँ के जो लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र, उसकी चर्चा अवश्य करते हैं। इसलिए उन्होंने आज भी देखा कि नागालैंड के फेक जिले की वेसालुपुरी, उनकी एक कुछ यात्रा का उदाहरण दिया। किसान परिवार से बड़ी और बचपन से उन्होंने माता पिता को खेती करते देखा था और खुद फूलों के साथ बहुत लगाव था और 2021 में इन्होंने इसी शौक को छोटे स्तर पर करते करते अब इतना उन्होंने इस चीज को बढ़ा दिया है कि अभी फूलों की मांग बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों से फूल की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग ली और उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर हजारों पौधे उगाए। पहले प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूलों की उन्होंने बागवानी की। तो इससे जो एक नई शुरुआत बनी है, तो फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया जा रहा है, विशेष तौर से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। और जो स्थानीय बाजार में ये फूल जाते हैं, आज नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक भी नॉर्थ ईस्ट के फूल जा रहे हैं। अब जब ये शौक मेहनत इस तरह से आगे बढ़ता है तो और लोगों को भी एक नई संभावनाएं खोलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो उदाहरण देकर प्रधानमंत्री मन की बात में चर्चा करते हैं, बहुत प्रभावी रहती है।
0: अंत में इतिहास, संस्कृति और सिनेमा से लेकर युवा शक्ति, महिला उद्यमिता, पर्यावरण, कृषि, अंतरिक्ष और वोकल फॉर लोकल तक, इस पूरी कड़ी को देखते हुए आपके अनुसार आज के भारत के लिए मन की बात का सबसे बड़ा संदेश क्या है?
1: हर मन की बात एपिसोड में एक ही संदेश रहता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाई वसुदेव कुटुम्बकम
0: जी,
1: विकसित भारत 2047 तक बनाना है तो हमको हर क्षेत्र में काम करना होगा, हर क्षेत्र के लोगों को उसमें जुड़ना होगा, युवा उद्यमियों को जुड़ना होगा और विशेष तौर से कृषि क्षेत्र को बढ़ना होगा। इसी कड़ी में उन्होंने बंगाल के फिल्म स्टार उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी की भी चर्चा की, जिस तरह से उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और इसी तरह से आज जैसे हर बार आने वाले त्योहारों के बारे में प्रधानमंत्री हमेशा चर्चा करते हैं और त्योहारों की परंपरा है वो भारत में हमको एक दूसरे से जोड़ने का अवसर देती है। इसी से भारत में अनेकता में एकता की एक तस्वीर झलकती है और फिर जो त्योहार आने वाले होते हैं उनकी प्रधानमंत्री चर्चा करके लोगों को याद भी दिला देते हैं। जैसे 4 सितम्बर को जन्माष्टमी आ रही है, फिर विश्वकर्मा पूजा आएगी और इससे हम अपने कारीगरों को, शिल्पकारों को, विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करते हैं। ऐसे ही त्योहारों के मौसम में आपने जैसे कहा कि हर बार वोकल फॉर लोकल का भी आग्रह प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं। इस बार तो उन्होंने ये भी कहा, वोकल फॉर लोकल का अर्थ केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घरों के लिए जो भी सामान खरीदे एक बार जरूर देख लें कि क्या वो भारत में ही बना है। तो भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ये लोगों के भी जिम्मेदारी है।
0: जी आशोक जी, आपने मन की बात की इस कड़ी में उठाए गए विविध विषयों पर सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत सारगर्भित चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 137वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में। ये आकाशवाणी की

0: उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD ब्रिटिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर्गिस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं, जहां शंघाई ताउन तंजीम के सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई, जबकि 2500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमरीकी फोर्सेज ने आमनाए हुरमुज में लाराक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया में सेरिमबन के मकाम पर तुआनको मुहरीज ट्रॉफी 2026 में मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत ने दुबई में T20 एशिया कप के अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं। वजीरों की काबीना के चेयरमैन कासिम अलीफ आदिल बेग अलीश्विच ने हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम के खैर मकदम के लिए रिवायती किर्गिज रक्स का भी एहतमाम किया गया। जनाब मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO के 26वीं सरबरा कॉन्फ्रेंस शिरकत में किर्गिस्तान के सदर सैदियार जपरोव की दावत पर वहां गए हैं। अपने दौरे के पहले दिन वजीर आजम सरबरा कॉन्फ्रेंस के मौके पर SCO रहनुमा के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी कई दीगर प्रोग्रामों में शिरकत भी करेंगे और कल SCO सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जनाब मोदी आज बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद वो महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाएंगे और महात्मा गांधी के मुजस्मे पर अकीदत के फूल नजर करेंगे। साल 2015 में किर्गिस्तान के अपने दौरे के मौके पर वजीर आजम ने इस मुजस्मे की नकाब कशाई की थी। जनाब मोदी आज शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के कई रहनुमाओं के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। इनमें रूस के सदर के साथ साथ बाहमी बातचीत के साथ साथ आर्मीनिया, किर्गिस्तान और ईरान के सुदूर के साथ मीटिंगें भी शामिल हैं। जनाब मोदी आज 6ठे वर्ल्ड नामोद गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। जनाब मोदी कल शंघाई ताउन तंजीम SCO की 26वीं सरबरा मीटिंग से खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ताशकंद का अपना 2 रोजा सरकारी दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कल 2 तरफा ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए सदर शौकत मर्जियोव से बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात में जामे दिफाई शराकत दारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई है और 2500 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। तिब्बत में 16 अफराद हलाक और 546 लापता हैं। भारत और चीन समेत बचाव टीमें पनबिजली प्रोजेक्टों के सुरंगों में फंसे हुए सैकड़ों लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। इन प्रोजेक्टों में त्रिशूली 3A भी शामिल है। लापता लोगों के बारे में ख्याल है कि लोग पनबिजली प्रोजेक्ट कारकुन हैं। सभी 8 मुतासर जिलों से लाशें बरामद कर ली गई हैं, जैसा कि बचाव कारकुन अब भी बाकी मानदा लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसी दौरान त्रिशूली दरिया में ताजा सैलाब से गोरखा जिले में झूलने वाला पुल बह गया है, जिसकी वजह से पृथ्वी इशारा के मकी अलग थलग होकर रह गए हैं। भारतीय बहरीन ने आज मुंबई के नेवल डॉक यार्ड में निशाद जुमरे के दूसरे डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल INS निपुण को बहरी बेड़े में शामिल किया। इससे मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए बहरिया के सरबरा एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन ने कहा कि हिकमत अमली की तब्दीली के इस दौर में निपुण जेरे आप खसूसी सलाहियतों में एक जबरदस्त इजाफा होगा, जो गहरे पानी में कसी रुख कार्रवाई के लिए दरकार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि निपुण से गोताखोरी और जेरे आप बचाव कार्रवाई के तौर पर कार्रवाई की मगरबी बहरी कमान की सलाहियतों में खातिर खा इजाफा होगा। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL विशाखापट्टनम के निपुण मुल्क में ही डिजाइन और तैयार किया है, जहां जदीद डाइविंग सिस्टम्स और पानी के अंदर कार्रवाई से मुतालिक सलाहियतों से लैस है। इससे समंदर में मुश्किल हालात में काम करने वाले गोताखोरों को मुसलसल मदद फराहम की जा सकती है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की अख्तराई शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। अमरीका के अपने दौरे में शिकागो में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान की लड़ाई इस आमनाए हुरमुज को बंद किए जाने के

0: लॉन्चर्स पर हमला किया है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। और खवातीन क्रिकेट में भारत ने दुबई में T20 एशिया कप के अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 से हरा दिया। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।

मेरी वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान के दो दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं, जहां वो शंघाई तआवुन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमरीकी फोर्सेज ने अपने हुर्मुज में लारैक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया में सेरेम्बन के मुकाम पर त्वांग को मोरीज ट्रॉफी 2026 में मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत ने दुबई में T20 एशिया कप के अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। जितने अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है।

2007 की दिवाली तो आपको याद ही होगी, है ना? एक तरफ थी शाहरुख खान की ओम शांति ओम और दूसरी तरफ थी भंसाली जी की नीले और हरे रंग में सजी ये जादुई दुनिया सांवरिया। ये फिल्म रूसी लेखक फ्योडोर दोस्तोवस्की की मशहूर छोटी कहानी व्हाइट नाइट पर आधारित है। 9 नवंबर 2007 को संजय लीला भंसाली की एक खूबसूरत सी फिल्म रिलीज हुई जिसमें मुख्य कलाकार के रूप में नजर आए थे रणवीर कपूर, सोनम कपूर। इन दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। इसके साथ ही स्पेशल अपीयरेंस थी सलमान खान और रानी मुखर्जी। संगीत बहुत ही शानदार संगीत था, हर गाना इस फिल्म का सुपरहिट रहा और वो दिया था मोंटी शर्मा ने। बैकग्राउंड जो कलर थीम थी फिल्म की वो सबसे बड़ी इसकी खासियत थी। इसका सेट इतना खूबसूरत था जिसमें नीले हरे और काले रंगों की शेड्स एक सपने जैसा लुक महसूस कराते थे। फिल्म की कहानी भी उतनी ही शानदार थी। फिलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

उससे प्रेरित थी और इस कहानी की जड़ें भारतीय सिनेमा से बाहर की साहित्यिक दुनिया तक जाती हैं। लेकिन भंसाली जी ने उसे अपने खास सिनेमाई अंदाज में एक सपना जैसे भारतीय संसार में ढाल दिया था और इस फिल्म का सबसे खास पहलू था इसका संसार, एक ऐसा काल्पनिक शहर जिसकी गलियां, रोशनी, पुल, इमारतें और रात का नीला आसमान फिल्म को एक परी कथा जैसा रूप देता है। यही वो दुनिया है जहां एक दिन एक बेफिक्र मस्त मौला नौजवान आता है, रणवीर, जो किरदार था इनका वो रणवीर राज था। वो गाता है, मुस्कुराता है और जिंदगी को अपनी धुन पर जीता है। लेकिन इसी शहर में उसकी मुलाकात होती है सकीना से, जिसका किरदार निभाया सोनम कपूर ने। सकीना के दिल में किसी और का इंतजार है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें प्यार है, इंतजार है, उम्मीद है और थोड़ा सा दर्द भी है। रणवीर राज अपनी पहली नजर में सकीना की तरफ आकर्षित हो जाता है, लेकिन सकीना का दिल पहले से ही किसी और के नाम है। वो हर रात अपने उस प्यार का इंतजार करती है और शायद वो प्यार उसका वापस आ जाए, शायद प्यार उसका वापस ना आए, इसी कश्मकश में वो रहती है। और रणवीर राज जानता है कि सकीना के दिल में उसके लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके करीब रहता है। और उसके बाद क्या होता है पूरी बात हम नहीं बताएंगे, आपको फिल्म देखनी है। वैसे अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको आगे की कहानी भी पता होगी, और अगर नहीं देखी तो हमेशा की तरह यही कहेंगे कि वक्त निकाल कर इस फिल्म को भी अपने देखने वाली लिस्ट में शामिल कर लीजिए। नाम है सावरिया।

कपूर को कुर्सी के पीछे की तरफ गिरना था। इस परफेक्ट शॉट को पाने के लिए भंसाली जी ने रणवीर से करीब 70 से ज्यादा रीटेक करवाए थे और इस दौरान रणवीर जी की पीठ में भी गंभीर दर्द शुरू हो गया था, लेकिन भंसाली जी कहां मानने वाले थे। जब तक उन्हें अपना मनपसंद शॉट नहीं मिल जाता था वो इसी तरीके से रीटेक करते थे। और जैसी तस्वीर दिखने वाली एक नीली हरी दुनिया फिल्म की जो थी वो सबसे बड़ी इस फिल्म की खासियत थी। और जानते हैं ये जो सिनेमेटोग्राफी और जो कलर जो पैलेट था ये ब्लू ग्रीन ब्लैक शेड्स इन सबसे शूट किया गया था। और भंसाली जी ने करजत के एनडी स्टूडियो में एक काल्पनिक और जादुई शहर का विशाल सेट तैयार करवाया था जिसमें झरने थे, नदियां थी, पुल शामिल थे ताकि हर फ्रेम एक चलती फिरती पेंटिंग जैसा दिखे। तो वैसे भी कहते हैं कि जो नीला रंग होता है और हरा रंग जो होता है वो प्रेम के देवता कृष्ण और कामदेव का प्रतीक माना जाता है। और यही सब दिखाने की कोशिश संजय लीला भंसाली जी ने भी अपनी फिल्म सवरिया में की थी।

भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे हॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट द्वारा सह निर्मित और रिलीज किया गया था। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की दो बेहद सीनियर अभिनेत्रियों जोहरा सहगल और बेगम पारा के जीवन की आखिरी फिल्म भी साइन हुई थी। फिल्म में एक सीन में रणवीर

कुमारी जैसी दिखने वाली सोनम कपूर का जो किरदार था इस फिल्म में, जानते हैं इससे पहले, इस फिल्म में आने से पहले उनका वजन था 80 किलो। भंसाली जी के कहने पर उन्होंने कड़ी मेहनत करी और फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले लगभग 35 किलो उन्होंने अपना वजन घटाया। भंसाली जी को अपने जो ये दोनों हीरे थे उनको उन्होंने छुपा कर रखा। सोनम और रणवीर इन दोनों को एक सख्त हिदायत दी थी, वो किसी भी सार्वजनिक इवेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि भंसाली जी चाहते थे कि दर्शक उन्हें सीधे सिनेमा घर में ही देखे। सलमान और ऋषि कपूर की मौजूदगी भी इस फिल्म में एक चार चांद लगाने का दोनों ने काम किया था। साथ ही रानी मुखर्जी का जो केमियो रोल था उसके साथ साथ ऋषि रणवीर कपूर जी के जो पिता थे और ऋषि कपूर जो थे उनकी भी जो मौजूदगी थी उसको भी शुरुआत में पूरी तरीके से गुप्त रखा गया था। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये गाना है जब से तेरे नैना मेरे नैनों से, इस गीत को गाया था शान ने। शान जब इस गीत को गा रहे थे तो उनको थोड़ी सी झिझक थी, थोड़ी सी उनको एक नर्वसनेस थी, घबराहट थी, क्योंकि वो ये गाना नहीं गाना चाह रहे थे। ये गाना बहुत ही शांत और सूफी मिजाज का था, लेकिन भंसाली जी के भरोसे ने इस गाने को अमर बना दिया। उन्होंने भंसाली जी ने उनको हौसला दिया और उन्होंने कहा कि ये गाना सिर्फ तुम ही गाओगे। शान ने भी अपनी जितनी भी एनर्जी थी वो इस गाने में दी और उनको बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत और आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं, उनको भी वक्त है बस कुछ देर में शामिल करने का।

तेलंगाना निजामाबाद से शेखल्ला बख्श, बेगम राबिया, शेख रही मुन्ना जी हमारे साथ हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमल बिमला अनेजा जी हमें सुन रहे हैं। नीतीश कुमार देवानगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, छपलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। मुकेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत भापसा जी प्रमिला जी के साथ वीरंगाव जंक्शन से जुड़े हुए हैं। ढेर सारी जानकारी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हिरामयी वर्मा दतरंगी भाटापारा से हमें सुन रहे हैं। मुकेश कासलेकर तहसील बरून जिला अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। अगला संदेश बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवानगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल जी का आया हुआ है। ये संदेश है हमारे पास जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम दिशानी और निमित का है। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी हमें सुन रहे हैं। और देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार जी डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ है। वलीउल्लाह अंसारी, खतीजा बेगम हमारे साथ मुस्तफाबाद दिल्ली से जुड़े हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी है। ऊपर कोच मोहला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगर परवीन शनिवास से फराज फरदेन सुहाना और परिवार के सभी सदस्य हमें सुन रहे हैं। और ये संदेश है डीवी राणा जी का, नेहरू विहार दिल्ली से आया। बचिंगखेड़ा पंजाब से मिची टॉमस, पिंकी लवली जी हमें सुन रहे हैं।

रेड कैंप से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं। भवनपुर वसना से चंपा देवानगन, राधेश्याम जगदीश जी हमारे साथ हैं। संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर जी के साथ जलालाबाद, जालंधर पंजाब से हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा ईशान हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी जी हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी का एक और संदेश है। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से निमोद अनिल मोहन, उषा मोहन, चिल्लू नायक, मधु नायक जी हमारे साथ हैं। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल जी पश्चिम सिंहभूम चाईवासा झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ हैं। नलवेश नगर, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहान का निर्वला विशाल जी हमारे साथ हैं। मुरादाबाद गांव धुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरान जी हमें सुन रहे हैं। रघुनाथपुरा, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित जी हमारे साथ हैं। तो आप सभी का हम ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस सफर में, हमारे हम सफर बनने के लिए। फिलहाल ये गीत आप सुन रहे हैं इसी फिल्म का।

अंत मिलन नहीं होता, कुछ कहानियाँ अपनी यादों में पूरी होती हैं। सांवरिया की कहानी शायद इसी एहसास की कहानी है। रणवीर कपूर की पहली फिल्म, सोनम कपूर की पहली फिल्म, संजय लीला भंसाली का एक अलग सिनेमाई प्रयोग और मोंटी शर्मा के संगीत से सजी एक स्वप्निल दुनिया। तो फिर आपसे मिलूंगी एक नई फिल्म के साथ, एक नई कहानी के साथ और कुछ अनसुने फिल्मी किस्सों के साथ। फिलहाल जाते जाते यही कहूंगी कि अगर अभी तक आपकी लिस्ट में ये फिल्म शामिल नहीं है तो वक्त निकाल कर जरूर देखिएगा। फिलहाल अपने अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए 3 बजे बेचने वाले रीज में एक बार फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, उससे पहले 2:30 पर प्रोग्राम एक कलाकार लेकर हाजिर होंगी प्रीति।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक FM से आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में अमन देव, पहला चोणवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक विच शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के मैंबर देशों के नेतावां नाल दुवल्ली मीटिंग करनगे। निस्तार श्रेणी के दूजे डाइविंग स्पोर्ट

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एनआईएफटी के तलबा पर जोर दिया है कि वो मुल्क की मालामाल सकाफत

0: ट्रांसफॉर्म इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज, मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुकुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुकुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारिक ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो, सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहें, आगे रहें, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है।

0: भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
0: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहां व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर News on AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत

0: अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बस्नेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371717। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 2:30 हुए और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूं। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कला एक ही कलाकार हमारे इस कार्यक्रम का नाम है और आज हम बॉलीवुड से ही एक ऐसे कलाकार को चुनकर लाए हैं। वैसे बॉलीवुड के बारे में हम यही कहेंगे कि बॉलीवुड में कुछ चेहरे जो होते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और कुछ बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो कि खूबसूरत

भी होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं और साथ ही साथ अपनी शर्तों पर, पूरी इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी ही शख्सियत से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं जो कि फौजी परिवार से आई, मिस इंडिया का ताज उन्होंने अपने सर पर सजाया और फिर बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी सपोर्ट के बॉलीवुड के हर बने बनाए दस्तूर को तोड़ती हुई वो ऊंचाई पर जा बैठी और अपने काम को लेकर इतनी ज्यादा डेडिकेटेड कि चाहे वो 8 मंथ प्रेगनेंसी में भी पुलिस की वर्दी को पहनकर एक्शन सीन करने का उनका जुनून हो, अपनी एक्टिंग को लेकर कुछ भी आप कहें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है वो हम लेकर आए हैं बॉलीवुड की अल्टीमेट बॉस बेब नेहा धूपिया को। तो थाम लीजिए अपने दिल की धड़कनें क्योंकि आज के सफर में हम बात करने वाले हैं नेहा धूपिया के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से प्यारे से गीत के साथ।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार से और आज हम बात कर रहे हैं नेहा धूपिया के बारे में। नेहा धूपिया जिनका जन्म हुआ कोची में एक सिख परिवार में। उनके पिता भारतीय नौसेना में एक कमांडर थे और फौज से वो जुड़ी हुई थी। उनका परिवार इधर उधर हमेशा ट्रांसफर होता रहता था, जिस वजह से नेहा की जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो अलग अलग शहरों में हुई और आखिरकार उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। लेकिन उनका जो रुझान है वो शुरुआत से एक्टिंग की तरफ था और वो ग्लैमर वर्ल्ड में जुड़ना चाहती थी, वहां जाना चाहती थी और इसकी शुरुआत हुई दिल्ली के मशहूर प्ले यूटोपिया से। उसके बाद उन्होंने इंडी पॉप बैंड यूफोरिया की आइकॉनिक गाना आपने सुना होगा मुसाफिर के म्यूजिक वीडियो से उन्होंने अपनी पहली ऑन स्क्रीन छाप छोड़ी और यहां से आ गई वो मॉडलिंग की दुनिया में। यहां पर जब वो मॉडलिंग में आई तो

आगे बढ़ती गई और 2002 में नेहा की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्होंने फेमिना मिस इंडिया कंटेस्ट में हिस्सा लिया और अपनी खूबसूरती और अपनी हाजिर जवाबी की वजह से मिस इंडिया यूनिवर्स 2002 का ताज अपने नाम किया। और उसी साल उन्होंने प्यूर्टो रिको में मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता थी उसमें भी हिस्सा लिया। भारत की तरफ से वो वहां पर गई और टॉप 10 में उन्होंने अपनी जगह बनाई। मतलब आप कह सकते हैं कि शुरुआत जो है उनकी हो चुकी थी और मिस इंडिया बनने के बाद जब आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं और साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हाजिर जवाब भी हैं, तो आपके लिए बहुत सारी जो लाइनें हैं वहाँ आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन नेहा का सपना शुरू से ही था कि वो इस इंडस्ट्री में जाए, फैशन इंडस्ट्री में जाए या फिर एक्टिंग की दुनिया में जाए, और यही वजह थी कि मिस इंडिया बनने के बाद उनके लिए दरवाजे खुल गए बॉलीवुड के। उनके आगे के सफर के बारे में हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, अभी आपने सुना ये खूबसूरत संगीत फिल्म 10 कहानियां से। नेहा धूपिया, जिनको 2002 में वो मिस इंडिया बनी और उसके बाद बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुल गए। साल 2003 में उनकी फिल्म आई, ये एक थ्रिलर फिल्म थी, कयामत सिटी अंडर थ्रेट। इस फिल्म में नेहा ने अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अरबाज खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया और ये वो फिल्म थी जिस फिल्म में उन्होंने पहली बार काम किया। लेकिन वो फिल्म में उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इतने बड़े बड़े सितारों के होते हुए भी उनकी तरफ हर किसी का ध्यान गया, यानी कि उनके अंदर वो दम था, वो मादा था कि वो अपने दम पर इस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकती हैं। तो लीजिए सुनते हैं कयामत फिल्म से अभिजीत की आवाज में ये गीत।

0: नहीं।
1: जी दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म कयामत से अभिजीत और साधना सरगम की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत। फिल्म 2003 में आई कयामत, और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को, उनकी जो उनका जो टैलेंट था उसको बहुत सराहना मिली, लेकिन असली पहचान और चर्चा में आई उनकी फिल्म 2004 की आई फिल्म जूली। इस फिल्म में उन्होंने एक बोल्ड किरदार निभाया और उस किरदार से पूरे जो पूरी फिल्मी दुनिया थी, जो पूरा बॉलीवुड था, वहां तहलका मचा। और उस दौर में ऐसा बोल्ड रोल उन्होंने चुना, लेकिन नेहा के इस कदम ने उन्हें रातों रात सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया। और उसी दौरान बॉलीवुड में उन्होंने बहुत से जो अपने स्टेटमेंट थे वो भी दिए, लेकिन हाँ, इसके बाद वो जरूर बहुत ज्यादा फेमस हो गई। हर किसी की जबान पर उनका नाम था, हर जगह चर्चा का जो एक विषय थी वो ये बन गई थी। लेकिन उनकी जो एक्टिंग थी वो किसी चीज से कम नहीं थी, और फिल्म जूली के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे फिल्म शीशा हो, क्या कूल हैं हम, गरम मसाला, और आगे चलकर मिथ्या, और यहाँ तक कि तुम्हारी सुल्लू जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ ग्लैमरस रोल ही नहीं करती हैं, बल्कि सीरियस कॉमेडी, यानी कि आप कह सकते हैं कि हर तरह का किरदार वो एकदम बहुत ही आसानी के साथ निभा लेती हैं। तो लीजिए, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और हम बात कर रहे हैं नेहा धूपिया के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में डेब्यू किया। मिस इंडिया से लेकर के हिंदी सिनेमा का जो उनका एक बेबाक और बोल्ड अदाकारा का जो किरदार था वो चल रहा था, जूली फिल्म उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने की थ्रिलर और ड्रामा फिल्म क्या कूल है हम, जिसमें उन्होंने कॉमेडी करके लोगों को बताया कि वो सिर्फ बोल्ड किरदार ही नहीं निभा सकती हैं बल्कि वो कॉमेडी भी कर सकती हैं। इसके अलावा सिंग इज किंग फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ बॉन्डिंग दिखाई और बहुत ही मज़ेदार ये फिल्म रही। और एक वक्त ऐसा आया और जब वो लीक से हटकर किरदार चुनने लगी और इसी दौरान उन्होंने विद्या बालन के साथ की फिल्म तुम्हारी सुलू, इसमें नेहा ने एक रेडियो स्टेशन के हेड मारिया का किरदार निभाया। उनका ये रोल इतना सधा हुआ और एकदम मेच्योर किरदार था कि इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। तो लीजिए सुनते हैं फिल्म तुम्हारी सुलू से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ, और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर पूनाराम और कृष्णा देवांगन के साथ। अगला संदेश हमारे पास आया, अजित भाव सर जी ने संदेश भेजा हम तक, और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने नेहा जी के बारे में हम तक पहुंचाई है। लिखते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में आने से पहले नेहा ने साल 2000 में एक जापानी फिल्म नाटू ओडू निंजा देनसेतु की में काम किया था, जिसमें उन्होंने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का भी किरदार निभाया था। जी बिल्कुल सही कहा आपने अजीत जी, बहुत शुक्रिया खूबसूरत जानकारी के लिए। प्रमिला भावसर जी इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और अगला संदेश हम तक पहुंचा है सहारनपुर कुमार हेड़ा से। सैयद मशरूस साइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये अगला संदेश भेजा है। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मन्नू जी का, और अगला संदेश वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़े हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहर और ईशान के साथ। शिवा गो प्रेम, कपिल, शिवांश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिला पश्चिम सिंह भूप चाईबासा झारखंड से। अगला संदेश प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल यशस्वी जी का है, छत्तीसगढ़ पलारी से। अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक, मधु नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये संदेश इन्होंने हम तक पहुंचाया पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। गांव फरा से जिला हिसार से जुड़े राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, अनिल मोहन जी पीटीआई संसद मार्ग से हमारे साथ जुड़े हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रिदान खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगला संदेश अमर रमेश कुमार खत्री जी का है, ये हमारे साथ जुड़े हैं। इनके साथ हैं जफर सदीक शेख, शंकर गुल शर्मा बेरानी वाले, और ये संदेश इन्होंने हम तक पहुंचाया है कराची से। इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हैं चूड़ी लाइन मुंगेली से। इनके साथ हैं खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, और अगला जो संदेश है उसको पहुंचाने वाले हैं फागुराम यादव, इन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया है संबलपुर कांकेर से। इनके साथ हैं ज्योति और ओजस्वी यादव। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिन संदेशों के जरिए सभी जो श्रोता हैं वो हम तक जुड़े, और दोस्तों आज यही कहूंगी कि इस कार्यक्रम में आज हमने बात की एक अफसर की बेटी जो कि अपने बुलंद इरादों के साथ मिस इंडिया से लेकर बॉलीवुड का सफर उसने बहुत ही बेबाकी के साथ किया और अपनी जगह बनाई इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बिना किसी सहारे, बिना किसी गॉडफादर के। अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप हर मुश्किल, हर किरदार को आसानी से पा सकते हैं, और वो भी अपनी शर्तों पर। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में ये सफर यहीं तक। अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। छोड़े जाऊंगी आप सभी के लिए खूबसूरत सा प्यारा सा गीत उन्हीं की फिल्म से, और यही कहूंगी

सर पहले 3:30 बजे कहकशां प्रोग्राम के तहत फिल्म अदालत की कहानी और उसके नगमे आप सुनेंगे। इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है जनाब विपिन कुमार ने। शाम 4 बजे आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। चार बजकर 50 मिनट पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फेडरेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। अब स्टेशनों के बाद आप खबरें सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। हुकूमत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए के कुल अखराजात के सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के सभी 6 सुतूनों को नोटिफाई किया है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने NIFT के तलबा पर जोर दिया कि मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत को बरकरार रखते हुए आलमी नुकता नजर इख्तियार करें। भारतीय बहरिया ने INS निपुण को बहरिया में शामिल किया है। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब के बाद राहत और बचाव कार्रवाई में तेजी आ गई है। हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 903 हो गए, 4000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और फुटबॉल में आज ताशकंद में भारत AFC अंडर 20 एशिया कप क्वालिफाई मुहिम का आगाज मुल्क शाम के खिलाफ मुकाबले से करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के अपने दो रोजा दौरे के पहले दिन बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत की। इस मौके पर योगा और मांस एकेडमी समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत के साथ काम करने वाले 4 वक्त मौजूद थे। इसके बाद वज़ीर आज़म ने बिश्केक में महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत नजर किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों की कई रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत भी करेंगे। इनमें रूस के सदर के साथ बाहमी बातचीत के साथ साथ आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के सुदूर के साथ मीटिंगें भी शामिल हैं। जनाब मोदी कल शंघाई ताउन तंजीम SCO की 26वीं सरबरा मीटिंग से खिताब करेंगे। हुकूमत ने आज 1.27 लाख करोड़ रुपए के कुल अखराजात के साथ सेमिकॉन 2 सिफर स्कीम को नोटिफाई किया है ताकि मुल्क में चिप मैन्युफैक्चरिंग के इको निजाम को फरोग दिया जा सके। इसके साथ ही आइंदा वर्षों में भारत आलमी सेमीकंडक्टर सनत के बाजार का तकरीबन 10% हो सकता है और आलमी सेमीकंडक्टर के मामले में भारत एक ज्यादा अहम रोल अदा कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2.0 के सभी 6 सूत्रों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाने के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए बात कही। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क को आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में पुख्ता तौर पर शामिल करने पर है। उन्होंने कहा कि आलमी सेमीकंडक्टर सनत के मुतालिका फरीकों के दरमियान ये एतमाद है कि भारत आइंदा दहाइयों में अहम सरमाएकारी के लिए एक सही और मुनासिब मकाम है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि टेक्सटाइल्स और मलबूसात का शोबा न सिर्फ भारत के सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा है बल्कि लाखों अफराद के गुजर बसर का जरिया भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के जलसाए तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरियत तलबा पर जोर दिया कि मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत और अकदार से मरबूत रहने के साथ साथ एक आलमी नुकता नजर इख्तियार करें। फैशन सनत में खवातीन के उभरते रोल पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तकरीब में मौजूद तकरीबन 4000 तलबा में से 85% खवातीन हैं। विकसित भारत 2047 के नजरिए में ताउन की खातिर नौजवानों पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तलबा महज नौकरी तलाश करने वाले न बने रहे बल्कि नौकरी फराहम करने वाले दीगर के लिए रोजगार के मौके कायम करने वाले बने। सदर जमहूरिया ने कहा कि गुज़श्ता 4.5 में NIFT के तलबा और पेशेवर अफराद ने कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर अहम उसूलियां भी हासिल की है और मुल्क का नाम रोशन किया है। अमरीका ने कल रात आबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के फौजी ठिकानों पर हमला किया। अमरीकी फोर्सेज के मुताबिक ईरान के सिपाही पासदारान इंकलाब इस्लामी के फौजियों को आबनाए हुरमुज में समुद्री बारूदी सुरंगों के साथ रॉकेट दागने की तैयारी करते हुए देखा गया था। इसके बाद ईरान के 2 रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने बताया कि इस हमले में कई ईरानी अहलकार और सिविलियन हलाक और जख्मी हुए हैं। उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दुन में अमरीका के किम हुसैन और अल अजरक फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इससे कबल अमरीकी फौज ने आबनाए हुरमुज से बारूदी सुरंगों को हटाने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली। अमरीकी के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई के बाद ईरान को सख्त वार्निंग जारी की है कि इस आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंग के बिछाने में मुलविस किसी भी बहरी जहाज या कश्ती को बिला ताखीर और मुनज्जम अंदाज से तबाह कर दिया जाएगा। भारतीय बहरे ने आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में निशाद जुमरे के दूसरे डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल INS निपुम को बहरी बेड़े में शामिल किया है। इससे मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए बहरिया के सरबरा एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन ने कहा कि हुकमत अमली की तब्दीलियों के इस दौर में निपुम जेर आब खसूसी सलाहियतों में एक जबरदस्त इजाफा होगा जो गहरे पानी में कसी रुख कार्रवाई के लिए दरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि निपुम से गोताखोरी और जेर आब बचाव कार्रवाई के तौर पर कार्रवाई की मगरबी बहरी कमान की सलाहियतों में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL विशाखापट्टनम ने निपुण मुल्क में ही डिजाइन तैयार किया है। ये जहाज जदीद डाइविंग सिस्टम्स और पानी के अंदर कार्रवाई से मुतालिक सलाहियत लैस है। इससे समंदर में मुश्किल हालात में काम करने वाले गोताखोरों को मुसलसल मदद फराहम की जा सकती है। नेपाल में गुज़श्ता हफ्ते तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद

0: बढ़कर 903 हुए, जबकि 4247 अफराद से ज्यादा अब भी लापता हैं। नेपाल की कुदरती आफात के खतरे को कम करने और इसके बंदोबस्त से मुतालिक अथॉरिटी के मुताबिक इतवार को 2502 की तादाद से अब यह तादाद बढ़ गई है। नेपाल के सभी 8 अजला से लाशें बरामद कर ली गई हैं और बचाव कारकुन लापता और फंसे हुए लोगों की तलाश की खातिर कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान तकरीबन एक दर्जन पनबिजली प्रोजेक्टों में कम से कम 933 वर्करों के फंसे हुए होने का अंदेशा है। भारत की बचाव टीमें और दीगर माहिरीन पनबिजली प्रोजेक्टों के मलबे से बंद हुई सुरंगों के आसपास तलाशी की कार्रवाई कर रहे हैं। तिब्बत में इस वक्त हलाक होने वालों की तादाद 16 है, जबकि 546 लापता बताए जाते हैं। इस दौरान नेपाल साइंसदानों की जानिब से एक इब्तदाई मुताले में यह बात मालूम हुई है कि रसुआ के लैंगटन लिरंग इलाके में तकरीबन 5200 मीटर ऊंचाई पर बर्फ का एक बहुत बड़ा टूटा गिरने से ये सैलाब आया है। नेपाल के वजीर आजम बलिंदर शाह ने इस सैलाब को गैर मामूली तबाहकुन कुदरती आफात करार दिया है, जिसमें बचाव कार्रवाइयों में तकरीबन 21,000 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। रेड क्रॉस ने तखमीना लगाया कि 90,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। नेपाल में सैलाब के संगीन सूरत हाल और नशीबी इलाकों में शदीद बारिश के पेश नजर बिहार में गंडक और कोसी दरियाओं की सतह आब में इजाफा हो गया। पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी पर बीरपुर बैराज के 56 गेट में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। ताम गुज़श्ते 24 घंटे में दोनों दरियाओं में पानी की सतह और पानी छोड़े जाने से दोनों में कमी आई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक सदर जमहूरिया भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि साबिक सदर जमहूरिया एक ऐसे सरकर्दा मुनज़िम और स्कॉलर थे जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी पुख्ता अज़्म और दहाइयों पर मबनी अपनी आवामी जिंदगी में आईनी अकदार को तरजीह दी। जनाब शाह ने मजीद कहा कि उनकी मीरास रहनुमाओं को तरगीब देती रहेगी। फुटबॉल में भारत के मर्दों की 20 साल तक की उम्र की कौमी टीम आज ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में मुल्क शाम के खिलाफ चीन के एएफसी अंडर 20 एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स मुहिम का आगाज करेगी। भारत को ग्रुप बी में मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। भारतीय टीम का मकसद 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी करना है। खवातीन क्रिकेट में भारत ने T20 एशिया कप 2026 में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड को 94 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा 64 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी और उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। स्मृति मंधाना 19 रन बनाने के बाद रन आउट हो गयी। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमा के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। हुकूमत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए के कुल अखराजात के सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के सभी 6 सुतूनों को नोटिफाई किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने NIFT के तलबा पर जोर दिया कि मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत को बरकरार रखते हुए आलमी नुकता नकल इख्तियार करें। भारतीय बहरे ने INS निपुण को बहरिया में शामिल किया है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: रीजन वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। यह प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश तीन देवियां फिल्म की गजल मोहम्मद रफी की आवाज में।

लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए पाल की फिल्म का नगमा, मोहम्मद रफी का गाया हुआ, नगमा निगार शकील बदायूनी, मौसिकी नौशाद की।

लूक किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ वो घर का सारा काम काज करती है, फिर भी उसे अपने मामा मामी की जली कटी बातें सुनना पड़ती हैं। राजेंद्र और निर्मला दोनों एक दूसरे को दिल की गहराइयों से चाहते हैं। निर्मला को शेरो शायरी का शौक है और कॉलेज के प्रोग्राम्स में भी वो बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। एक रोज कॉलेज के सालाना जलसे में भी उसने अपना कलाम पेश किया। कॉलेज में उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा और उनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। ये साल उनकी तालीम का आखिरी साल था, इसलिए राजेंद्र और उसके दोस्तों ने एक पिकनिक का प्रोग्राम रखा और ये प्रोग्राम उनकी मुलाकातों का आखिरी यादगार प्रोग्राम था, क्योंकि इम्तिहान होने के बाद कॉलेज बंद होने वाला था। इस पिकनिक में निर्मला भी शरीक हुई।

कॉलेज के इम्तिहान हुए और नतीजे भी आए और निर्मला और राजेंद्र दोनों ने बीए पास कर लिया, मगर वो एक दूसरे से मिल नहीं पाए। निर्मला को नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो नौकरी की तलाश में निकल पड़ी और एक सहेली की मदद से सदाबहार म्यूजिक कॉलेज में नौकरी हासिल कर ली। अब उसने अपने मामा का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी मां को लेकर अलग रहने लगी, क्योंकि उसका मामा शराबी था और उसे एक जमींदार के हाथों बेचना चाहता था। निर्मला अब आजाद थी और उसे म्यूजिक कॉलेज का रक्स व मौसीकी का माहौल रास आने लगा, मगर उसे ये इल्म नहीं था कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल केदारनाथ यानी अदाकार प्राण एक अय्याश किस्म का आदमी है और मौसीकी की आड़ में जिस्म फरोशी का अड्डा चला रहा है। दरअसल निर्मला धोखे का शिकार हो चुकी थी और अब यहां से बच निकलना चाहती थी, मगर इससे पहले उसे इस कॉलेज के लिए सालाना जलसे का प्रोग्राम पेश करना था, क्योंकि इसी प्रोग्राम के बहाने वो मालदार लोगों से भारी रकम हासिल करता था। आखिर जलसे का दिन आया और निर्मला ने रक्स और मौसीकी का प्रोग्राम पेश किया।

केदारनाथ ने इस कामयाब प्रोग्राम के लिए निर्मला की बहुत तारीफ की और उसे तन्हा पाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करना चाही कि ऐन उसी वक्त वहां पुलिस का छापा पड़ा। केदारनाथ और उसके साथी तो फरार हो गए मगर निर्मला को जिस्म फरोशी के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया। वो बेगुनाह और पाक साफ थी मगर उसके दामन पर बदनामी का दाग लग चुका था। आखिर मामूली तहकीकात के बाद उसे छोड़ दिया गया। जब इस बात का इल्म निर्मला की मां को हुआ तो वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया फानी को छोड़कर चली गई। मां के अचानक चले जाने से उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। इधर निर्मला तन्हा और बेसहारा थी तो दूसरी तरफ राजेंद्र परेशान था कि वो घर छोड़कर कैसे चली गई है। केदारनाथ अभी भी उसका पीछा कर रहा था। एक रोज अचानक वो निर्मला के सामने आ गया और उसकी इज्जत लूटनी चाही तो वो भाग खड़ी हुई और एक मोटर गाड़ी से टकरा कर बेहोश हो गई। एक नेक दिल इंसान ने उसका इलाज कराया और उसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आया। ये नेक दिल इंसान और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र के वालिद ठाकुर रणवीर सिंह थे। कुदरत के खेल भी अजीब हैं। बिछड़े हुए दिल एक दूसरे से मिल गए। अब निर्मला नौकरानी बनकर राजेंद्र की बीमार मां की खिदमत करने लगी और इस बहाने उनकी मुलाकातें भी होने लगी। लेकिन राजेंद्र ने अपनी मोहब्बत का राज अपने वालदेन पर जाहिर नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि निर्मला को इस खानदान की बहू कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए राजेंद्र ने निर्मला को वादा दिया कि वो उससे कभी भी दूर नहीं जाएगा और वक्त आने पर उससे शादी करेगा। निर्मला भी यही चाहती थी।

अब निर्मला को ऐसा लगा जैसे उसके लिए दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि केदारनाथ धोखे से उसे कोठे पर ले आया और उसे और उसके बच्चे को कैद कर लिया था ताकि वो उसकी बात मान जाए। आखिर दुख की इस घड़ी में एक तवायफ ने उसकी मदद की और उसके कहने पर उसके बेटे को चुपके से डॉक्टर रत्ना के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी अच्छी परवरिश हो और पढ़ लिख कर एक नेक दिल और कामयाब इंसान बन जाए। आखिर मजबूर निर्मला नाच गाने को राजी हो गई, मगर अपने जिस्म का सौदा नहीं किया। वक्त गुजरता गया और अब उसका बेटा रतन बड़ा होकर एक कामयाब वकील बन गया। निर्मला ने अब भी अपने बेटे पर यह जाहिर नहीं किया कि वो ही उसकी असली माँ है। निर्मला अपनी सहेली की बहुत शुक्रगुजार थी कि उसने रतन को एक कामयाब इंसान बना दिया है। ये भी इत्तेफाक था कि बाप बेटे एक ही अदालत में वकालत कर रहे थे मगर एक दूसरे से अनजान थे। एक रोज केदारनाथ राजेंद्र के पास आया कि वो उस कोठे को बचा ले, क्योंकि उसका कोठा सरकारी जमीन पर था और सरकार उसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी। इसी बीच राजेंद्र का कोठे पर आना हुआ तो उसने पाया कि निर्मला कॉलेज के जमाने की गजल गा रही है।

निर्मला की आवाज सुनकर राजेंद्र हैरान हुआ और उससे मिलने की गरज से उसके कमरे में दाखिल हुआ तो पाया कि केदारनाथ उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। इस पर राजेंद्र उससे भड़क गया और उसके हाथों केदारनाथ का खून हो गया। निर्मला ने वक्त की नजाकत को भांप लिया और राजेंद्र को फौरन वहां से चले जाने को कहा। उसके बाद पुलिस ने निर्मला को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। निर्मला को अदालत में पेश किया गया और मुकदमा शुरू हुआ। सरकारी वकील रतन ने अपनी मां यानी निर्मला को हर मुमकिन खूनी साबित करना चाहा और अदालत से सख्त सजा

की वकालत की, मगर राजेंद्र ने अदालत के सामने सच्चाई पेश की और अपना जुर्म कबूल किया कि उसके हाथों ही केदारनाथ का खून हुआ है। मजीद उसने अदालत को यह भी बताया कि निर्मला उसकी बीवी है। इस पर सब हैरान हुए। डॉक्टर रत्ना ने भी अदालत को बताया कि रतन राजेंद्र और निर्मला का बेटा है। ये जानकर रतन को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी मां के कदमों में गिरकर मुआफी मांगनी चाही कि इससे पहले ही निर्मला इस जहान फानी को छोड़कर जा चुकी थी। वो तमाम जिंदगी मुसीबतों से जिदोजहद करती रही, मगर कब तक वो गमों से लड़ती रहती। जब उसकी जिंदगी में खुशियां दस्तक दे रही थी तो खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया। वो कुर्बानी और शराफत की देवी थी, चलते चलते भी वो अपना फर्ज पूरा कर गई और बाप बेटे को हमेशा के लिए मिला गई। ये सच था कि अब वो इस दुनिया में नहीं थी, मगर राजेंद्र के दिल में वो हमेशा के लिए जिंदा थी।

कहकशा प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे फिल्म अदालत की कहानी और उसके नगमे। इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था जनाब विपिन कुमार ने। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव से 71 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। ये सुनिए कुछ फिल्मी नगमे।

नर्थ फिल्म का दुगाना सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। नगमा निगार राजेंद्र कृष्ण, मौसीकी शंकर जयकिशन की।

हिम्मत फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मौसीकी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और लीजिए सुनिए खिलौना फिल्म का नगमा, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, मौसीकी तरतीब दी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज है लता मंगेशकर की।

आप आए बाहर आई फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज सुन रही है। नगमा निगार थानम नक्शी, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। और जब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म है रखवाला, मौसीकी कल्याण जी आनंद जी की।

0: लेकिन अपने के साथ फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं। अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में शांघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर आर्मेनिया के अपने हममनसब निकोल पाशिन्यान और ईरान के सदर मसूद पेदशकियान के साथ बाहमी मीटिंगें की हैं। हुकूमत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए के कुल अखराजात के सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के सभी 6 सतून को नोटिफाई किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एनआईएफटी के तलबा पर जोर दिया है कि वह मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत को बरकरार रखते हुए आलमी नुकता नजर अख्तियार करें। भारतीय बहरिया ने आईएनएस निपुण को बहरिया में शामिल किया है। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब के बाद राहत और बचाव कार्रवाईयों में तेजी आ गई है। हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है और 4000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और फुटबॉल में आज ताशकंद में भारत एएफसी अंडर 20 एशिया कप क्वालिफाई मुहिम का आगाज मुल्क शाम के खिलाफ मुकाबले से करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में शांघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर ईरान के सदर मसूद पेदशकियान के साथ एक बाहमी मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मगरबी एशिया खित्ते में हालिया वाकयात का जायजा लिया। वजीर आजम मोदी ने भारत के मुस्तकिल मौकिफ का इरादा किया कि सभी मामलात बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। वजीर आजम ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और आजाद जहाजरानी और तिजारत के तहफ्फुज की खातिर मुसलसल कोशिशों की जरूरत को भी उजागर किया। इससे कबल वजीर आजम मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के सदर निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने दिफा, इक्तसादी उमूर, अद्वियात, साइंस और टेक्नोलॉजी और सकाफत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने पर बातचीत की। उन्होंने मगरबी एशिया में सूरतहाल समेत इलाकाई और आलमी वाकयात पर भी नजरियात का तबादला किया।

वज़ीर-ए-आज़म ने कजाकिस्तान की राजधानी में भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ पुरजोश बातचीत की। जनाब मोदी ने बिश्केक में महात्मा गांधी मेमोरियल पर गुलहाय अकीदत भी नजर किए। वो कल शंघाई ताउन तंजीम की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। हुकूमत ने आज 1.27 लाख करोड़ रुपए के कुल अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 स्कीम को नोटिफाई किया है ताकि मुल्क में चिप मैन्युफैक्चरिंग के इको निजाम को फरोग दिया जा सके। इसके साथ ही आइंदा वर्षों में भारत आलमी सेमीकंडक्टर सनत के बाजार का तकरीबन 10% हो सकता है और आलमी सेमीकंडक्टर के मामले में भारत एक ज्यादा अहम रोल अदा कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2.0 के सभी 6 सतूनों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात कही। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क को आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में पुख्ता तौर पर शामिल करने पर है। उन्होंने कहा कि आलमी सेमीकंडक्टर सनत के मुतालिका फरीकों के दरमियान ये एतमाद है कि भारत आइंदा दहाइयों में अहम सरमायाकारी के लिए एक सही और मुनासिब मकाम है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि टेक्सटाइल और मलबूसात का शोबा न सिर्फ भारत के सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा है बल्कि ये लाखों अफराद के गुजर बसर का जरिया भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की जलसाए तकसीम असनास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने तलबा पर जोर दिया कि वो मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत और अकदार से मरबूत रहने के साथ साथ एक आलमी नुक्ता नजर अख्तियार करें। फैशन सनत में खवातीन के उभरते रोल पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तकरीब में मौजूद तकरीबन 4000 तलबा में से 85% खवातीन हैं। विकसित भारत 2047 के नजरिए में ताउन की खातिर नौजवानों पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तलबा महज नौकरी तलाश करने वाले न बने रहें बल्कि वो नौकरी फराहम करने वाले और दीगर के लिए रोजगार के मौके पैदा करने वाले बने। सदर जमहूरिया ने कहा कि गुज़श्ता 4 दहाई में NIFT के तलबा और पेशेवर अफराद ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अहम हुसूलियाबियां हासिल की हैं और मुल्क का नाम रोशन किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि साबिक सदर जमहूरिया एक ऐसे सरकर्दा मुंतजिम और स्कॉलर थे जिन्होंने मुल्क के लिए अपने पुख्ता अज़्म और दहाइयों पर मबनी अपनी अवामी जिंदगी में आईने अख्तार को तरजीह दी। जनाब शाह ने मजीद कहा कि उनकी मीरास रहनुमाओं को तरगीब देती रहेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय बहरिया ने आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में निस्तार जुमरे के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण को बहरी बेड़े में शामिल किया। इससे मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए बहरिया के सरबराह एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि हिकमत अमली की तब्दीलियों के इस दौर में निपुण ज़ेर-ए-आब खसूसी सलाहियतों में एक जबरदस्त इजाफा होगा जो गहरे पानी में कसूरखी कार्रवाइयों के लिए दरकार है। उन्होंने यह भी कहा कि निपुण से गोताखोरी और ज़ेर-ए-आब बचाव कार्रवाई के तौर पर कार्रवाई की मगरबी बहरी कमान की सलाहियतों में खातिरख्वाह इजाफा होगा। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने निपुण मुल्क में ही डिजाइन और तैयार किया है। ये जहाज डाइविंग सिस्टम्स और पानी के अंदर कार्रवाई से मुतालिक सलाहियतों से लैस है। इससे समंदर में मुश्किल हालात में काम करने वाले गोताखोरों को मुसलसल मदद फराहम की जा सकती है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इक्तिसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। अमरीका के अपने दौरे में शिकागो में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान की लड़ाई नीज आबनाए हुरमुस को बंद किए जाने के तनाजुर में जोग्राफियाई सियासी गैर यकीनी की कैफियत और सप्लाई निजाम में रुकावटों के बावजूद उम्मीद है कि भारत अपनी तरक्की की रफ्तार बरकरार रखेगा। नेपाल में गुज़श्ता हफ्ते तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है जबकि

आकाशवाणी ने विदेश प्रसारण सेवा दसेराई की प्रोग्राम है। मैं संजय पहुजा आप सबको सलाम नमस्ते राम राम जी करेंदा। अतसा हाजिर है आप सब दिनाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे मन दी गाल प्रोग्राम दी किश्त 177 दे नाल। तर्जुमाकार ते आवाज है संजय पहुजा। मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन दी गाल दे ही नवे एपिसोड विच तुसा सबे दा मैं एक बारी वाला स्वागत करदा हां। तुसा सबको पता है कि यह एक ऐसा मंच है जिथे असा नवे प्रयासा को सामने आने दे हां, देशवासियों दे इनोवेटिव आइडियाज ते चर्चा करें दे हां। इन्हां विचों किन्ने ही आइडिया इंजे हुंदे हन जिहदे पिछों लोकां ने जिंदगी दी अथक ऊर्जा लाई हुंदी है। साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया ते किसी ने लिखा हा आषाढ़ी एकादशी दे पावन अवसर ते मेरे को एक दसदे होए अत्यंत खुशी थींदी पई है कि इतिहास को रोचक बनावण दे आपने प्रयास दा शुभारंभ करिंदा पिया हां। उन्हां अगू दस्या इह आइडिया बहुत ही सिंपल है। तुसा ही वैबसाइट ते वञो अते कोई भी एक साल चुन गिनो। उथा तुहाको आसानी नाल पता चल सी कि उस समय भारत दे किस हिस्से ते किस दा शासन हा। मेरे को भी ये काफी दिलचस्प लग्या। मैं सोचा हा कि हिम बारे विच होर वधीक जानकारी गिद्दी वंजे। मेरे को पता लग्या कि एक काम मुंबई विच रावण वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की गल ए है कि कृष्णा जी ने वैबसाइट का ना भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com। उन्हें जेड़ा प्रयास किया है उनकी जानकारी तुसा लोगों तक भी जरूर पुजनी चाहिए है। इस वास्ते मैं सोचा कि क्यों ना सीधे श्री कृष्णा जी कन्ने ही गल की वंजे। साथियों कृष्णा जी असाडे नाल फोन ते जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कृष्णा जी नमस्ते। कृष्णा शेषाद्री नमस्ते सर। नमस्ते प्रधानमंत्री। भैया मेरे को पता लग्या है कि ना तुसा टेक दी दुनिया तो हो ना तुसा हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी तुसा टेक्नोलॉजी दा इस्तेमाल करके हिस्ट्री दी साइट बना दित्ती। तो मेरे को बहुत उत्सुकता है ये सब कुछ किने थिया। कृष्णा शेषाद्री धन्यवाद सर। तुसा नाल गाल करके मेरा बहुत वड्डा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे जेकर मैं थोड़ा दसा तो सर मैं एक इंजीनियर हां, फिर मैं MBA कीता, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड विच मन गया, लेकिन ए सब जदू भी करदा हम ता भी मेरे को बचपन तो इतिहास विच बहुत इंटरेस्ट हा। ता मैं हमेशा इतिहास बारे कुछ करना चाहता हम कि को दिलचस्प बनाया वे। अगर मेरे को ए भी लगता हा कि असा जिवें हिस्ट्री सिखांदे हां इन्दे विच असा बहु इम्प्रूवमेंट कर सकते हां, इन्दे विच असा बहु बदलाव लेके आ सकते हां, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हां। प्रधानमंत्री कृष्णा जी भारतीय इतिहास दा इंजा केड़ा पहलू है जिहदे बारे विच तुसा को लगे कि इन्दी जानकारी वध तो वध लोगों को थीनी चाहिए है। कृष्णा शेषाद्री सर अगर असा भारतीय इतिहास जिवें साडे स्कूलां या कालेजां विच सिखाया वेंदा है जिवें तुसा देखदे हो ओ एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उत्ते दृष्टिकोण तो उन्दे नजरिए तो सिखाया वेंदा है अते ओ एम्पायर को डिसप्रपोर्शनेट अटेंशन भी मिलती है। हिन चक्कर विच बाकी दे बहुत सारे जड़े असाडे साम्राज्य हैं जड़े महान साम्राज्य हैं जिवें चोलाज पल्लवाज करकोटा डेंसिटी हई कश्मीर विच अहोम हैं जिन्होंने घट तो घट 600 साल असम विच अपनी संस्कृति अपना वैल्यू सिस्टम बरकरार रख्या। इस सब दे बारे विच असा नहीं जानदे तो मैं सोचा कि कोई इंजी कोई साइट बनाई वंजे जिहड़ी इंजी महान साम्राज्यां को भी लोकां नाल इन्हां को इंट्रोड्यूस कीता वंजे। प्रधानमंत्री कृष्णा जी आप इतनी मेहनत करेंदे हो मैं इन्हीं ते को हाइपोथेटिकल सवाल पूछदा हां। अगर तुहां को इंडियन हिस्ट्री दे कोई भी त्रै लोकां नाल गालबात दा मौका मिले तो तुसा किन्हां नाल गाल करना चाहसो अते क्यों? कृष्णा शेषाद्री हां सर तो पहले मैं गाल करी सा राजा राजा चोला या राजेंद्र चोला सर जिहड़े चोला साम्राज्य दे सब तो मोस्ट पावरफुल या सब तो इम्पोर्टेंट राज्यां विचों हन। मैं उन्दे तो यह जानना चाहसा कि पहले उन्हें को भी यह विजन किवें आया जिवें उन्हां बृहदेश्वर टैंपल या गंगई कोडा चोलपुरम जिहड़े वड्डे वड्डे मंदिर हन शिवजी दे मंदिर हन वह एग्जीक्यूट करन वास्ते वह विजन कित्थों आया वह प्लानिंग किवें कीती उन्दे को वह थॉट किवें आया कि असा इंजा कुछ बना के वंजो जिहड़ा अगले 1000 या 2000 साल तक दूजे लोगों को प्रेरित कर सके तो उन्हें को उन्दे तो जानना है।
ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁ ਅੰਡਰ ਰੇਟਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੇਮੂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਰੇ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੇਮੂ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹਨ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਕ ਐਮਪਾਇਰ ਬਿਲਡਰ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਮਿਲਟਰੀ ਥਿੰਕਰ ਵੀ ਹਨ ਮਿਲਟਰੀ ਜੀਨੀਅਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ 23 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 22 ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਝ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਰਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਹੁ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਤ੍ਰਿਮਤ ਹੈ ਸਰ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਮਹਾਦੇਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾ ਭੂਮਾਕਾਰਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਡਣ 850 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰ ਪਾਲਾ ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਐਮਪਾਇਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹਾ ਸਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹਨ ਉਹ ਹੂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਐਮਪਾਇਰ ਬਹੁ ਨਿੱਕਾ ਥੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹ ਐਮਪਾਇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਮਹਾਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਤਨਾ ਇਨੇ ਕੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਲਿੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਝਾ ਟੈਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇੰਝੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ

के बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप अते फिर अमरीका दे सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशन अते पोस्ट्स दे तिरंगा लहरांदा गया। तो संकल्पना कर सकते हो ए दृश्य कितने अद्भुत रहे हो सन। जिवें जिवें दुनिया भर विच सूरज अगू वधदा गया तिवे तिवे भारतीय तिरंगा भी लहरांदा गया। इंजे प्रयास समाज को एक सूत्र विच पिरोंदे हन। इन्हां नाल देश दे नाल भी साडा जुड़ाव होर गहरा थींदा है। इन्हां प्रयासां विच शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत वधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, साडे शहरां अते कस्बियां दी सड़कां ते रोज सवेर तो शाम तुहानूं लखां त्रिमतियां अपने अपने काम विच जुटियां रहिंदियां हन। कोई सब्जी वेचदी है, कोई फल, कोई चाय दा ठेला लैंदी है, तो कोई फुल डीए अते पूजा दा समान वेचदी है। कई बार बस थोड़ी जी पूंजी की कमी इन्हां दे कारोबार को अगू वधण तो रोक देंदी है। लेकिन हुण इंजियां लखावां मातावां बहणां को पीएम स्वनिधि योजना तो नवी ताकत मिलती पई है। महिला सशक्तिकरण दे ही पहलू दी इन्नी चर्चा कहनी थींदी जितनी थीनी चाहीदी है। पीएम स्वनिधि योजना दे लाभार्थियों विच करीब 46% त्रिमतियां हैं, यानी देश भर विच तकरीबन 35 लाख त्रिमतियां ही योजना नाल जुड़ के अपने कारोबार को अगू वधेंदियां पई हैं। साथियों, गाजियाबाद दी बबीता शर्मा जी इहदा बहुत चंगा उदाहरण है। बबीता जी पूजा दा समान दा एक निक्का जिहा स्टाल लांदियां हैं। फुल, दीवे, अगरबत्ती, नारियल वर्गियां शय वेच के वो अपने परिवार की रोजी रोटी विच हथ वटांदियां हैं। मेहनत बहुत हुई लेकिन कारोबार वधावण वास्ते पूंजी दी जरूरत आई। पीएम स्वनिधि तो उन्हां को माली मदद मिली। उन्हां अपने स्टाल ते समान वधाया, कारोबार दा पसारा कीता, ग्राहक वधे, आमदन वधी अते हौले हौले सड़क किनारे उन्हां निक्का जिहा स्टाल एक हट्टी विच वटिज गया। साथियों, बेंगलुरु दी टीएस निगम्मा जी दी मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निगम्मा जी अते उनके पति ने रल के इडली, डोसा अते सांभर वेचण दा निक्का जिहा काम शुरू कीता। काम चल पिया लेकिन इन्हूं अगू वधावण वास्ते पूंजी दी लोड़ आई। निगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि तो सहयोग मिलिया। उन्हां अपनी कार्ट बेहतर कीती, समान थोक विच खरीदन शुरू कीता अते मेन्यू विच भी कई नवी चीजां जोड़िया। ग्राहक वधे, कमाई वधी अते परिवार दी माली हालत बेहतर थी गई। अज वो अपने त्रै बालां को बेहतर एजुकेशन देवण दे काबिल थई हैं। साथियों, जदन हिक त्रिमत दा कारोबार वधदा है तो उहदे नाल पूरे परिवार दा भविष्य अगू वधदा है। बालां दी एजुकेशन बेहतर थींदी है, घर दीआं जरूरतां पूरी थींदीआं हैं अते त्रिमत दे अंदर आत्मविश्वास होर मजबूत थींदा है। इही तां है महिला सशक्तिकरण दा हिक जिंदा जागदा रूप। मैं रेहड़ी पटरी दे कम नाल जुड़िया सब बहणां को उहदे रोशन भविष्य वास्ते बहुत शुभकामनावां देंदा हां। मेरे प्यारे देशवासियों, सफाई दी एक बहुत वड्डी खूबी हुंदी है। जदों किसी जगह को साफ रखण दा संकल्प उत्थां दे लोगां दा अपना संकल्प बन वेंदा है तां बदलाव सिर्फ साफ सफाई तक सीमित नहीं रहिंदा। इहदे नाल उस जगह दी पूरी पछाण ही बदल वेंदी है। देश दे अलहदा अलहदा हिस्सियां विच सफाई वास्ते इहे प्रयास असां को लगातार प्रेरणा देंदे हन। उत्तर प्रदेश दे रामपुर विच एक गांव है पटवाई। उत्थे आकाश अते रोहन नां दे दो दोस्तां ने डिठा कि उन्हां दे आसे पासे दा इलाका गंदगी नाल भरीज गया है। बस वो क्या है, आकाश अते रोहन ने कचरे दे बैग चुके अते सफाई वास्ते निकल पाए। हौले हौले दूजे युवा भी उन्हें नाल जुड़न लगे। एक टीम भी बन गई जिंदा नां है क्लीन अप पटवाई। ये युवा हुण तक 4 गंगा घाटां को साफ कर चुके हैं। एक टन तो वध प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबां अते सार्वजनिक जगह की सफाई की है। साथियों, ही बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा विच भी सफाई अते जन भागीदारी दी इंजी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। औखे रस्तियां ते हजारां सफाई कर्मी दिन रात सेवा विच जुटे रहे। ही साल यात्रा दौरान 400 मीट्रिक टन तो वध कचरे को कलेक्ट अते प्रोसेस किया गया। मेरे को ही प्रयास की यह गल खास तौर ते चंगी लगी। सफाई दे ही अभियान विच श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 तो वध यात्रियों ने सफाई का संकल्प किया। 12,000 तो वध यात्रियों को रिस्पांसिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिता गया। इत्थां एक बहु अनोखा प्रयोग भी थिया। यात्रा विच घोड़िया अते खच्चरां दे गोबर को बायोगैस विच तब्दील किया गया अते उस क्लीन एनर्जी नाल स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी दी ही पवित्र यात्रा विच सफाई भी सेवा अते आसदा दा एक रूप बन गई। साथियों, असाडे गांव होवन या शहर, असाडियां नदियां होवन या तीर्थ स्थल, इन्हां दी पछाण असाडे व्यवहार नाल भी बनदी है। अते जदों सफाई ही व्यवहार विच शामिल थी वेंदी है उस जगह दी शोभा होर वध वेंदी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कदे कदे असाडा एक निक्का जिहा शौक जिंदगी विच एक वड्डी संभावना दा रस्ता खोल लैंदा है। नागालैंड दे फेक जिले दी बेसालू पुरो जी दी यात्रा भी कुछ इंजी ही है। बेसालू जी किसान परिवार विच
ਪੱਲੀ ਵੱਧੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ।

0: राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। पैरो महला पंजवा सिरलेख वाली इस पावन रचना का गायन की तसी पाई हरचरण सिंह होरा दे रागी जत्थे ने। गुरबाणी अनुसार जिसका आसरा लेना होवे उस नाल संपर्क अते संबंध रखना लाजमी हुंदा है। बिलावल राग विचले शब्द विच पंचम गुरदेव फरमाउंदे ने कि जिन्हां प्यारियां नूं एक ज्ञात है कि करते के देश करतारपुर विखे संत जन उसके पास ही रहिंदे हन, ओ पूर्ण प्रभु नूं सिमरदियां अपने कारज संपूर्ण कर लैंदे ने जदों ओ गुरु अगे अरदास करदे ने, फिर उन्हां नूं कोई विघन नहीं व्यापदा। सर्व रक्षक प्रभु ऐसे भगतां दी हर पासे रक्षा करदा है, उन्हां दी रास पूंजी दी राखी करदा होया इंज सहाई हुंदा है जिवें एक राजा अपनी सल्तनत दा ख्याल रखदा है। पर गोबिंद प्रभु ता महाराजियां दा महाराज है, क्योंकि को हर समान नहीं राजा, उही मालक प्रभु रखवाला है, भगतां दी रक्षा करदा है। सुनदिया प्रोफेसर अपिंदर सिंह होरां पासों वार्ता। रखवाला गोबिंद राय पगतन की रास।
1: महान कोश दे करता भाई कान सिंह जी नाभा गोबिंद दे अर्थ करदे होए इस शब्द नूं वाहेगुरु दा लखाएक मनदे हन। पंचम पातशाह दा कथन है, गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम दियो मन लीना, गोबिंद तों भाव सृष्टि दा स्वामी वाहेगुरु है। साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह माज राग विच भगत दे लक्षण दसदे हन। तिना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया। इसे तरह रास शब्द दे अर्थ करदे होए भाई साहिब भाई कान
2: बहुत ही छोटी सा मैं सोच रही हूँ कि इसका कारण इकलौता सी। मेरे पिता जी सारी रात लिखते सन, सारा दिन सोते सन, कोई कारज पैंतिया नहीं सी, कोई दोस्त नहीं सी, कोई डर नहीं। इसी कविता लिखी मैं नजम लिखी, पर कई नजम मैंने इतनी याद नहीं क्योंकि कभी वो कागज ही पा लिया पा लिया गया और ये नाल पता नहीं पे मुंह पे। हालांकि मेरे पिता जी चाहे नजम में लिखा, उन्होंने मैं काफी अरबी समझा के बाजी पढ़ना सिखाया। राजे जान लगी पिता जी को खर्चा पैसे मंगन गए, उन्होंने मेरे गोजे च पैसे पान लगे। कागज खरीदया, उन्होंने कागज कढ़िया पढ़िया, पढ़ के बड़े गौर नाल मेरे मुंह वाल देखा, मुझे नजम क्यों लिखी डर गया उड़ के लिया। मैं क्या नहीं मेरी सहेली ने लिखी है, उन्होंने फिर कागज गौर नाल पढ़िया और मेरे मुंह पे चपेड़ मारी और नाल आखिया कि तू पूछ दे ले नजम क्यों लिखी। बर्दाश्त नहीं किया, बिलकुल सच बोले की कौन है जितना ना आवे सारे वारदात जीता।

0: बनाया रोजा,
1: अच्छा
0: मैं मतलब काला गुलाब इतनी चार साल पांच साल हो गए होंगे
1: उन्होंने
0: मैगजीन भी छपी है बहुत सारी कहानियां भी छपी है सगल रूप से किताब छपी है और दूसरी कंपाइल कर रहे हैं जो कहानियां होंगी।

0: नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
1: डिजिटल एरेस के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। भय का माहौल पैदा करो, वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में, आप सोच भी नहीं पाएंगे। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती।
2: संधु साहब कर रही हूं,
3: आजो आजो बाल साहब लांगाओ कारियां।
2: संधु साहब जय हिंद जी।
3: जय हिंद जी, जय हिंद बाल साहब, की हाल चाल है?
2: हाले चाले संधु साहब, बहुत वधिया, चढ़दी कला, तुसी सुनाओ।
3: बहुत वधिया, और खेती बाड़ी च की चलता पे है?
2: खेती बाड़ी च बस उलझे हुए हैं जी, हुण पानी पूरा हो गया सगा, खाद भी पूरी कर दिती है, झोने वाले किसान तुहानू पता भी हुण स्प्रेया चल पई, फंगीसाइड स्प्रे हो रही है, नाल कीड़े मार दवाईया छिड़काई जांदी।
3: देखो हुण आपां गल करदे आं कि थोड़ा वक्फा भी पै गया।
2: हां जी,
3: जिदां बारिश सौण उन्ना जिहड़ा है,
2: हां जी,
3: जो उम्मीद रखदे सी आपां,
2: बिलकुल जी,
3: उन्ना मीह वरदा पे,
2: नहीं नहीं उन्ना मीह पिया नहीं जी,
3: हां
2: ये तां है जी।
3: ये देखो अपने जिहड़े विज्ञानिक

0: 是哪里长大？人民路不去的是哪里？不为是哪里长大？什么路去哪里啊？नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोफ से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय लोगों की मेहनत को जाता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सुधारों और अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमीकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमी कंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की निंदा की है। यूएई की वायु रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन को रोक दिया।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के हमले तनाव बढ़ाने वाले हैं और यूएई की सुरक्षा, स्थिरता तथा संप्रभुता के लिए खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यूएई ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और इन हमलों का जवाब देने का अधिकार रखता है। उसने इन हमलों को तुरंत रोकने की अपील की। यूएई ने मिसाइलों से जॉर्डन को निशाना बनाए जाने की भी निंदा की। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। तो सरताबन देखो, पड़ोसी देश में इस वक्त जिस तरीके से बाढ़ आई विनाशकारी, उससे काफी जानमाल का नुकसान हुआ, और बाढ़ जब आती है तो उसके बाद किस तरीके के नुकसान होते हैं उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम उससे पहले अपनी तैयारियों से काफी हद तक जो है अपने आप को हम कोशिश कर सकते हैं बचाने की, और साथ में कृषि क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन के क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं इसके बारे में आइए डॉक्टर विपिन कुमार, जो कि वैज्ञानिक हैं जल संरक्षण केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, तो उनसे सुनते हैं।
1: नमस्कार। आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सूखा, बाढ़ और भी आपदाएं आती हैं जिनका सामना करना पड़ता है, लेकिन मौसम बरसात का चला हुआ है और इस बरसात के मौसम में ज्यादातर देखने को मिलती है कि बाढ़, और बाढ़ किस तरीके से कृषि क्षेत्र को प्रभावित करती है और उसका किस तरीके से प्रबंधन किया जाए, इस विषय पर आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विपिन कुमार जी को, जो कि वैज्ञानिक हैं जल संरक्षण केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर विपिन कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये बाढ़ क्या है। और
2: देखिए, जैसे बाढ़ ये सभी के जीवन में कहीं न कहीं देखने को मिला होगा, तो बाढ़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बाढ़ वो है जैसे कि बारिश हुई, अगर वो पानी कहीं पर रुक जाए, जो जल का ऊपरी स्तर है, जो कहते हैं धरातल है, उस पे वो इकट्ठा होगा। तो उस तरह के इकट्ठा होना की प्रक्रिया एक बाढ़ की प्रक्रिया है। सिंपल तरीके से हम अगर हम समझना चाहें तो, चाहे खेत भी हो सकता है, चाहे आपका घर भी हो सकता है, आपकी सड़कें हो सकती हैं, या कहीं बाहर से नदियों के द्वारा पानी आ रहा है और वो ओवरफ्लो होके आपके क्षेत्र में आ गया, इस तरह की जो क्षेत्र है उनको बाढ़ बोलते हैं या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ नदियों से आता है, अगर पहाड़ी क्षेत्र में बरसात ज्यादा हो जाती है तो वो भी बह के आता है
2: एकदम
1: बाढ़ का रूप,
2: वो भी बाढ़, वही नदियों के द्वारा वही आता। नदियों का जलस्तर आपको देखने को मिलता होगा कि आपके वहाँ पानी तो नहीं बरसात हुई, लेकिन आपके वहाँ बाढ़ आ गई। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर जब पानी ज्यादा गिरता है, जो नदियों का जल स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जिसके वजह से वो आपके घरों में, आपके खेतों में आ जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, बाढ़ हर क्षेत्र में तो आती नहीं, कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ आती है और आने की संभावनाएं रहती हैं?
2: देखिए, अमूमन अगर देखा जाए तो हमारा जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये दो नदियां हैं जो हमारे, इनके जो आसपास जो स्टेट हैं जिनसे ये गुजरती हैं, वहां पर बाढ़ को देखने को मिलेगा। तो हम अगर बात करें आसाम, जो आसाम है करीबन

0: जिले हैं जिसमें से 18 जिले बाढ़ से हमेशा क्षतिग्रस्त रहते हैं। उसके बाद आप आएंगे तो पश्चिम बंगाल भी हमारा बाढ़ प्रभावित राज्य है। उसके बाद बिहार आता है, उड़ीसा आता है, और जो हमारे उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जो गंगा आती है बहते हुए, बाढ़ आपको देखने को मिल सकता है। ये तो ऐसी क्षेत्र जहां पर आपको अमूमन हर साल कभी न कभी बाढ़ आपको दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन पंजाब में भी और राजस्थान में भी आपको कभी कभी देखने को मिला होगा कि बाढ़ यहाँ भी आ गई। उसका कारण यह है कि राजस्थान का तो यह है कि बारिश अभी अचानक होने लगी है, बहुत ज्यादा हो जाती है
1: जी।
0: तो राजस्थान की जो जमीन का ऐसी संरचना है जिसमें पानी नीचे नहीं जाता, वहां पर एक जिप्सम की लेयर है, तो जिससे वो नीचे की तरफ बहाव नहीं होके ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है। और दूसरी जो पंजाब में है, पंजाब में भी नदियां हैं, और अगर हम साउथ में अगर देखें आपको नवंबर और जनवरी में मिलेगा, क्योंकि जो साउथ इंडिया है वहां पर बारिश का जो समय है वो हमारे यहाँ से विपरीत है। और कुछ समुद्री इलाकों में भी, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में साइक्लोन के साथ पानी का चला आना, इसी तरह महाराष्ट्र, इसी तरह से केरला, कुछ क्षेत्र हैं जो तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर भी बाढ़ आपको देखने को मिलेगा।
1: डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मौसम भी बदल रहा है और मौसम बदलाव के साथ कहीं कहीं पे देखने को मिलता है एकदम बहुत ज्यादा बारिश हो गई और कहते हैं कि बादल फट गया, तो उस स्थिति में भी कुछ सीमित क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना है।
0: जो बारिश की अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, अगर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरस गया, तो वो बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। कभी कभी बहुत ही ज्यादा पानी, और कभी कभी पहाड़ों पे जो स्थिति होती है, कहते हैं बादल फट गए, तो वो एक ऐसी स्थिति है कि जब धरातल पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी आ जाता है, जो उस धरातल के लिए, वो उस पीरियड के लिए उतनी आवश्यक नहीं होता, तो इसके वजह से वो एक वेलोसिटी और एक वेग रूप में वो बहना स्टार्ट कर देता है। आप देखोगे कि ये डिस्ट्रक्शन एक नुकसानदायक होता है। तो इस तरह से परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, और यही है कारण, एक तो वर्षा, दूसरा नदियों में बहाव अचानक ग्लेशियर से अगर या किसी वजह से पिघल कर, या नदियों का जो जल स्तर है उनमें अचानक ज्यादा बढ़ाव आ जाए, वो भी एक कारण है। समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में समुद्र की लहरें कभी कभी बहुत ही ज्यादा ऊंची हो जाती है और वो हमारे धरातल की तरफ बढ़ जाती है, ये मुख्य कारण है।
1: जो बाढ़ का असर है वो हमारे मानव के ऊपर पड़ता है, तो सब इसको कैसे
0: देखिए, बाढ़ एक कहा देखा जाए तो बहुत ही दयनीय परिस्थिति हो जाती है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, दो तरह से नुकसान होता है। स्ट्रक्चरल नुकसान, जो कभी न जाने कितने दिनों तक कोई परिवार घर बनाया रहता है, स्ट्रक्चर क्रिएट किया रहता है, अपनी कारखाना या व्यापार या खेती, ये पूरी तरह से उसको डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे बीमारियां भी नई नई ला देता है, अचानक पानी से संबंधित बीमारियां हैं, मलेरिया है और डायरिया है, इस तरह के इन्फेक्शंस होने लगते हैं, तो पूरी तरह से वहां का व्यापार ठप हो जाएगा, पूरी तरह से जो उनकी सर्विसेज, चाहे वो कुछ भी हो, खान पान या बिजली, सब कुछ प्रभावित होती है, जिसकी वजह से उनकी पूरी जीवन एक तरह से नर्क बन जाता है। तो ये इकोनॉमिकल भी है, सोशल साइकोलॉजिकल हर तरह से डैमेज करता है जिन क्षेत्रों में ये आता है। अभी आपको आसाम में देखने को मिला होगा कि कितने लोगों की जानें चली गई, कितने ज्यादा घर टूट गए।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि और जब इसका असर बाढ़ का मानव स्वास्थ्य पे पड़ता है, और उसके साथ साथ जो हमारी खेती है उसको भी प्रभावित करती है।
0: जैसे मान लीजिए जिन क्षेत्रों में की इकोनॉमी एग्रीकल्चर है, तो उनके लिए तो पूरी तरह से ये बहुत ही, कोई भी फसल है अगर जल जमाव लंबे समय तक हो जाता है तो कोई भी फसल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और क्या होता है कि वो खत्म हो जाती है। तो अभी आप देखेंगे कि जितनी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर भुखमरी, गरीबी बहुत ही देखने को मिलेगी। इसके कारण यही है कि लोगों की जो कृषि है, जैसे उनकी मवेशी हैं, वो भी दह जाते हैं, तो कृषि को या उनका कोई भी व्यापार है उसको बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है।
1: तो डॉक्टर साहब, फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए, बाढ़ नियंत्रण की बात है तो ये एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं, एक सामूहिक और एक हर लेवल पर प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर हम खेती की ही अगर हम बात करें तो बाढ़ उतनी भयावह लेवल पर नहीं है, तो हमें ध्यान देना, तो उन क्षेत्र के जो किसान हैं वो सिंचाई देने के साथ साथ वो अपने खेतों में बाढ़ नियंत्रण के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर बना के रखें पहले से। जैसे जो ड्रेनेज के चैनल हैं उसको आप टेम्पोररी भी चैनल भी बना सकते हैं, जैसे कच्चे भी बन सकते हैं, और परमानेंट स्ट्रक्चर भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो होना बहुत जरूरी है। इसलिए कि जो बाढ़ आती है उसका ड्यूरेशन ज्यादा लंबा नहीं होता है, जो टेम्पररी पानी का आएगा, तो उस टेम्पररी पानी को जो 8 दिन या 1 हफ्ता लगने वाला है उसको निकालने के लिए आपके पास सुगम व्यवस्था होनी चाहिए, वो है ड्रेनेज। तो मैं तो किसानों से यही बोलूंगा कि आपके खेत में हर के आउटलेट होने चाहिए, उस जगह पर आप निर्धारित कीजिए जो खेत आपका ढलान की तरफ भाग रहा है, वहां पर कुछ आउटलेट दीजिए और वो एक सामूहिक ड्रेनेज लाइन से उसका जुड़ाव हो, जिससे क्या हो कि अगर पानी नदियों का बह के या बरसात से ज्यादा रहता है तो आप उसको खोल दें, जिससे वो बह के सीधे आपके पानी खत्म हो जाए। दूसरा ये भी है, आपको जैसे है कि आज की देखोगे कि जो इन्फॉर्मेशन है इन पे भी डिपेंडेंट रहना है। जैसे फसल लगा लिया, इस बार हमारा जो पहले से अनुमान था कि इस बार थोड़ी बरसात का सिचुएशन कुछ अनबन रहेगा, जैसे ई एल नीनो का प्रेडिक्शन आ गया था, तो इस तरह की भी जानकारियों को भी हमें इकट्ठा करने की जरूरत है
1: के अनुसार ही
0: अपने फसलों का चुनाव करो। तीसरी चीज है, गवर्नमेंट का भी बहुत इन सब तरह के हमारे किसान सुरक्षित रहे तो फसल बीमा एक बहुत ही अच्छा आपका कह सकते हैं सिक्योरिटी देने का एक तरीका है, जिसमें अगर आप अपनी प्रीमियम जो है बहुत ही मिनिमम होती है, जो सीरियल क्रॉप्स हैं मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन की हैं और जो हॉर्टिकल्चर की हैं थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप लोग फसल का बीमा भी करा लें, जिससे क्या है कि आपको अगर ऐसी स्थिति आ जाती है जब सरकार ऑलरेडी डिक्लेयर कर देती है कि नहीं ये क्षेत्र एक तरह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो चुका, तो उस दशा में अगर आप कराए रहेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। और उसके अलावा एक चीज और भी है कि हमें ये देखना है कि गांव में जो भी नालियां होती हैं उसके किनारे लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, अपना अपना जगह बना लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उस तरह से नहीं करना। जो आपके परदादाओं के टाइम से जो चैनल बने पड़े हैं उनका कुछ महत्व रहा है, जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनका कुछ महत्व रहा है, आप उनको घेर मत लीजिए। आप गांव में तालाब देखेंगे तो तालाब ऐसी जगहों पर हुआ करता था जो ढलावन वाली एरिया में हुआ करता था, लोग क्या करते हैं उसी पॉन्ड के चारों तरफ बस जाते हैं, जिससे उसमें पानी बाहर से आके इकट्ठा होने में अवरुद्ध होता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमको अपने लेवल पर करना चाहिए और सरकार स्टेट डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक बॉडी है ऑलरेडी, वो भी प्रयास करती है।
1: जी बिल्कुल, सरकार भी एक योजना लेके आए थे कैच द रेन ये कार्यक्रम, तो इसके तहत आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं देखिए, बाढ़ को हम कैच द रेन उसी लेवल पर कर सकते जब इसका थोड़ा इंटेंसिटी कम हो।
1: जी,
0: जैसे आप जो कह रहे हैं कैच द रेन, जैसे हमारे पास अगर कम्युनिटी पॉन्ड है, हमारे पास लग रहा है कि हमारे खेतों में पानी ज्यादा हो गया है और हमारे आसपास के जो पॉन्ड है उनमें पानी कम है, तो हम क्या कर सकते हैं उस पानी को, उस रेन को डाइवर्ट करके उस पॉन्ड में इकट्ठा करवा लेंगे, जिससे क्या होगा कि फिर जब हमारी पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी फिर हम वहां सिंचाई कर लेंगे। उस दशा में तो ठीक है, ये किसी भी ऐसी आ जाती है जिस स्थिति में है कि हमको किसी भी कारण से पानी को अपने खेत से अपनी जगह से हटाना है, वो स्थिति बाढ़ की स्थिति होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बाढ़ का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, हमारे जो कृषि फसलें प्रभावित होते हैं, एक हमारे जो किसान भाई हैं जो भी खेती करते हैं उनके साथ पशु भी होते हैं तो उन पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए, बाढ़ एक ऐसा परिस्थिति है जिसमें आपको बोल रहा हूँ ना, स्ट्रक्चरली डैमेज करता है। अगर आप पशु पाले हैं और बाढ़ की स्थिति है तो सीधी सी बात है कि जो कम्युनिटी शेल्टर्स हैं, आपको लगता है कि हमारे एरिया में आता ही आता है ये, तो जो जिला प्रशासन द्वारा कुछ शेल्टर्स बनाए जाते हैं, आप देखे होंगे बाढ़ों के बांध बंधे होते हैं उनके ऊपरी परिस्थितियों में, आपको लग रहा है कि आपके एरिया में जल का स्तर अब बढ़ना स्टार्ट हो गया है, वार्निंग होती है, आपको पहले से अवेयर रहने की जरूरत है। जैसे आपको लगता है अपने मवेशियों के साथ आप शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि बाढ़ ज्यादा आ गई तो डेफिनेटली आप उस जगह पे आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये भी एक कंप्लीट नुकसान होने से अच्छा है कि आप पहले प्रिकॉशन जरूर ले लें। और दूसरी, जहां पर थोड़ी कम बाढ़ आती है लेकिन उतनी लेवल की नहीं है, तो चारे की सबसे बड़ी संकट उत्पन्न होती है। ऐसी कंडीशंस में किसानों को लगता है कि हमारे यहाँ बाढ़ आता है, तो मैं कहूंगा कि उनको जैसे जो स्ट्रा से भूसा बनाते हैं, इस तरह के जो साइलेज बनाते हैं, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर अपनी ऊंची जो जमीन है जहां पर लगता है कि पानी कम लगेगा, वैसे पर एक स्टोरेज बनाएं जहां पर उनको इकट्ठा करके रखें, जिससे कि जिन स्थिति में निचली स्तर में अगर पानी आ जाता है और पूरी तरह से उनकी जल जमाव होने से घास की सुविधा नहीं हो पाती है, तो उस अवस्था में वो लोग वहां से लेके पशुओं को चारा दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहने का मतलब यह है कि आपको जो सूचनाएं मिलती हैं जागरूक रहना,
0: जागरूक होना बहुत जरूरत है,
1: और बाढ़ एक आपदा है और उसको आप रोक तो नहीं सकते।
0: इसलिए 2005 में इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर लाया गया, ये एक आपदा है, इसके लिए सचेत रहना बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: आपको सचेत रहना है, आप रोक नहीं सकते लेकिन प्रबंधन कर सकते हैं। डॉक्टर विपिन कुमार जी, आप स्टूडियो में आए और कृषि क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन पर आपने किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये बातचीत सुन रहे थे कि किस तरीके से आप बाढ़ जैसी विपदा को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे जो है
3: बेहतर योजना, उचित फसल चयन और जल प्रबंधन के जरिए कृषि होने वाले नुकसान और जो इंसानों का नुकसान होता है, जो आर्थिक जान माल को नुकसान होता है, उसका बचाव कर सकते हैं।
2: ये डॉक्टर विपिन कुमार जी जो वैज्ञानिक हैं, जल संरक्षण केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, उनसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल जी।
3: और इस जानकारी के बाद आइए करते हैं हम अपने भाई बहनों का मनोरंजन और सुनते हैं ये उपदेश योगेंद्र निमचाना से।

0: तो अभी आप सुन रहे थे योगेंद्र नीमचाना से उपदेश, और इस उपदेश के बाद राजेश भाई क्यों ना हम अपने किसान भाई बहनों से कुछ जानकारी की बात, मतलब जानकारी दे दे। और अगर हम जानकारी की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में उनको हम कुछ बताएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो सरकार की तरफ से तमाम जो किसान भाइयों को ध्यान में रखकर सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई गई है।
0: जी, और कहते हैं ना राजेश भाई की खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन को मजबूत करने की आधारशिला है, और किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने और खेती से जुड़े दूसरे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है, और इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे क्या किसानों को फायदा मिलेगा और इसका उद्देश्य क्या है, जैसे कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का विकास करना है, और इसके तहत राज्य अपने स्थानीय जरूरतों के अनुसार कृषि से जुड़ी परियोजनाएं चलाती हैं, जिसमें खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों की भी बढ़ावा दिया जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य राज्यों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का समग्र विकास, किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और निवेश को बढ़ावा देना है। और योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी शुरुआत 2007-08 में हुई। इसका उद्देश्य राज्यों में कृषि क्षेत्र में अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार परियोजनाएं लागू करने में मदद करना है। कृषि के साथ बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे संबंध क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। सिंचाई, कृषि आधारभूत ढांचे और उत्पादन क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन और उत्पादकता का वातावरण तैयार किया जाता है। इसके अलावा कृषि से जुड़े स्टार्टअप और उद्यमिता को भी प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना के अंतर्गत पहले की गई है, और राज्यों को स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिकताएं तय करने की सुविधा मिलती है।
0: और भाई, अगर हम ये पूछे कि इस योजना की जानकारी कैसे मिलेगी, तो हम यही कहेंगे कि किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं जो हैं और पात्रता है, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई बहन है, खेती में नई तकनीक अपनाना आज समय की जरूरत है, ये तो वो जानते ही हैं। मिट्टी की जांच, अच्छे बीजों का चुनाव, पानी की बचत, वैज्ञानिक तरीके से खेती और फसल के बेहतर प्रबंधन से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और कहते हैं ना कि सही जानकारी, सही तकनीक और सरकारी योजनाओं का सही लाभ किसान की तरक्की का मजबूत आधार बन जाता है।
1: बिल्कुल, और दूसरा ये कि सरता बहन जीवन में ना कहा जाता है कि यो अच्छी आदतें रखनी चाहिए, लेकिन जब कुछ बुरी लत लग जाए तो फिर क्या होता है?

0: किरण शर्मा से। और इसी के साथ अब सरिता घड़ी कह रही है कि हमें कार्यक्रम को यहीं पर
1: विराम देना चाहिए। तो इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सभी सुनने वाले किसान भाई बहनों को राम राम, राम। कार्यक्रम के
0: प्रस्तुतकर्ता थे तुषार परासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब गीत और गजल के कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं चंद खूबसूरत सी गजलें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत गजल कव्वाली कार्यक्रम के अंतर्गत ये खूबसूरत सी गजलें। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: मामा जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो जैसे यूपीआई से।
2: अच्छा
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी वो दिखाई भी यूपीआई से मिलेगी।
2: हम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
1: हर लेन देन अब है आसान।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसौदा सूची जारी की। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवरों के आसपास मौजूद उपेक्षित स्थानों को उपयोगी बनाने के लिए दो निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
5: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो लेकिन आपकी जड़ें अपनी मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
4: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। उसके 18 वर्ष बाद एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। आज करीब 4000 छात्रों को डिग्रियां भी प्रदान की गई। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की मसौदा सूची आज प्रकाशित की गई। एसआईआर इस वर्ष 20 जून को शुरू हुआ और घर घर जाकर गिनती 30 जून को शुरू की गई। मतदाता सूची में मतदाता के नाम, ईपीआईसी नंबर, आयु, पता और रिश्तेदार के नाम आदि का विवरण है। एक रिपोर्ट।
6: मसौदा मतदाता सूची के अनुसार 1,45,10,299 मतदाताओं में से कुल 97,53,577 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। इनमें मुख्यतः पुरुष 49,88,993, महिलाएं 47,64,137 और 18 से 19 वर्ष के बीच 1,03,870 मतदाता हैं। नागरिक co.delhi.gov.in से मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दावे और आपत्ति विज्ञप्तियां 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकती है। यदि कोई निर्वाचन निर्दिष्ट अवधि 30 जून से 17 अगस्त 2026 के भीतर अपना भरा हुआ गणना प्रपत्र जमा करने में असमर्थ रहा हो तो वह दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान शामिल किए जाने के लिए निर्धारित घोषणा पत्र के साथ प्रपत्र 6 दाखिल कर सकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप से।
4: सरकार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाली मौजूदा पेपर बेस्ड पिंक टिकट व्यवस्था को अगले महीने की 17 तारीख तक बढ़ा दिया है। ये फैसला पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आधारित सिस्टम में आसानी से बदलाव सुनिश्चित करने और आने वाले त्योहारों के दौरान महिला यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है। दिल्ली परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस बढ़ी हुई व्यवस्था से महिलाएं ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी मुफ्त बस यात्रा का फायदा उठा सकेंगी और इसके बाद पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 19 लाख महिलाओं ने पहले ही इस कार्ड के लिए अप्लाई या रजिस्टर कर लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत दो निजी कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का उद्देश्य फ्लाईओवरों के नीचे और उनके आसपास मौजूद उपेक्षित या कम उपयोग वाले स्थानों को स्वच्छ, हरित, सुरक्षित और नागरिकों के लिए उपयोगी सार्वजनिक स्थल बनाना है। एक रिपोर्ट।
7: इस साझेदारी के अंतर्गत स्वच्छता, हरियाली, सौंदर्यकरण, सुरक्षा, पैदल आवागमन को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा। पहली कंपनी के पहल के अंतर्गत दीपाली चौक से मंगोलपुरी मार्केट तक 2.5 किलोमीटर के स्थानों को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित सामुदायिक स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना है। वहीं दूसरी कंपनी द्वारा मथुरा रोड और MP मार्ग के आसपास के करीब 2 एकड़ की ग्रीन बेल्ट के विकास और दीर्घकालिक रखरखाव की पहल की जाएगी। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ पहलों से दिल्ली के प्रमुख कॉरिडोर की सुंदरता और पहचान बेहतर होगी, हरियाली बढ़ेगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध होंगे। वहीं दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहब सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार अकेले सारा काम नहीं कर सकती है और अगर सरकार के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी हो तो काम बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
8: सरकार अकेले काम नहीं कर सकती है, सरकार के साथ में पब्लिक पार्टनरशिप भी हो तो और काम अच्छे से हो सकता है। बहुत सारे NGO हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो दिल्ली को सुंदर बनाना चाहती हैं और ये हमारा पहला MOU नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे PSUs के साथ में MOU किया और हर जगह पे आप ये देख रहे होंगे, दिल्ली की जनता को फर्क दिखाई दे रहा होगा कि रोड के साइड में नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, प्लांटेशन हो रहा है और अच्छा उसको सुंदर बनाया जा रहा है।
7: श्री सिंह ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और निजी क्षेत्र की यह साझेदारी आगे भी इस प्रकार से मजबूत होती रहेगी, साथ ही मिलकर दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने के संकल्प को नई गति मिलेगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
4: दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सिविक सेंटर स्थित केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में निगम के स्वच्छता सुपरवाइजर कर्मचारियों के साथ ओपन हाउस बैठक की। इस बैठक में स्वच्छता कर्मचारियों ने आयुक्त के समक्ष शहर को स्वच्छ बनाए रखने से संबंधित अपनी समस्याएं, सुझाव और विचार रखे। इस अवसर पर श्री खिरवार ने कहा कि वर्तमान मॉनसून का सीजन MCD के लिए बेहतर रहा और पिछले कुछ वर्षों की तुलना में ये निगम के लिए सबसे अच्छे मॉनसून सीजन में से एक रहा है। उन्होंने मॉनसून के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और बेहतर नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने में योगदान के लिए स्वच्छता कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। राजधानी में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महापौर प्रवेश वाही ने आज दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने विजय कैंप में निर्माणाधीन फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को फिक्स्ड कॉम्पैक्टर को जल्द से जल्द स्थापित करने के निर्देश दिए जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ई वेस्ट के बेहतर प्रबंध को लेकर सचिवालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को मॉडर्न सुविधाओं से लैस स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली में ई वेस्ट के सही कलेक्शन, सेमिग्रेशन, डिसमेंटलिंग और रिसाइक्लिंग के लिए साइंटिफिक फैसिलिटी स्थापित करने के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज टोडापुर के यातायात पुलिस के कामकाज की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने और जाम वाले स्थानों पर समय रहते जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिये। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने विधानसभा के राजा विहार नया रास्ता में नई सीवर लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस नई सीवर लाइन के निर्माण से क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और स्थानीय निवासियों को सीवर संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत मिलेगी। जाफराबाद स्थित एक निजी डे केयर और प्ले स्कूल में 3 वर्षीय बच्चे के साथ कथित दुष्कर्म मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने संबंधित स्कूल को सील करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित बच्चे के परिवार को कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी तो दिल्ली सरकार उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बवाना क्षेत्र में 3 वर्षीय नर्सरी छात्रा के साथ दुष्कर्म पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। इस मामले में स्कूल बस चालक के कथित रूप से शामिल होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही पर सवाल उठाया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अदालत ने ये निर्देश एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर चिंता के बीच दिया है। वर्ष 2013 में भी एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
7: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
4: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने दिल्ली प्रीमियर लीग DPL क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के 183 रन के लक्ष्य को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 18 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर लिया। साउथ दिल्ली के लिए अंकित डबास 34 गेंद पर 62 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने 1 विकेट हासिल किया। शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए अंकित डबास को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिल्ली के कला संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कला संस्कृति और भाषा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में पुस्तकालय की सेवाओं को अधिक जन उपयोगी बनाने और नए विचारों को धरातल पर उतारने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के PGDAV कॉलेज और लॉ सेंटर के छात्रों ने दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान छात्रों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से भी मुलाकात कर उनसे संवाद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि खुली बातचीत, विचारपूर्ण सवालों और नए विचारों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज के युवा लोकतंत्र को लेकर जिज्ञासु हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसौदा सूची जारी की। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवरों के आसपास मौजूद उपेक्षित स्थानों को उपयोगी बनाने के लिए दो निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का खिताब जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: पापा लाइए 3,000।
10: क्यों भाई?
9: मेरी पॉकेट मनी।
10: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
9: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
10: है?
9: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
10: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अब 1,000 ले जाओ, अपना मोबाइल लाओ। भारत करता है डिजिटल भुगतान।
11: हर लेन देन अब है आसान।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, TRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है ठीक 8:00, ये लीजिए पूरे हुए 15 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत लेकर आए हैं कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं महालक्ष्मी की आवाज में गाये इस खूबसूरत से गीत के साथ।

कराओ और नहीं कोई तो मेरे यार को बुलाओ।

बातें करते हैं, तुम होते तो कैसा होता? तुम ये कहते, तुम वो कहते, तुम इस बात पे हैरान होते, तुम उस बात पे कितनी हंसते। तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, यह सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मारा यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी और उसके बाद

0: 饿了都没。
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। ये कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने

0: के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखें अपडेट @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
2: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: गृहमंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
4: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयीय समन्वय को मजबूत

0: करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुनें। ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और FC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. In football, India begin campaign at Under-20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days.
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with the leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian during the meeting reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances.
0: During his visit to Kyrgyzstan, Prime Minister Narendra Modi today met the President of the Kyrgyz Republic and the Prime Minister of Armenia. During these bilateral meetings, the leaders discussed economic and trade partnerships, enhancing cultural cooperation and growing people-to-people contacts between the two countries.
3: Earlier today, Prime Minister Modi had a warm interaction with members of the Indian community in Bishkek. He appreciated their energy, enthusiasm, and valuable contributions towards strengthening the bonds of friendship between India and the Kyrgyz Republic. Mr. Modi also paid floral tribute at the Mahatma Gandhi Memorial in Bishkek. The Prime Minister will address the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit tomorrow. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.

सभी आपको बता दें से कुछ ही देर बाद यानी 9 बजकर जिसमें आप सुनेंगे या फिर मेरा गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज इस प्रोग्राम में समाप्त फरमाइएगा जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें। 9:45 बजे खबरें नशर की जाएंगी और 9:55 पर कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। 10:00 बजे पेश करेंगे प्रोग्राम मार्केट मंत्र। फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद आप सुन सकते हैं रात 10:30 बजे से लेकर 11:30 तक। इस दौरान 11 बजे सुनिएगा खबरें बड़े सगीर से। रात 11:30 बजे हम पेश करेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में। 12:00 बजे कव्वाली के प्रोग्राम में आसमात फरमाइएगा रहीम कामिल कव्वाल और साथियों की गाई कव्वाली है। 12:00 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में सुनिएगा पंडित बलदेव राज वर्मा से उस्ताद अहमदान थेरकवा से तबले पर बजाया 3 ताल। सदाबहार फिल्मी नगमों का लुत्फ आप ले सकते हैं रात 12:30 बजे आखिर शब प्रोग्राम के तहत। ये प्रोग्राम जारी रहेगा 12:50 तक। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 1 बजे हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1073 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्रीडिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में समाप्त फरमाइए जगजीत सिंह की गाई गजलें। आगाज कर रहे हैं जावेद अख्तर की इस कलाम के साथ।

सुन रहे थे जावेद अख्तर का कलाम जगजीत सिंह की आवाज में। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से इस वक्त आप सुन रहे हैं यार फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में गजल सरा है जगजीत सिंह। प्रोग्राम की अगली पेशकश डॉक्टर नवाज देवबंदी की ये खूबसूरत गजल आप तमाम सामईन के लिए।

0: सुना सुना रहे थे गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के प्रोग्राम में गजल सुनाते जगजीत सिंह। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। शब के 9:45 बजे में खबरें नशर होंगी।
1: आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान तिजारत, तवानाई और दिफाई उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत यूक्रेन में जंग के खात्मे की हर कोशिश की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ईरान के सदर मसूद पज़िश्कियान के साथ मीटिंग के दौरान जहाजरानी की आजादी और शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने

0: कि ये H1N1 जो स्वाइन फ्लू है कि जनरल वायरल फीवर है। इस टाइम में जैसे बहुत सारे सीरियस वायरल बीमारी भी होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी में सिंसिटल वायरस हम जिसको बोलते हैं वो भी होते हैं, कोल्ड के वजह से भी बहुत सारे। तो अगर इसमें लगता है कि सिम्टम्स जैसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स खांसी है, बॉडी में एक है, नजल सिक्रेशन ज्यादा है, पानी आ रहा है नाक से ज्यादा, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि शायद हो जाए। अगर टेस्टिंग का फैसिलिटीज है तो इमीडिएट टेस्टिंग करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि टेस्टिंग नहीं फैसिलिटीज है और इसमें स्वाइन फ्लू लगता है तो इमीडिएटली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और नहीं तो प्रोफाइलेक्स भी हम देते हैं। टेबलेट अवेलेबल है, ट्रीटेबल है, इस वायरस को ट्रीट कर सकते हैं। सांस के साथ ही अंदर जाता है ये वायरस, और निमोनिया टाइप का जो सिम्टम्स है, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, कफ, खांसी, जुकाम, बॉडी में दर्द, इस टाइप का सिम्टम्स लक्षण दिखाई देता है। और इससे अभी तक जैसे कि इस साल लगभग 9,000 करीब लोग इस पीड़ित हुए हैं, और दिल्ली में कम से कम 1,600 करीब कंफर्म केसेस पाया गया है।
1: तो डॉक्टर मिश्रा साहब बता रहे थे कि इसके जो सिम्टम्स है यही है, जो नजला जुकाम होना, खांसी होना, इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स
0: बुखार के साथ ही होता है।
1: अच्छा, बुखार भी होगा,
0: बुखार होता है, और जैसे नाक से पानी गिरना एक सिम्टम्स है, गला जैसे है, गला में दर्द होना, खांसी होना, थोड़ा सा गला में जो सिम्टम्स गले का थ्रोट, सो ये एक लक्षण है। तो नाक से पानी और गले में थोड़ा सा दर्द होना, कुसकुस करना, और हेडेक होना, बॉडी में दर्द, जैसे वायरल सिम्टम्स उस टाइप का है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है हमारा लंग्स का, उसमें ज्यादा ये देखा गया कल्चर, उसमें ग्रोथ होते हैं वायरस। और ये जो इसमें क्या है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है, जैसे और भी कॉन्टेजियस, जैसे हाथ और किसी चीज इन्फेक्टेड मटेरियल को हम अगर टच कर लिया तो उसमें भी वो वायरस होते हैं और एक से दूसरे को ट्रांसफर होते हैं। जैसे हम अभी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है कोई भी, उसके साथ अगर हैंडशेक कर लिया तो उसके थ्रू से भी, हैंडशेकिंग थ्रू से भी आपको इन्फेक्ट हो सकता है। ये
1: बहुत अहम बात बताई डॉक्टर साहब आपने। और अब हम तकरीबन अपने प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की जानिब रवा दवा है, कुछ और एहतियात आप हमारे लिसनर्स को कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो हेल्दी रहें? बिल्कुल,
0: हाँ देखिए, ये तो सीजनल फ्लू है, स्वाइन फ्लू
1: जी जी,
0: और इस सीजन में आपको एक एक स्टेट में, जैसे किसी किसी स्टेट में आपको हाई एंडेमिसिटी होता है
1: जी जी,
0: कहीं ट्रांसमिशन होता है, तो कहीं पे भी हो अगर इस बीमारी का जैसे रिपोर्टेड है तो पहले तो अपने आपको बचाओ, और कैसे बचाएं कि आपको इस सीजन में ज्यादा क्राउड में ना जाए, अवॉइड करें, जरूर जाए बट प्रोटेक्शन लेके जाए। और अगर किसी को इस टाइप का लगता है कि बीमार जुकाम है तो खुद वो बाहर क्राउड में ना जाए, और घर पे अगर कोई आइसोलेटेड रूम हो, कोई अलग सा रूम हो, तो उसमें रेस्ट ले, ना ऑफिस जाए, कम से कम 5 दिन तक, 4 से 5 दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए, और स्कूल भी नहीं जाना चाहिए, दफ्तर नहीं जाना चाहिए, और जब थोड़ा सा ठीक हो जाए तो आप जरूर काम पे जाए, क्योंकि आप अगर जाएंगे क्राउड में जाएंगे तो जरूर ये बीमारी सोसाइटी में फैलेगी और ज्यादा आपको
1: बढ़ सकती है
0: बीमारी, और ये खतरा भी बढ़ता है देश के लिए भी, वो आपका
1: ठीक नहीं है।
0: तो ये क्योंकि ये कॉन्टेक्ट से ही एक से दूसरे को फैलता है, और इसकी इलाज है अगर आप अर्ली पहचाने इस बीमारी को, जब भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स हो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, और इसमें सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट भी होता है, और आपको इमीडिएटली अगर जरूरत पड़े मेडिसिन आपको दे देंगे, और इसकी इलाज है बीमारी का, स्वाइन फ्लू का मेडिसिन है, प्रॉपर मेडिसिन, और इसको वैक्सीन भी है, अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं वैक्सीन के लिए, तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देश भर में बहुत सारे स्टेट में नया आउटब्रेक चल रहा है, ऐसे ही बीमारी रिपोर्टेड है, लोग पैनिक है, बट आपने आपको पैनिक ना हो, अपने आप को ये बचाव करे और ध्यान रखे कि अपने आप जब भी किसी को थोड़ा बहुत हो वो बाहर ना घूमे, प्रॉपर इलाज करे।
1: बहुत सारी मालूमात एक साथ आपने डॉक्टर साहब दे दी।
2: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Well, today, friends, being a Monday, we shall be taking your calls on your market-related queries. But please do remember that we do not address stock or company-specific queries. And the numbers on which you can call us are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, please add a prefix of 011 as a code to these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
1: Dhanyavad Lalima, and namaskar, Shrotao, Karobari Khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे लेकिन याद रखें कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड हमारे साथ है आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार दीपशिखा मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है
2: धन्यवाद सुबोध जी
1: पहला हेडलाइंस के साथ लालिमा ने चाहे
0: एंड जी थैंक यू सुबोध यस फ्रेंड्स लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे वेल बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100 इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोज बाय 7.8% इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा गिरा निफ्टी 24,100 से नीचे पहुंचा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.8% बढ़ा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल

0: Well, before we move ahead with more financial news, friends, here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले चलते हैं एक कॉलर के पास जो जुड़ गए हैं
0: जी जी
1: दिल्ली से सतीश हमारे साथ है स्वागत है सतीश आपका सवाल पूछे
0: जी सतीश आस्क योर क्वेश्चन प्लीज
2: यस माय क्वेश्चन इज मैम कि गोल्ड और सिल्वर का अभी आउटलुक कैसा रहेगा आने वाले दिनों में
3: सतीश जी गोल्ड में अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा करेक्शन आया था उस वक्त बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी लोगों के लिए लेकिन अब चूंकि जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें कि क्राइसिस फिर जो है थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है और उसको लेके कंसर्न्स हैं हो सकता है कि प्राइसेस जो हैं प्रेशियस मेटल्स के अभी और बढ़ें तो आप जो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा एक हिस्सा जो है प्रेशियस मेटल्स का रख सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है दोनों प्रेशियस मेटल्स की वो काफी अच्छी है
0: एंड गोल्ड एंड सिल्वर लव जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
3: एब्सोल्युटली
1: चले राइट जी खबरों का सिलसिला शुरू करें हम पहले देखते हैं कि शेयर बाजार में क्या रहा देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज 0.4% की गिरावट दर्ज की गई सेंसेक्स 307 अंक गिरकर 76,957 पर बंद हुआ निफ्टी 95 अंक नीचे 24,080 पर आ गया एनएसई के अन्य सूचकांकों में मिला जुला रुख रहा मिड कैप 100 सूचकांक 0.2% बढ़ा जबकि स्मॉल कैप 100 0.7% नीचे आ गया पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आज कारोबार की शुरुआत से ही सूचकांकों में कमजोरी रही पूरे सत्र में अधिकांश सेक्टर्स पर बिकवाली का दबाव बना रहा
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.4% down today. The Sensex declined 307 points to close at 76,957. The Nifty dropped 95 points to settle at 24,080. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index gained 0.2%, while the small-cap 100 index dipped 0.7%. Earlier, the markets opened on a weak note as escalating geopolitical tensions in West Asia and rising crude oil prices weighed on investor sentiment. Both the indices witnessed selling pressure across most sectors throughout the session.
1: और देखते हैं कि सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का शेयर आज कैसे परफॉर्म किया सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें अडानी पोर्ट्स में 4.1% आईटीसी में लगभग 3.7% और भारतीय एयरटेल में लगभग 2.8% की गिरावट देखी गई इसके उलट सन फार्मा में 1.9% आईसीआईसीआई बैंक में 1.7% और एक्सिस बैंक में 1.5% की बढ़त दर्ज की गई
0: Let's take a look at the sectoral indices now. And on the BSE, 21 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, utilities decreased 2.6%, metal lost 2.4%, services dipped 1.9%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt rose over 1.2%. Mid-small private banks gained 1.2%, and Bankex added over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,572 companies declined, 1,858 advanced, and 250 remained
1: अनचेंज्ड आगे कॉलर के पास जाने से पहले बता दें रुपए का हाल अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 22 पैसे बढ़कर 95.17 रूपये पर बंद हुआ
0: एंड नाउ लेट्स कनेक्ट टू बिहार वेयर टिंकू राय इज ऑन द लाइन जी टिंकू जी सवाल पूछिए अपना जी
4: नमस्ते मैम
0: नमस्कार
3: नमस्ते टिंकू जी
4: मेरा मेन यही दो सवाल है। एक जो पीपीएस अकाउंट जो खुलता है वरिष्ठ नागरिक के लिए, वो जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में क्या अंतर है, ब्याज इंटरेस्ट या अंतर है, और एक ये है जो एटीएम कार्ड हम किसी बैंक से लेते हैं, क्या इसके साथ इंश्योरेंस मिलता है या ऐसी अफवाह है? कोई बताता है 2 लाख का इंश्योरेंस इसका फ्री रहता है इस पर, यही मेरा दो सवाल का जवाब चाहिए।
3: टिंकू जी, आपने जो सवाल किया है, आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आप देखेंगे तो बैंक्स जो हैं वो भी आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं, एडिशनल इंटरेस्ट रेट देते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। पीपीएफ में थोड़ी सी बंदिश रहती है, वो लॉक्ड इन रहता है, थोड़े बेटर रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं वहां पर, फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं जो सरकार नोटिफाई करती है, सरकार की तरफ से वो ब्याज दरें तय होती हैं,
0: टैक्स नहीं लगता उस पर,
3: और टैक्स भी नहीं लगता है,
0: दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
3: दूसरा चीज है कि बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट तो रहता ही है, लेकिन अगर आपका फिक्स डिपॉजिट नहीं है तो नॉर्मल सीनियर सिटीजन्स में रेट में फ्लक्चुएशन जिस तरह से होता है वो उतार चढ़ाव का गुंजाइश रहता है।
0: All right, and now he asks another question.
3: इंश्योरेंस की बात आपने कही थी, इंश्योरेंस के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, सीनियर वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंश्योरेंस का

0: है
1: एटीएम कार्ड के साथ, इन्होंने पूछा है कि एटीएम कार्ड के साथ इंश्योरेंस है या नहीं है।
0: एटीएम कार्ड के साथ
1: एक्चुअली वो बैंक अकाउंट के साथ आपको एक छोटा सा इंश्योरेंस जो बैंक्स ऑफर करते हैं आजकल हर अकाउंट के साथ,
0: ज्यादातर बैंक्स करने लगे हैं वो, लेकिन ऐसा कोई योजना नहीं है कि जो एटीएम कार्ड के साथ आपको सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस दिया जा रहा है।
1: जी चलिए अगली खबर, आज की बड़ी खबर है जीडीपी। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% रही थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार बरकरार है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जून तक के जीडीपी के तिमाही अनुमान जारी किए। अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को तृतीय क्षेत्र ने प्रमुख रूप से मजबूती प्रदान की है। इस क्षेत्र में 10% की वृद्धि देखी गई। इसमें मुख्य योगदान वित्त, रियल एस्टेट, आईटी और प्रोफेशनल सेवाओं का रहा, जिनमें 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई। द्वितीय क्षेत्र में 8.6% की वृद्धि हुई। प्राथमिक क्षेत्र में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें मुख्य योगदान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का रहा, जिनमें चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.6% की बढ़ोतरी देखी गई।
2: So, how would you? All right, I think we can go ahead and see the Prime Minister's reaction. Well, the Prime Minister has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% in the first quarter of financial year 2026-27 a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of the country, despite oil price shocks, supply chain disruptions and global uncertainties. And before we go any further, we have Nitin online calling us from Delhi. Yes, Nitin ji, yeah, sawal puchhega apna ji.
3: Dhanyawad ji.
2: Ji.
3: Madam, mera ye puchna hai ki main senior citizen hoon aur mere abhi ek mahine baad meri maturity ho jayegi, ab bhi meri mature ho jayegi. To lagbhag achhi khasi hai, 30-35 lakh ki hai. तो इसमें ये मुझे
0: बताइए कि
3: हमें मार्केट में पैसा लगाने की कोई जानकारी नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या और से बेस्ट एफडी से क्या मिल सकता है, या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड कहाँ हम इस चीज के लिए सोचे हैं? क्योंकि बच्चों के लिए, अगर बच्चे करते हैं तो इसके लिए तो वो कर सकते हैं।
1: तो आप कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं?
3: लगभग जैसे हम हर साल एक साल की अवधि होती है, 2 साल की भी होती है, तो अभी 1 साल की मेरी मैच्योर हो जाएगी और 2 साल की मेरी अगले साल मैच्योर होगी कुछ अवधियां, तो हम उसमें जाते हैं और सीधा हो जाता है, इसमें कोई सिद्धि नहीं हमें महसूस होती। शेयर मार्केट के लिए थोड़ा ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, मार्केट की उतार चढ़ाव और क्या कैसा उसका तरीका
0: जी, एकदम आपने सही कहा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए थोड़ी जानकारी चाहिए और इसीलिए मार्केट मंत्रा में आपको हम जानकारी देते हैं। आपकी एफडी जो है, एक तो आप कम अवधि के लिए उसको बैंक के साथ रखते हैं नितिन जी, जब तक आपको जरूरत नहीं है, आपके बच्चों को जरूरत नहीं है, तो आप उसे लंबी अवधि तक रखेंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, आपको उसमें ब्याज भी बेहतर मिलेगा। अगर आप बाजार की तरफ आप उसमें कुछ अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं, तो जो थोड़े सेक्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं, जहां पर आपको लगता है, और जो कंपनीज जो जहां पे बहुत मजबूत हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, आप उस हिसाब से उनमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप वो देखिएगा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए करते हैं तो आपको बेहतर उसमें रिटर्न्स मिल पाएंगे।
2: Yeah. Considering the fact he's a senior citizen, so risk appetite should be low.
0: Low, exactly. I mean, short-term investment is good. You have money in hand.
1: Yes. और उन्हें एफडी पर रेट भी ज्यादा मिलता है.
0: Exactly.
1: जी. दीपशिखा, आज की अब बड़ी खबर पर लौटते हैं हम। जीडीपी के आंकड़े हैं जो बहुत उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं।
0: बहुत ही बेहतर आंकड़े जो हैं वो आए हैं, क्योंकि
1: खासकर जब दुनिया ऐसी चुनौतियों से गुजर रही थी।

0: हमने देखा
1: उस
0: कि
1: बीच
0: पूरा
1: हमारे देश का
0: पूरा जो है 2-2.5 महीना जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था ये, तो उस दौर में। और अगर आप आंकड़े भी देखें जीडीपी के, तो निवेश में बढ़ोतरी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही कहना चाहिए सेक्युलर ग्रोथ है। अगर आप देखते हैं कृषि क्षेत्र में भी जो एवरेज ग्रोथ चल रही है उसी हिसाब से है, तो आंकड़े जो हैं बहुत ही इनकरेजिंग हैं, बहुत ही बेहतर आंकड़े हैं और उम्मीद से बहुत ही बेहतर आए हैं, क्योंकि ये आशा नहीं थी कि ये क्वार्टर जो है हमारा इतना मजबूत रहेगा।
2: एंड सर्विसेज सेक्टर एज ऑलवेज वी डू
0: सर्विसेज सेक्टर हैज ऑलवेज डन वेल एंड सो इट हैज रिमेन्ड यू नो इट हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल, बट आई थिंक द इम्पॉर्टेंट और आई थिंक द फैक्ट विच इज लीपिंग आउट इज यू नो हाउ इन्वेस्टमेंट हैज ग्रोन एंड हाउ इट इज डूइंग नाउ। Indications are that maybe you know private investment has started to show some positive signs. So, which is a very positive indication coming out from the data.
1: जी, खबरों और चर्चा का सिलसिला तो चलता रहेगा। अभी चले अगले कॉलर के पास। दिल्ली से सतपाल सिंह हमारे साथ हैं। सतपाल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार सतपाल जी। जी सवाल पूछे।
3: मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो अमेरिका ईरान का जो ये चल रहा है, जो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है काफी टाइम से 6 महीने हुए हैं, तो ये बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर भी आगे चल सकता है इस सिचुएशन में? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गोल्ड के प्राइस कैसे रहने वाले हैं अगले 6 महीने में?
0: सतपाल जी, देखिए जो जियोपॉलिटिकल संकट है वो तो हमने आज भी देखा, वो खत्म नहीं हो रहा है वेस्ट एशिया में। वहां पर समाधान जो है एक कहना चाहिए जैसे ड्यूरेबल पीस जो है वो नहीं आ पा रही, और उसकी वजह से बाजार में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। लेकिन आपने कहा कुछ एक क्षेत्र, अगर हम देखें आज के हमारे जीडीपी के आंकड़े आए हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है इकॉनमी का, उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत स्थिति में है। आगे जाने वाले जो कुछ क्षेत्र हैं, आप क्योंकि अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है तो क्रेडिट का डिमांड रहेगा, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र आप देख सकते हैं, सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी खर्चा कर रही है, तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वो देख सकते हैं। डिफेंस क्षेत्र में काफी जो है वो काम हो रहा है, डिफेंस में आप देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स देख सकते हैं। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में उम्मीद की जाती है कि ये आपको बेहतर रिटर्न्स देंगे। आपने कहा गोल्ड जो है, चूंकि जियोपॉलिटिकल अस्थिरता हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से चल रही है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में एक गोल्ड एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह आप उसको देखिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो।
2: राइट, वी कनेक्ट टू भोपाल नाउ एंड शंकर जी हैज जॉइंड अस। यस शंकर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या
4: नमस्ते माकर मंत्रा टीम, माय क्वेश्चन इज अबाउट निफ्टी व्हिच हैज बीन होवरिंग एट 24,000 for last 3 years consecutively, 24, 25 and now 26. Mm-hmm. The major reason could be FII is pulling out, and FII has pulled out because they fear that dollar will rise and they have to withdraw in dollar, and dollar will rise because of the international situation. So in this scenario, and also we have imposed, you know, there are dollar fluctuation ke alawa ek aur problem hai ki they are taxed here at 12.5% on long-term capital gain and short-term capital gain. Isn't it time to for government to think something about this? Because okay, economy is doing well, but the market is not performing, so it is not reflecting in our country. You know, one of the major factor, which is basically indicator.
0: A very interesting question, Shankar ji. You know, a lot of investors have been representing to the government, but we saw they did, you know, give some relaxation with regard to investment for foreign portfolio investors in government securities. You know, it's a wider issue. Taxation is a wider issue, and there is a give and take. There is a lot of demand. Government has to carry out a lot of social expenditure. So I'm sure if they feel compelled to take this decision, they will at some juncture. I'm sure the policy makers are examining it.
1: जी, अगला कॉलर है कोलकाता से अतनु साहा, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
5: Good evening, sir. Good evening to everybody. Good evening to Market Mantra, sir. My question is, ma'am, this is hedging.

0: against a market volatility other than gold? What would be, ma'am? Thank you.
1: और क्या हो सकता है?
2: और क्या हो सकता है? बिल्कुल, आप जो है अगर मार्केट के हिसाब से हेज करना चाहें तो आपको कम रिटर्न्स पे बैंक्स देखने पड़ेंगे, एफडीज देखने पड़ेंगे. यू एक्चुअली हैव टू लुक एट अ मोर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो इन विच यू हैव यू नो ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज मिक्स विच विल गिव यू सम हेज अगेंस्ट very sharp fluctuations or very sharp fall in markets.
3: All right, let's go ahead with some more news. 18 of the 19 subsectors under the Index of Services Production, that's ISP, recorded year-on-year expansion in June 2026, with 8 posting double-digit growth. According to the subsectoral trial, ISP data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MoSPI, today, real estate led the pack with growth of 24.7%, followed by retail trade at 18%. Wholesale trade grew by 15.1%, administrative and support services rose 14.4%, and IT and computer related services increased 13.5%. Meanwhile, air transport was the only subsector to contract, falling 6% from a year earlier. Moving ahead, the government today notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. With this, India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav said this while addressing the media in New Delhi today. After releasing the notifications for all the six pillars of the Semicon India Programme 2.0, Mr. Vaishnav noted that there is confidence among global semiconductor industry stakeholders that India is the right destination for major investments in the coming decades.
1: Yes, there is some pratikriya. India Electronics and Semiconductor Association ne aaj Semicon 2.0 ki adhikarik adhisuchana ka swagat kiya. Ye karyakram Semicon India Programme ki safalta ko आगे बढ़ाते हुए भारत की सेमीकंडक्टर क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि सेमीकॉन 2.0 का व्यापक दृष्टिकोण भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता को काफी मजबूत कर सकता है. इसे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसर पैदा करने और वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी. और लालिमा, एक खबर जो अभी हमने आपने पढ़ी थी आईएसपी की, उस पर शायद हमें कुछ और गौर करने की जरूरत है. दीपशिखा, क्या कहना आपका?
2: देखिए, हम जीडीपी की चर्चा कर रहे थे. सर्विस क्षेत्र जो है काफी रोबस्ट स्थिति में है, उसका परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है, बेहतर कर रहा है. ये इंडेक्स जो है अभी थोड़ा नया इंडेक्स है, इसका ट्रायल पीरियड ही चल रहा है.
1: जी, जी, जी.
2: तो उसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे, बट हाँ, काफी हद तक कैप्चर करता है ये सर्विस क्षेत्र का परफॉर्मेंस.
1: अच्छे संकेत
2: तो है. अच्छे संकेत हैं.
3: ऑलराइट, नाउ वी आर जॉइंड बाय अमित झा फ्रॉम दिल्ली. जी अमित जी, सवाल पूछिए. जी
4: नमस्कार लालिमा मैम, आपका नमस्कार मैम.
3: नमस्कार जी. जी
4: आप रेनबो पे आती हैं तो अच्छा लगता है, हिंदी बोलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है आपका.
3: जी जी, थैंक यू.
4: दीपशिखा मैडम से नमस्कार. मैडम
2: जी नमस्ते. अमित जी बताइए.
4: मैडम आपसे मेरा प्रश्न ये है, जैसे जीडीपी का आंकड़े पे तो आप लोगों ने चर्चा कर ही लिया है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है मैम कि अगर हम 2047 में विकसित अर्थव्यवस्था की मतलब हमने टारगेट ले रखा है, तो क्या ये जीडीपी का वृद्धि दर इतने प्रतिशत के हिसाब से हम 2047 में विकसित भारत बन पाएंगे, या वृद्धि दर और तेज करने की जरूरत है? अगर है तो किन सेक्टरों पर ज्यादा फोकस करना? धन्यवाद.
2: अमित जी देखिए, अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो उसके लिए चहुमुखी विकास जरूरी होगा. विकसित देश बनने के लिए आपको वृद्धि ग्रोथ तो चाहिए ही, आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ना तो है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, उन पर भी बहुत काम करना पड़ेगा. तो इसीलिए सरकार ने ये लक्ष्य तय किया हुआ है और इस दिशा में काफी काम किया जा रहा है.
1: जी अगली

0: West Texas Intermediate crude was trading 3.5% higher at $86.31 per barrel when reports last came in.
1: और हाँ, सोने और चांदी का हाल तो देखे, लेकिन दीपशिखा ये जो अभी लालिमा बता रही थी क्रूड ऑयल कच्चे तेल की बातें, जब तक लगता है जो अशांति है और अभी पश्चिम एशिया की बात करें उससे भी पहले से अगर हम देखें तो जो सीधे हमारे क्रूड सप्लाई को उतना प्रभावित नहीं कर रहा था रूस और यूक्रेन, उसके बाद और अभी ये पश्चिम एशिया तो खैर पता नहीं रह रह कर ये चल ही रहा है, इसके साथ लगता है अब कहां। लेकिन भारत ने इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें जितने लोगों को आशंकाएं थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा इतनी क्राइसिस हो जाएगी, लेकिन भारत ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है।
2: बहुत, आप देखिए जो जीडीपी के आंकड़े हैं इसमें इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, आप देखिए सप्लाई चेन हमारी उसको बना के रखना, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी कंपनीज थी उनका सप्लाई जो है उनके इनपुट्स का रॉ मटेरियल का हॉर्मोज से आता है, उस क्षेत्र से आता था, तो उसके बावजूद हम जो है सप्लाई कायम रख पाए, अर्थव्यवस्था को जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट दे पाए, और इसीलिए अर्थव्यवस्था अभी मजबूत स्थिति में है, खड़ी हुई है। और एक बहुत ही गहरा संकट था उस वक्त, अब तो हालांकि अभी भी स्थिति बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये संकट जो है उस हद तक थोड़ा सप्लाईज वहां से आने लगा है, तो हो सकता है कि आगे जो है अर्थव्यवस्था और मजबूत बने, आगे चलकर
1: बेहतर प्रदर्शन करें।
2: हालांकि मॉनसून को लेकर आशंकाएं हैं कि कंजम्पशन इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अब स्प्रेड जो है काफी हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि हम शायद अगला क्वार्टर भी हमारा उतना ही मजबूत रहे।
0: डू यू थिंक दीपशिखा वी डिड द वाइज थिंग टू डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज ऑफ ऑयल बिकॉज ऑफ द स्टिकी पॉइंट एट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नॉट जस्ट फॉर ऑयल बट फॉर मेनी अदर थिंग्स विद इम्पोर्ट, वी जस्ट डाइवर्सिफाइड एंड मूव टू अदर कंट्रीज एंड नॉट गॉट स्टक एट वन और टू एज बिफोर?
2: एब्सोल्यूटली लालिमा, एंड आई थिंक दिस इज वॉट इंडिया डिड, you know, we are trying to cut dependence on single source of supply, not just for energy but for all raw materials, and that is what government is also advising, suggesting to the industry that they should not be dependent on single source for their supplies. So have a wider basket of suppliers so that if something happens to one part of you know, in one area of geography, your supplies are still sort of
1: remains. और देखें सोने चांदी का हाल, भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 2.3% से ज्यादा गिरकर 155,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। वहीं चांदी की कीमत 2.7% नीचे 237,199 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। और दीपशिखा आज वक्त इतना ही है, नहीं तो सवाल और भी है चर्चा करने के लिए, विषय भी बहुत सारे हैं।
2: धन्यवाद सुबोध जी,
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आंकड़े जो हैं वो वैसे ही आई थिंक अपलिफ्ट कर रहे हैं,
1: सबका मूड अच्छा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर्स अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100। इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोज बाय 7.8% in first quarter of current financial year, and global crude oil prices surge. And friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself Lalima Aneja Dang and my co-anchor Subodh Mishra signing off. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: सभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलोस आदाब।

आसुम रहे थे हेमंत कुमार और साथियों को फिल्म थी आबे हयात, मजेकार थे सरदार मलिक, सभी के ख्वाहिशमंद थी आप सब। नई दिल्ली से इंद्रजीत छाबड़ा स्वीटी और रविंद्र छाबड़ा, अमेरिका दबाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी, सिद्धेश्वर नगर यावतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा राम टेके और शराबी राम टेके, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, केथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, शाही बजाज और बिट्टा बजाज, पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्रमोहन, उत्तर नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और गीतिका खोरवाल, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आरती कुमारी, सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर और पूर्ण वडतकर, लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू, करनाल से बलविंदर सिंह सोडी, मंजू कटिला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, भोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू और शशांक साहू, आसेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और मीनाक्षी गोस्वामी, बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से शरीफ दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमित कुमार दामोदर, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान और तनवीर मसरत, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले और सुशील येले, शेरवानी स्कूल गंजुंडवाड़ा से आफ्ताब अहमद अंसारी।

अजमत अंसारी और अनवर मास्टर, नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा, और जनाब ये हैं कृष्ण पार्क दिल्ली से सुखिंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना और गुरुवंश सिंह जौड़ा, सदर बाजार कुलावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा। और समझ लीजिए सुनी प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में नौशाद की मौसीकी सजाए नगमा, तुमने दिल दिया दर्द लिया। सुना चाहते हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम और इमरान खान, पालसी बुजुर्ग महाराज से विजय शेगोकार, जयश्री शेगोकार और ऋषिकेश शेगोकार, पंडरपुर सिटी रविदास चौक से कृष्णा गोल के प्रशांत शिंदे और सुनीता शिंदे, कनेरा मोहल्ला पटियाले से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और वंश बत्ता, मीनबाजार कुंडलवाली महाराज से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर, भाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्य देवांगन और हेमलता डिंपल देवांगन, राजपैलेस मोहनलाल बनियन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सवनकर, पिंकी सवनकर और कृष्णा सवनकर, मारा गेट डेटा से नबी हसन अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी और अनम यशरफ अब्बासी, कुमारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाहिन हसन, नाजिया इब्राहिम, और ये अगला मेल किसका है जनाब, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगोरी, जसबीर कौर और महप्रीत कौर, तहरपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा। आप सबकी पसंद आपकी नजर है।

और सामने जो सुनी मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में आहा फिल्म का नगमा, नगमनिगार हसर जयपुरी, मौसीकार शंकर जयकिशन। सुनना चाहते हैं बिहार छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा।

गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, उमरकोट मोहल्ला चौक खूंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सरफराज अब्बासी, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी, सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन और मुज्जू बाबा, सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी और बुल्की वाली फलना झा, बराव के नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा, हर्षा जेठवा और बेबी अवीरा।

फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद सामिन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। प्रोग्राम अभी जारी है, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं खबरें बरे सगीर से, इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे तामिल इरशाद प्रोग्राम की कुछ और नगमे। आदाब, यह आकाशवाणी है, बरे सगीर की खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान तिजारत, तवानाई और दिफाई उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत यूक्रेन में जंग के खात्मे की हर कोशिश की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ईरान के सदर मसूद पज़िश्कियान के साथ मीटिंग के दौरान जहाजरानी की आजादी और शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने किर्गिस जमहूरिया और आर्मीनियाई रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म कल एससीओ समिट से खिताब करेंगे। भारत की मजमू घरेलू पैदावार जीडीपी आलमी उथल पुथल के बावजूद रवा माली साल की पहली सहमाही में 7.8% तक पहुंच गई। बिहार और झारखंड तवील अरसे से चले आ रहे तनाजे का तस्फिया करते हुए सोन नदी के पानी की तकसीम से मुतालिक मुहदे पर पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब के सानहे में मरने वालों की तादाद 900 से तजावज कर गई है। राहत और बचाव के साजो सामान की कमी के दौरान 4000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से सबकदोशी का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जमहूरियाए किर्गिस्तान के बिश्केक में शांघाई तआवुन तंजीम एससीओ सरबराह इजलास के मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा बातचीत की। बातचीत में भारत और रूस के दरमियान दोतरफा तआवुन के अहम शोबों तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर बेहद इत्मीनान है कि भारत और रूस के दरमियान तआवुन मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है। यूक्रेन तनाजे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तवील जंगों को खत्म करने की समत बढ़ना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करता है और आइंदा भी करता रहेगा। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम भारतीय शहरी सदर पुतिन को ब्रिक्स सरबराह इजलास के लिए भारत में खुशामदीद कहने के मुंतजिर हैं, जो आने वाले दिनों में नई दिल्ली में मुनक्किद होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया कि भारत और रूस के ताल्लुकात खुसूसी और मुमताज शराकतदारी के उसूलों की बुनियाद पर मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज ईरान, जमहूरिया किर्गिस्तान और आर्मीनिया के रहनुमाओं के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। ईरान के सदर डॉ मसूद पज़िश्कियान के साथ मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया खित्ते के मौजूदा हालात, वाकयात और बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और भारत के इस मुस्तकिल मौकिफ का इरादा किया कि बातचीत और सिफारतकारी के जरिए तमाम मसाइल का हल होना चाहिए। बहरी जहाजों की आमद रफ्त और तिजारत की आजादी के तहफ्फुज पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शहरियों और सिविल बुनियादी ढांचे बशमूल तिजारती जहाजों और मल्लाहों को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और जमहूरिया किर्गिस्तान के सदर ज़ेबीर जापारोफ ने दोतरफा ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और आर्मीनिया के उनके हमनसब निकोल पाशिनयान ने दिफा, मईशत, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। आज वस्ती एशियाई मुल्क के अपने दौरे के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अराकीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर भारत के साथ मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले 4 वफूद मौजूद थे। कल जमहूरिया किर्गिस्तान के अपने दौरे के आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी शांघाई तआवुन तंजीम के 26वें सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल उज़्बेकिस्तान का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद बिश्केक पहुंचे थे।
جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا کہ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کا شعبہ نہ صرف بھارت کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم جز ہے بلکہ یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے. صدر جمہوریہ آج دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی این آئی ایف ٹی کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کر رہی تھیں. محترمہ مرمو نے طلبا سے کہا کہ وہ ملک کے مالا مال ثقافتی ورثے اور اقدار سے جڑے رہتے ہوئے عالمی نقطۂ نظر کو اپنائیں. بھارت کی اصل جی ڈی پی میں مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری درج کی گئی ہے. گزشتہ سال اسی سہ ماہی میں 6.9% کی بڑھوتری درج کی گئی تھی. بھارتی معیشت نے ناسازگار حالات کے باوجود ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا ہے. نومینل جی ڈی پی میں بھی موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 10.3% کی بڑھوتری درج کی گئی ہے. اعداد و شمار اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے آج موجودہ مالی سال میں اپریل سے جون تک کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی کے تخمینے جاری کیے. وزیراعظم نریندر مودی نے مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری کو مثالی اور ایک بڑا کارنامہ قرار دیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی میں 7.8% کی شرح ترقی کو ایک شاندار کامیابی قرار دیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی تیل کی قیمتوں کے دباؤ، سپلائی چین میں رکاوٹ اور عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ملک کے عوام کی اجتماعی طاقت اور مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے. خدمات کی پیداوار کے اشاریے ISP کے

ऋषि जनाब, अहमदपुर खेगांव खंडवासी कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली और वैदिका फूलमाली, पुरानी बागपत से इलियास और मुस्कान कुरैशी, पुणे जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत और सुलोचना भगत, मोहनपुर कमलगंज फरुखाबाद से तस्नीम अहमद फारूकी, टापकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर और सदानंद मंदूरकर, हजब बिल्लाम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम जैनब, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और मयंक भाटिया, मंगलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपन ताइडे और पी एस नावकर, और जनाब ये हैं सतबड़ा उत्तर प्रदेश से श्रीमती सलोचनी चौरसिया, सुबोध चौरसिया और पिंकी चौरसिया, मॉडल टाउन करनाल से सुदीन उतन, किरण ठाकुर और स्प्रीत शर्मा।

ये रामलाल चंद्रवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी और काजल नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई और शेख चांद फारूक बनपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और भव्य कुमारी और जनाब सहारनपुर से सुरेश नारायण और आशा नारायण निजामाबाद तेलंगाना से मैं वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी और जनाब ये खानीपी उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू अशरफ, सरदार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा महराजुद्दीन, नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो, खान मंदिर झंझनवाड़ा से आगा खान आगा भाई ऊत खान और बेबी अमल खान, बिशनपुर गिरडी झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिर परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा, बिहारी कॉलोनी शादरा से कृष्ण मस्कीन, वीना मस्कीन और डब्बू स्मार्ट और जनाब ये हैं चिनमिरी कुरासिया कॉलोनी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह और ऋषभ सिंह।

कटनकर और बेबी कार्तिका छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से उदयभान ठाकरे, दीपक ठाकरे, नवीन ठाकरे, छिंदवाड़ा से डॉक्टर दबीरुल हसन, शबनम अनवार और भुवन प्रकाश गौतम, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण और अंजू श्रीवास्तव, वनीखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस और पिंकी अरोड़ा, और ये जनाब हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया भारशंकर और मास्टर होमी भारशंकर, मारहरे गए थिएटर से नबी हसन अब्बासी, बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से, अच्छा इनका नाम ले चुका हूं मैं, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से उत्तर ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय और महराज जहां, और जनाब आज का प्रोग्राम की आखिरी मेल जो है हाईकोर्ट से है, विनायक मेंडे, श्रीमती मंगला मेंडे और शुभम मेंडे का, आप तमाम की नजर है आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: مرکز آکاشوانی کی اردو سروس سے پیش خدمت پروگرام سرخیوں میں
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण किर्गिस्तान गणराज्य यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का समसामयिक कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर हैं, जहां वे बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत मध्य एशिया के साथ अपने रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बना रहा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के व्यापक कूटनीतिक और सामरिक महत्व पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू

0: विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राहुल मिश्रा। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुबोध जी।
0: राहुल जी, सबसे पहले अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रधानमंत्री की जो किर्गिज गणराज्य यात्रा है, उसे आप भारत की विदेश नीति के हिसाब से किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि मध्य एशिया भारत के लिए लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
1: जी बिल्कुल, देखिए सुबोध जी, मध्य एशिया के जो तमाम देश हैं, ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और सोवियत संघ के विघटन के बाद ये सोवियत सेंट्रल एशिया या सोवियत मध्य एशिया के ये पांच गणराज्य बने, जिनके साथ भारत ने 1991-1992 से ही अपने कूटनीतिक संबंध, अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए और भारत की बहुत प्रमुख नीतियों में से एक लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति के अलावा, अगर हम एक रीजन को लेकर के, एक खास क्षेत्र को लेकर के अगर भारत की कोई विदेश नीति को देखें, तो इस लिहाज से कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मध्य एशिया के देशों को भारत ने हमेशा से एक प्रमुख स्थान दिया है। इस संदर्भ में मध्य एशिया के देशों के साथ हालांकि हमारी कनेक्टिविटी की जो डायरेक्ट लिंकेज की जो बात है, वो एक बड़ा प्रश्न है और एक अनसुलझा हुआ सवाल है। और इसी वजह से एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैंने अपने एक मित्र को दिया था कि दिल्ली से कोची जाने में आपको करीब करीब 3.5 घंटे लगते हैं और इतना ही समय अगर आप दिल्ली से ताशकंद जाना चाहें तो आपको लगेंगे। तो सेंट्रल एशिया हमारे इतने नजदीक है, लेकिन भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से अब हमारे और उस क्षेत्र के बीच इतनी कनेक्टिविटी नहीं। हजारों साल पुराने हमारे संबंध जो है वो इन भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से कहीं थोड़े से कमजोर हो गए हैं। कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के तहत और पिछले 12 वर्षों में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य एशिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की बहुत कोशिश की। इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार जो उनकी यात्राएं हैं इस क्षेत्र को लेकर, चाहे इस क्षेत्र में चाहे उज्बेकिस्तान हो या किर्गिस्तान हो या कजाकिस्तान हो, करीब करीब इन तमाम मध्य एशिया के देशों की उनकी यात्राएं 4 या उससे ज्यादा बार हो चुकी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है जो कि किर्गिस्तान में हो रही है, वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेकिन अगर द्विपक्षीय संबंधों को हम देखें तो किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत है और उसमें रक्षा क्षेत्र बहुत ही आम लोगों में जानने वाली बात नहीं है, लेकिन किर्गिस्तान के साथ भारत के रक्षा संबंध भी बहुत मजबूत है और वो मध्य एशिया में भारत को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देते हैं।
0: जी, जैसा आपने कहा अभी कि एससीओ का आपने उल्लेख किया, तो प्रधानमंत्री अभी 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और अब उसके स्थापना के जो 25 साल पूरे हो गए हैं, तो भारत के लिए इस मंच की अभी क्या प्रासंगिकता है और भारत इसमें अपनी भूमिका को किस तरह देखता है?
1: एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर भारत के लिए एससीओ एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। पहला इस वजह से कि ये पूरे जो कॉन्टिनेंटल एशिया जिसको हम कहते हैं, जो लैंड बेस जमीनी जो एशिया है जो कि समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके केंद्र में एससीओ है और जिसमें चीन भी है, जिसमें रूस भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है और ये पांच जो गणराज्य हैं मध्य एशिया के वो तो इसमें मेंबर्स हैं। तो इस लिहाज से और भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसमें सदस्य हैं, तो इस लिहाज से एससीओ की बड़ी केंद्रीय भूमिका है कॉन्टिनेंटल एशिया की जो भू राजनीति और उसके जो सामरिक और आर्थिक कनेक्टिविटी के जो सवाल हैं उनको सुलझाने के लिए। तो क्षेत्रीय संगठन के तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को ये इस क्षेत्र में खास तौर से चीन और रूस के साथ मिलकर इस क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद जैसी चुनौतियों से निपटने के साथ साथ कैसे हमारे तमाम देशों के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़े और इस पूरे क्षेत्र में भारत की भूमिका और तमाम देशों की भूमिका जो है वो प्रासंगिक रहे, इसके लिए एससीओ बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ एक अलग प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये अगर हम उदाहरण या कंपेरिजन के तौर पर अगर हम क्वाड को देखें जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, उसके मुकाबले ये एक ऐसा संगठन है जिसमें कि वो देश हैं जिनके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट की जो नीति है उसको भी ये एक तरह से पूरी तरह से प्रोजेक्ट करता है। तो एससीओ इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है और भारत जो कि एक तरफ कॉन्टिनेंटल एशिया से जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ है पूरे एशिया से और दूसरी तरफ वो अपने हिंद महासागर और अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की वजह से समुद्रिक रास्तों से जुड़ा है, तो भारत जिसके पास ये दोनों ही एक तरह से कहें प्लस पॉइंट्स हैं, उस लिहाज से एससीओ की सदस्यता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की।
0: राहुल जी, भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच केवल रणनीतिक

0: हितों तक ही संबंध नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है वो, और हमारे इन दोनों देशों के बीच शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क भी, ये भी आपसी रिश्ते का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पुराने संबंधों को आधुनिक कूटनीति में किस तरह अब एक नई ऊर्जा दी जा सकती है?
1: किर्गिस्तान की जो एक बहुत ही खास बात है कि हमेशा से ही भारत और किर्गिस्तान के संबंध द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ, एक अगर हम इनको दो स्तंभ माने तो द्विपक्षीय के साथ साथ रीजनल जो संस्थान है, मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो SCO के जरिए हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हो, इन दोनों में ही भारत और किर्गिस्तान के बीच में संबंध इन दोनों ही तरीकों से बहुत आगे बढ़े हैं। दोनों देशों के बीच में व्यापार हालांकि 1 बिलियन के आसपास ही पहुंचता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध, जैसा कि सेंट्रल एशिया के बाकी देशों के साथ भी समस्या है, कनेक्टिविटी एक बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट न होने की वजह से हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है एयर कनेक्टिविटी का। तो आर्थिक मामलों में मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी की वजह से बहुत सी दिक्कतें पेश आई हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत और किर्गिस्तान के बीच में पिछले बहुत वर्षों से खंजर नाम की एक्सरसाइज होती रही है, जिसका 13वां संस्करण अभी फरवरी 2026 में हुआ था। आईटेक प्रोग्राम्स को ले लें, या जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं किर्गिज सिविल सर्वेंट्स की और उनके तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, या पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस को लेकर के, कल्चरल कनेक्ट को लेकर के दोनों ही देशों के बीच में सहयोग के बहुत सारे रास्ते तलाशे गए हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक आईटी सुपर पावर के रूप में और खासतौर से ग्लोबल साउथ के देशों को अपने साथ लेकर चलने वाले आईटी सुपर पावर के तौर पे भारत ने अपनी एक बड़ी भूमिका तलाश ली है और दुनिया के तमाम देश उसको मान रहे हैं। तो इस लिहाज से भी किर्गिस्तान में एक आईटी सेंटर, भारत ने हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के तहत एक आईटी सेंटर बनाया है जिस पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। एग्रो प्रोसेसिंग, हायर एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल तो खैर बहुत बड़ा क्षेत्र दोनों देशों के बीच में हमेशा से रहा है, तो ये तमाम क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों के बीच में सहयोग रहा है। और मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध आपसी विश्वास, परस्पर संबंधों में एक अटूट विश्वास के साथ साथ दोनों देशों के हितों में और उनकी जो डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही प्रामाणिक दोनों देशों के बीच में दोस्ती रही है। तो हमेशा से ही किर्गिस्तान को भारत ने मध्य एशिया के एक महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देखा। हालांकि दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग उतना बड़ा नहीं है, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग की वजह से इस देश की महत्ता भारत के लिए बढ़ती है। एक बड़ा एंकर है ये, जिसे कहते हैं कि भारत को मध्य एशिया के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए एक बड़े दोस्त, एक बड़े एंकर, एक बड़े होस्ट के तौर पर किर्गिस्तान को आंका जा सकता है।
0: जी, आपकी इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा, तो क्या लगता है कि जो मध्य एशिया के अन्य देश है उनको मिलाकर भारत एक अपनी मध्य एशिया की अलग रणनीति विकसित कर रहा है? अभी जो हर देश के साथ एक द्विपक्षीय संबंध अलग अलग है, उससे परे है जो सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की बात है, क्या ऐसा कुछ भविष्य दिखाई देता है आपको?
1: जी बिल्कुल, भारत की एक बहुत ही स्पष्ट और एक बहुत ही दीर्घकालिक रणनीति है मध्य एशिया के देशों के साथ मिलकर काम करने की, जिसको हम कनेक्ट सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं। लेकिन कनेक्ट सेंट्रल एशिया के साथ साथ भारत ने यह भी कोशिश की है कि हम सिर्फ कनेक्टिविटी, कॉमर्स, काउंसलर रिलेशंस और कम्युनिटी, ये जो चार सीज हैं, इनसे बाहर निकलकर हम उस क्षेत्र को ही इस ढंग से रखें अपने विदेश नीति के दीर्घकालिक जो हमारे गोल्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रखें तो सेंट्रल एशिया को कैसे इस डायरेक्शन में लाया जाए कि दोनों ही पक्षों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर संबंध बने और दोनों ही पार्टीज इसमें प्रॉस्परस और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा म्यूचुअली एडवांटेजियस सिचुएशन में पहुंचे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस कनेक्ट सेंट्रल एशिया के माध्यम से भारत ने एक रणनीति बनाई तो बहुत साल पहले थी, और 90 के दशक से ही भारत ने इस पर काम करना शुरू किया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे जो मेजर फंडामेंटल किस्म के जो हमारे पास समस्याएं हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको दूर करने में थोड़ी सी हमें दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण समस्या है कनेक्टिविटी, डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। तो ईरान की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, रूस के साथ मिलकर भी हमने कोशिश की कि सेंट्रल एशिया के क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए और भारत की एक नई रणनीति बने। बहरहाल भारत की कोशिश ये है कि मध्य एशिया के देशों को हम आइडियोलॉजी के तौर पर, एक विचारधारा के संदर्भ में हम उसे ग्लोबल साउथ के साथ जोड़ें, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का जिक्र अपनी उज़्बेकिस्तान की यात्रा में पहले ही कर दिया है। दूसरी बात यह है कि भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जैसे कि हम रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं, या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें डिजिटल पेमेंट्स या आईटी कॉपरेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो लिंकेजेस हैं, इंटरनेट, टेलीफोनी और तमाम चीजों के जो सॉफ्ट कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और तीसरी चीज है कि वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें मध्य एशिया के देश एक विकसित भारत 2047 का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में जिम्मेदार दोस्त की भूमिका निभा सकते हैं। उसमें क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया के तमाम देश हैं जो क्रिटिकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में काफी बड़ा हिस्सा रखते हैं, उनके पास बहुत सारे ज्ञात और अज्ञात सोर्सेज हैं पोटेंशियली, जिसमें बहुत सारे सोर्सेज को एक्सप्लॉयट किया जा सकता है। ने इसमें तमाम कोशिश की है। तो भारत की अब ये रणनीति है, जो सवाल आपने पूछा उसका अगर मैं एक लाइन में जवाब दूं तो भारत की रणनीति ये है कि विकसित भारत 2047 के संदर्भ में मध्य एशिया के देशों को कैसे अपनी नीति से ऐसे अलाइन किया जाए कि उनका भी भला हो और भारत का विकास हो और 2047 में हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें।
0: जी, मतलब भारत के व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश, इन सब के लिए इस क्षेत्र में भी प्रबल संभावनाएं हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। मैं ये मानता हूं कि 90 के दशक से ही मध्य एशिया ऐसे तमाम जंजालों में उलझा रहा, जियोपॉलिटिकल, जिसमें अफगानिस्तान की भी समस्या है, मध्य एशिया के तमाम देशों की अंदरूनी बहुत सी समस्याएं रही, तो ये सही समय भारत और मध्य एशिया के बीच में संबंधों का जो सही उसका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने का नहीं है। बट मुझे लगता है कि आगे आने वाले 10 सालों में हम देखेंगे कि मध्य एशिया की वाकई में कितनी बड़ी भूमिका इस भू राजनीतिक व्यवस्था जो एशिया की है उसमें है, और SCO जैसे संगठन के माध्यम से कैसे उनकी एक तरह से केंद्रीय भूमिका होती है जब वो महाशक्तियों के साथ, भारत, चीन और रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और तीसरा भारत का जब विकास हो रहा है इतनी तेज रफ्तार से और भारत एक विकसित महाशक्ति बनने की राह पर है 2047 तक, तो हम आगे आने वाले 10 सालों में देखेंगे कि मध्य एशिया कैसे इसमें एक बड़ा योगदान देता है। और जो हमारी 1000 साल का जो एक बहुत समृद्ध इतिहास रहा है दोनों ही पक्षों के बीच में संबंधों का, मुझे लगता है इस पूरी यात्रा के दौरान, 10 और आगे आने वाले समय की यात्रा के दौरान, इन तमाम बातों को फिर से हम रेखांकित कर पाएंगे और अपने इतिहास को फिर से पुनर्जीवित कर पाएंगे।
0: जी राहुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर्गिज गणराज्य यात्रा, SCO की भूमिका और भारत मध्य एशिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर अपने सार्थक विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: इसके साथ आज के सुर्खियों में कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। कव्वालियों के आज के प्रोग्राम में समाप्त फरमाइए रहीम कामिल कव्वाल और साथियों की गाई कव्वालियां।

0: मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर बेहद इत्मीनान है कि भारत और रूस के दरमियान तआवुन मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है। यूक्रेन तनाज़े के बारे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तवील जंगों को खत्म करने की समत बढ़ना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करता है और आइंदा भी करता रहेगा। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम भारतीय शहरी सदर पुतिन को ब्रिक्स सरबराह इजलास के लिए भारत में खुशामदीद कहने के मुंतजर हैं, जो आने वाले दिनों में नई दिल्ली में मुनक्किद होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया कि भारत और रूस के दरमियान के ताल्लुकात खुसूसी और मुमताज शराकतदारी के उसूलों की बुनियाद पर मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कल ईरान, जमहूरिया किर्गिस्तान और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। ईरान के सदर डॉ मसूद पेजिश्कियान के साथ मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया खित्ते के मौजूदा हालात व वाकयात और बदलते हुए मंजरनामे पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और भारत के इस मुस्तकिल मौकिफ का इआदा किया कि बातचीत और सफारतकारी के जरिए तमाम मसाइल हल होना चाहिए। बहरी जहाजों की आमदोरफ्त और तजारत की आजादी के तहफ्फुज पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शहरियों और सिविल बुनियादी ढांचे बशमूल तजारती जहाजों और मल्लाहों को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और जमहूरिया किर्गिस्तान के सदर सैदर ज़ापारोफ ने दो तरफा ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और आर्मेनिया के उनके हम मनसब निकोल पेशिनयान ने दफा, मईशत, दवासाजी, साइंस व टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। कल वस्ती एशिया मुल्क के अपने दौरे के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अराकीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर भारत के साथ मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले 4 वफूद मौजूद थे। कल जमहूरिया किर्गिस्तान के अपने दौरे के आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी शंघाई ताउन तंजीम के 26वें सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल उज़्बेकिस्तान का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद बिश्केक पहुंचे थे। भारत की असल जीडीपी की में माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुज़िश्ता साल इसी सहमाही में 6.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। भारतीय मईशत ने नासाजगार हालात के बावजूद तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखा है। नॉमिनल जीडीपी में भी मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अदाद शुमार और प्रोग्राम के नफाज की वजारत ने आज मौजूदा माली साल में अप्रैल से जून तक की पहली सहमाही में जीडीपी की तखमीने जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% की बढ़ोतरी को मिसाली और एक बड़ा कारनामा करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी में 7.8% की शह तरक्की को एक शानदार कामयाबी करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह कामयाबी तेल की कीमतों के दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और आलमी सतह पर गैर यकीनी की सूरत हाल के बावजूद मुल्क के आवाम की इज्तमाही ताकत और मजबूती की अक्कासी करती है। नई दिल्ली में कल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में सोन नदी के पानी की तकसीम के मामले पर बिहार और झारखंड के माबैन एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन, बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी, जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल भी मौजूद थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बिहार और झारखंड के माबैन इस मुआहदे से मशरकी भारत में लंबे अरसे से जारी पानी का मसला हल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुआहदे से बिहार और झारखंड के देही इलाकों में लाखों किसानों को आबपाशी के लिए पानी दस्तियाब होगा। इसके साथ ही आवाम के लिए पीने का पानी भी फराहम किया जा सकेगा। नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ सिक्योरिटी अहलकारों को खसूसी आलात, लाशों के लिए थैलों, रस्सियों और हेलीकॉप्टरों की कमी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। बयान किया जाता है कि यह सैलाब 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सरहद के करीब बर्फ और चट्टानों के तोदे गिरने के सबब आया। सैलाब ने भोतेशकोशी दरिया से मुतसिल इलाके में घरों, सड़कों और पुलों को तबाह कर दिया और पन बिजली के प्रोजेक्टों को भी नुकसान पहुंचाया। कुदरती आफात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथार्टी के मुताबिक सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4247 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह ने इस सैलाब को गैर मामूली तबाहकुन कुदरती आफत करार दिया। तकरीबन 21,000 सिक्योरिटी अहलकार बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत के कामों और मुतासरीन की शनाख्त में मदद के लिए खसूसी टीमें तैनात की हैं। 19 रुकनी भारतीय फॉरेंसिक टीम ने कल काठमांडू में इंसानी लाशों की शनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट में मदद फराहम करने का काम शुरू किया। भारत की सुरंगों में बचाव करने वाली टीम भी चिली में और लैंगटांग में पन बिजली के प्रोजेक्ट के मकामात पर इमदादी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। माहिरीन पर मुश्तमिल टीमें नेपाली इमदादी कारकुनों को मुख्तलिफ पन बिजली प्रोजेक्टों से वाबस्ता 933 वर्करों और मुलाजमीन का सुराग लगाने में मदद फराहम कर रही हैं, जिनसे 26 अगस्त से राबता मुनक़ति है और खदशा है कि इनमें से बहुत से अफराद सुरंगों के अंदर फंसे हुए हैं। लियोनेल मेसी ने कल बैनुल अक्वामी फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए उनका 20 साल कैरियर इख्तिताम पजीर हुआ। इनके कैरियर में वर्ल्ड कप की जीत, दो मरतबा कोपा अमेरिका का खिताब और अपने मुल्क के लिए रिकॉर्ड 207 मैच शामिल हैं। मेसी ने कहा कि रिटायरमेंट का फैसला वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन से शिकस्त के बाद से उनके जहन में था, लेकिन वालिद की वफात ने उन्हें मजीद यकीन दिलाया कि अब अलग होने का वक्त आ गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान तिजारत, तवानाई और दफाई उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत यूक्रेन में जंग के खात्मे की हर कोशिश की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान जहाजरानी की आजादी और शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने किर्गिज जमहूरिया और आर्मेनियाई रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म आज एससीओ समिट से खिताब करेंगे। भारत की मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी आलमी उथल पुथल के बावजूद रवा माली साल की पहली सहमाही में 7.8% तक पहुंच गई। बिहार और झारखंड तवील अरसे से चले आ रहे तनाजे का तस्फिया करते हुए सोन नदी के पानी की तकसीम से मुतालिक मुआहदे पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। کلاسے کی موسیقی کے پروگرام میں سامعین سنیے استاد احمد جان تھریکوا سے تبلے پر بجائی تین تال

खुशी की आवाज में आप सुन रहे थे मूर्ति फिल्म का नगमा। भवनिया थे पंडित इंदिरा, मौसीकार बीयू सी रानी। और सामने ये सुनिए फिल्म अनमोल घड़ी का नगमा सुरेंद्र की आवाज में, नगमनगा तनवीन नकवी, मौसीकार नौशाद।

0: बसेरा, मेरा लूटा है बसेरा, बड़ी याद है।
1: प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामीन के लिए सुरैया की आवाज में शमा फिल्म का नगमा, नगमा निगार कैफियाज भी, मौसीकार गुलाम मोहम्मद।

सभी सुरभि के साथ ही आज का सदभा फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम आखिरी शब अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 12:50 पर चाहते हैं अब खबरें नशर होंगी।

0: शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकीन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलुओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य पर ध्यान दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर, पीएम कुसुम और पीएम जनमन जैसी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने घोटेकोशी नदी के किनारों के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर होता जा रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार 6041 मामलों की पुष्टि हुई है और 2911 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप बताया है। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
0: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: ड्यूरिंग द मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर सेड ऑल इंडियंस आर ईगर टू वेलकम प्रेसिडेंट पुतिन to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers,

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बहारों के सपने से। लता मंगेशकर की आवाज है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

और अब अगला गीत फिल्म जूल थीफ से किशोर कुमार की आवाज है, मजरूह के लिखे बोल हैं और संगीत से पिरोया है एस डी बर्मन ने।

कोई आए और आपका चेहरा खिल जाए, या फिर किसी के आने की खबर हो तो आपके चेहरे पर नूर आ जाए। जी हाँ, वही गीत आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म आंधी से, तुम आ गए हो नूर आ गया है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज है, गुलजार साहब के लिखे बोल और संगीत से पिरोया है आर डी बर्मन ने।

फिल्म हीरा पन्ना से आपने सुना अभी ये गीत। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पुराने फिल्मी नगमे। मैं कीर्ति आपके साथ। अगला गीत फिल्म बड़े अच्छे लगते हैं, माफ कीजिएगा, बालिका वधु फिल्म है और जो गीत है उसका शीर्षक बड़े अच्छे लगते हैं और अमित कुमार आर डी बर्मन की आवाजों में ये गीत आप तक आएगा। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

अगला गीत फिल्म हम किसी से कम नहीं, मोहम्मद रफी व अन्य साथियों की आवाजों में। संगीत के बोल मजरूह ने लिखे थे और संगीत से पिरोया है आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं चांद मेरा दिल।

0: इसी गीत के साथ अब गीत सुनहरे कार्यक्रम यही समाप्त करने के दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का 6 संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्य दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन, एसएससीओ के कई नेता ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। गृहमंत्री

0: शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान हो गया है। कोलकाता में कल चार संगठनों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठनों ने शहरयार कबीर, प्रोफेसर डॉ अबुल बरकत, वकील राणा दास गुप्ता और चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की भी अपील की। संगठनों ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2024 के राजनीतिक बदलाव के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Today, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of the SCO. Prime Minister Narendra Modi, along with the leaders of SCO leaders, participated in the official opening ceremony of the 6th World Nomad Games in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, on Monday evening. The biennial event celebrates the rich sporting traditions, culture and heritage of nomadic civilizations, bringing together countries in a vibrant celebration of their shared culture.

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: आप सुन रहे थे गीत बहार कार्यक्रम, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक थे इस कार्यक्रम में। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का 6 संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकियन समेत एससीओ के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ से भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाके अब चपेट में आ गए हैं, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
3: ड्यूरिंग द मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर सेड ऑल इंडियंस आर ईगर टू वेलकम प्रेसिडेंट पुतिन टू द ब्रिक्स समिट व्हिच विल बी होस्टेड इन न्यू दिल्ली इन द कमिंग डेज। President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Today, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization. Prime Minister Narendra Modi, along with the other SCO leaders, participated in the official opening ceremony of the 6th World Nomad Games in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, on Monday evening. The biennial event celebrates the rich sporting traditions, culture and heritage of nomadic civilizations, bringing together countries in a vibrant celebration of their shared culture. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire accident that occurred in Kaushambi district of Uttar Pradesh. At least 11 people, including 2 children, were killed and 5 others were critically injured in a massive explosion at a firecracker factory in Kaushambi. In a social media post, President conveyed condolences to the families of those who lost their lives in this unfortunate incident. President Murmu also prayed for the speedy recovery of the injured. Prime Minister also expressed grief over the loss of lives in the mishap. The Prime Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from Prime Minister's National Relief Fund to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. India's real GDP has observed a growth rate of 7.8% during the first quarter of the current financial year, against the growth of 6.9% during the same period of the previous financial year. The Ministry of Statistics and Program Implementation yesterday released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. In football, India began their Under-20 Asian Cup 2027 qualifying campaign on a winning note, defeating Syria 1-0 at Tashkent yesterday. Singamayum Shami scored the decisive goal in the 86th minute to give India all 3 points in their opening Group B match. In table tennis, India's Ankur Bhattacharjee has won his maiden men's single title at the WTT Feeder Olomouc tournament in Czech Republic. World number 78 defeated third seed Denis Kozul of Slovenia 3-1 in the final. Ankur had earlier secured the men's double gold with compatriot Akash Pal, and that is the end of this news bulletin.
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल और श्रोताओं स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो चला है 3:10 का और आपके साथ अब मैं हूं आपका दोस्त अतुल। 3:10 का समय कार्यक्रम गजल गीत का समय और आज के इस कार्यक्रम में भी हम कुछ ऐसा ही लेकर आएंगे। जी हाँ, तो आज भी कुछ चुनिंदा गजलों के साथ अगले लगभग 50 मिनट कार्यक्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। साथ होंगे आप, मैं और खूबसूरत गजलें। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं राधिका चोपड़ा की इस पेशकश के साथ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गजल आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। समय हो चला है 3:33 और 12 सेकंड का। कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल। कार्यक्रम में पेशकश है देवयानी मजूमदार की ये पेशकश।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गजल। यह आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और श्रोताओं कुछ ही पलों में सुबह के 4 बजने को हैं। अब आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुनेंगे।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे S. शैलजा और S. सौंदर्या का भक्ति संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं तिरुनयना संबंधार की रचना पेडी अदान से।

0: इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना, आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। और श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि प्रातःकालीन सभा में 6:10 का समय होता है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए भक्ति संगीत, साथ में होते हैं भजन, शबद, नाथ और देशभक्ति गीत। 6:40 का समय होता है चिंतन का, जिसमें आज आप भगवान महावीर के उपदेश सुनेंगे। समय रहेगा प्रातः 6:40 का। तो ये तो हुई प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। कुछ ही पलों में सुबह के 4:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म में। आज हम लेकर आएंगे अनन्या वेंकटेशन का गायन। वर्णन पर आपकी संगति की है विदुषी जी उमा ने और मृदंगम पर साथ दिया है विदुषी VM कन्नन ने। तो आइए सुनते हैं अनन्या वेंकटेशन का गायन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आपने अनन्या वेंकटेशन का गायन सुना। वायलिन पर आपका साथ दिया था विदुषी जी उमा ने और मृदंगम पर साथ थी विदुषी वीएम कन्नन। यह आकाशवाणी का एआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में सुबह के 4:50 होने को हैं। हमारे अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मातरम।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 46 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है और श्रोताओं आगे बढ़ने से पहले आपको प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। प्रातः 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, जिसमें आप सुनेंगे भक्ति संगीत, भजन, शबद, नाद और देशभक्ति गीत।

चिंतन आप सुन सकते हैं प्रातः 6:40 पर। आज के इस कार्यक्रम में भगवान महावीर के उपदेश हम लेकर आएंगे इस कार्यक्रम में। हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस आप सुन सकते हैं प्रातः 6:45 पर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 35।

6:55 का समय रहेगा संस्कृत में समाचार का, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार के बाद 7:10 का समय होता है कार्यक्रम संगीत एकाकार।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग फिल्म संगीत पर आधारित एक कार्यक्रम होता है और समय होता है प्रातः 7:30 का। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज का समय रहेगा 8:15 का और उर्दू में खबरें आप सुन सकते हैं 8:30 पर।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर गंगा का समय रहेगा प्रातः 8:45 का। आज के इस कार्यक्रम में आप अमीषा रे का राग नट भैरव में गायन सुनेंगे।

श्रोताओं, ये थी सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में सुबह के 5 बजने को है।

रहन से सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, हुए सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह।

ऐसा रंग लाडे का।

ਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ

ਕਰਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤਾ ਪਾਵੇ।

0: सत्वग्रसंतो का धर्म ग्यर्थ भाव त्रेतर जत का जोर ग्यर्थ भाव द्वापर तपय का सत ग्यर्थ भाव कल युग्रथगन का गूढ़ ग्यर्थ भाव मल्ला पहला
1: साम कहे से तंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सब को सत समावेर कहे रहे अपर पूर राम नाम देवा में सुर नाहे लगे पास चाहे मान तो मुकंत पाहे जुज में जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादू भया पार जात को पेरे आया वृंदावन में रंग किया काल में वेद सर्वण हुआ नाव खुद आई लो भया नील वस्त्र में कपड़े पहरे तू पठानी अमर किया चाले भेद होए सच

ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਆਸ ਛੋੜੀ ਦੇ ਲਗੇ ਧੂਪੇ ਸੇਵਣ ਜਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਮੁਲਤਾ।

शरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे अभ्यास कर जाय मेरा सहकित पर बिके फुल बक बके कम न आवे पत मिट जनी वी नानका गुण चई आई तत सब कुन वे आपको पर कुन वे ना कोए धरता राजू तो लिए ने सो गौरा हो अपराधी गुणा ने वे जो हंता मेरे गा क्या थी दारिद्र सुध जाए भला पहला पाठ पुस्तक संध्या।

ਸਾਡੇ ਪੰਛ ਭਗਤ ਹਰ ਸਵਾਡੇ ਹਰ

ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ

सब थाई हुए सहाय दसवे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह।